0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: खुशियों की फुहार लाए की हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम रिश्तों को देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की बात में जब रिश्ते सामने आए, तो एक नए अंदाज से हमने देखने का प्रयत्न किया कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हर रिश्ते में मुझे आपसे कुछ चाहिए, या वो रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नथिंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैं हर बार ये कहती हूँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पिछली कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ

0: खुशी मिल रही है, आपके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन जब देखा, इस नज़र से देखा, स्पिरिचुअलिटी में हमें समझ में आया कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अच्छा फील हो रहा है, बुरा भी फील हो रहा है, वो मुझसे होकर गुजर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन एक लेते हैं, मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से आए और वो मेरे बारे में कोई भी बात थी, मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब हो सकता है वो उनकी पेन, वो जो भी करके आए थे, लेकिन वो जो हर्ट मुझ तक आया, वो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं?
1: Now you're laughing. See, hurt मुझ तक आया, hurt कहां से मुझ तक आया? Let's be very clear, मुझ तक क्या आता है?
0: कमेंट आया,
1: वर्ड्स आए। हर्ट मुझ तक नहीं आया, वर्ड्स मुझ तक आए, डेफिनेटली वर्ड्स आए, एक्शन आया,
0: एनर्जी भी तो आई,
1: एनर्जी आई, लेकिन हर्ट किसने क्रिएट किया?
0: वो मैंने किया।
1: सी, इट्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? वही इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई एक बहुत अच्छी डिश भी बना सकता है, और कोई बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुछ बहुत खास बना नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द कुक आई एम। तो यस, ये इंग्रेडिएंट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, एक्शंस भी आए हैं, एनर्जी भी आई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा कुक
0: उन्हीं में से कुछ बना देगा। ओह यस, वी कैन मेक अ गुड पकौड़ा।
1: वही इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फंडामेंटल, कि वही इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग लोग अलग अलग डिश बनाने वाले हैं, राइट? ये याद रखें कि हाँ, अब मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसका पावर फिर भी किसके पास है? मेरे पास है। जब हम दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ जो इंटरैक्ट करती है, वो है एनर्जी फील्ड। वर्ड्स बाद में करते हैं, कई बार एनर्जी कुछ और होती है, वर्ड्स तो कुछ और ही निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो यू नो, लाइक वी नो दैट एवरीवन कैरीज एन ऑरा, एक एनर्जी फील्ड है। तो सपोज यू एंड मी मीट टू पीपल, दोनों का एक एनर्जी फील्ड है। अब कई बार हम कहते हैं इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी है, और इनके साथ इतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जिनके संपर्क में मैं आई, दे कैरी अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड। किसी की एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, किसी की दूसरी क्वालिटी की तरफ भी जा सकती है। जैसे ही मैं इनके कॉन्टैक्ट में आती हूँ, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती, एंड देन आई से मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो मेरा मूड भी खराब हो गया, या मुझे भी गुस्सा आ गया, या मैं भी उदास हो गई। दैट्स लाइक सेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनकी बीमारी को मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैंने इनकी बीमारी को एक्चुअली इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। बिल्कुल ठीक जो होगा वो बीमारी को कैच नहीं करेगा। हाँ, अभी मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक था ना, इसलिए उनकी एनर्जी फील्ड ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया। जब मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते, तो जैसे ही मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करती हूँ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि औरों का एनर्जी फील्ड मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता। आई एम एबल टू रिमेन इन माई स्टेबिलिटी, मे बी नॉट वेरी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली डोंट गो डाउन। So basically, I'm just able to take care of myself.
0: लेकिन अगर हम देखें ससुर शिवानी, तब तक मेरा एनर्जी फील ठीक रहता है, अगर रिलेशनशिप में रियली देखते हैं, अगर मेरे सपोज हस्बैंड आए या मेरे फादर आए, जब तक वो पर्सनल नहीं होता, तो वो जब वो होना शुरू होता है, देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन, और तब मुझे वो दिखना बिखना सब बंद हो जाता है, देन ऑल ऑफ माई यू नो सारी जो फैकल्टीज हैं वो काम करनी बंद कर देती है, जब वो मेरे साथ पर्सनल मुझ पर अटैक होने लगता है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एक रिश्ते में, जब हम देखते हैं कि जब तक उनका किसी और के प्रति नाराज़गी थी, किसी और से गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वो नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन आई वॉज एबल टू टेक इट एंड आई वॉज एबल टू हेल्प हिम आउट ऑल्सो, कि ठीक है आप कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, पानी पी लो, ये करो। लेकिन जब वो मेरी तरफ टारगेट हुआ और वो मुझे ही पर्सनली हिट करने लगे, वो पुरानी पुरानी बातें जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने याद रखी होंगी, अपने साथ रखी होंगी, सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मुझे डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता। सो ईदर आई रिएक्ट, एंड इफ आई डोंट रिएक्ट, आई गो इन टू सो मच ऑफ डीप हर्ट।
1: Now when we say reaction, तो reaction पहले कहाँ होता है, ठीक है ना? आपने जो कहना है वो आप कह रहे हैं। कई बार ये होता है कि मैं चुप रह जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, तो मुझे लगता है मैंने react नहीं किया। मैं कहती हूँ मैंने चुप

0: करके सुन लिया, मैंने चुप करके सुन लिया, लेकिन कितनी बार भी चुप करके सुनो, इनका तो चलता ही रहता है, ये
1: चलते ही
0: बार
1: रहते
0: बार ये
1: हैं।
0: सब बोलते रहते हैं, एंड देन भी से हम कब तक फिर ऐसे चुप
1: एक
0: करके
1: बार तो मैं
0: सुनेंगे?
1: चुप रह ली, अगली बार मैं नहीं रहूंगी चुप, कितनी बार ये भी
0: लेकिन
1: कहते।
0: हमें अपने आप से ये पूछना होगा, क्या सचमुच में मैं चुप रहे? चुप मीन्स नो क्रिएटिंग ऑफ
1: थॉट्स।
0: नेगेटिविटी। नेगेटिविटी थॉट्स तो आएंगे, बट नो क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, तब हम कह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हम क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने कहा कि दूसरा अगर गुस्सा करे आप चुप रहोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। नाउ दे टेक हाफ द फॉर्मूला, टेक द फुल फॉर्मूला,
1: एंड जैसे कि
0: या
1: चेंज नहीं हो
0: हाँ,
1: सकता।
0: एंड देन दे से मैं तो चुप रही लेकिन वो चेंज तो हुआ ही नहीं। फंडामेंटल बात, पहली बात, हम चुप रहते हैं उनको चेंज करने के लिए नहीं। अगेन द थॉट इज नॉट कि मैं चुप रहूं ताकि वो चेंज हो जाए, मैं चुप रहूं पहले ताकि मैं चेंज हो जाऊं, मैं प्रोटेक्टेड रहूं। एंड चुप रहना मतलब क्या? यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना, कि हाँ वहाँ से एंगर आ रहा है, वहाँ से दर्द आ रहा है, लेकिन पहले मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो यहाँ नहीं क्रिएट होता, पहले यहाँ क्रिएट होता है। जैसे आपने अभी कहा कि इतनी पुरानी बातें कई बार किसी को याद आ जाती हैं, वो कहेंगे पिछली बार भी आपने ये कहा, 1 साल पहले आपने ये किया था। ये क्या हो रहा है? यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि जो कबर्ड है
1: वो
0: वो
1: खुल
0: खुल
1: गया।
0: गया और सारा कुछ जो उसके अंदर स्टफ किया हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा
1: और फिर
0: है,
1: मैं भी अपना कबर खोल देती हूँ कई बार
0: और
1: तो।
0: सडनली वो जो एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब कि हमने बहुत समय से वो बहुत कुछ सोच कर अपने कबर्ड के अंदर दबा कर बंद रखा होता है। आप देखो, कभी हम किसी के घर जाते हैं तो घर बाहर से बहुत सुंदर होता है, सब नीट एंड क्लीन, लेकिन कबर्ड अगर खोलो,
1: सब कुछ ऊपर गिरेगा आपके।
0: ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाता है कि बाहर से तो बहुत साफ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन कबर्ड में शायद बहुत सारा ऐसा कुछ रखा है। और जैसे ही ये ऐसी सिचुएशन आती तो वो कबर्ड एकदम खुल जाता, और जैसे न घर का भी कबर्ड होता है, आप जैसे खोलो यू हैव नो कंट्रोल आफ्टर दैट कि वो क्या क्या क्या क्या एक के बाद एक निकल कर गिरता जाएगा। फिर आप उसको रोकने की भी कोशिश करो
1: नहीं
0: तो वो
1: होता।
0: रुकता नहीं है। संभाल कब करनी थी कि रखते टाइम ही क्या रख रहे थे और किस तरह से रख रहे थे। इसी तरह जब हम बोलना शुरू करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा होता है, कई बार बाद में खुद को हैरानी होती है, क्या बोला मैंने,
1: क्या वेरी
0: यू नो
1: ट्रू यू नो।
0: व्हाट वाज
1: और
0: आई सेइंग टू दैट अदर पर्सन, एंड देन इमीडिएटली आई से आई एम सॉरी आई डोंट मीन टू से दैट। अब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि मेरा एक्चुअली कहने का भाव नहीं था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इन्होंने ऐसा किया, और उस टाइम हम दर्द में गए होंगे जब वो सिचुएशन हुई होगी, और हमने उस दर्द का जिम्मेवार आपको समझा है, और इसलिए हमने उस बात को पकड़ कर रखा है, और अब आप फिर से जब ट्रिगर करोगे मुझे तो मैं वो सारी बातें बाहर निकालूंगी। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या हो जाता है, सिचुएशन तो इतनी थी लेकिन वो सारी कहीं की कहीं यू नो बढ़ जाती है। तो द नीड ऑफ द आवर इज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ताकि सिचुएशन डजेंट गो आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? अब आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज वट यू वर सेइंग। यू सेड कि अगर वो ऑफिस के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, इधर उधर के लोगों के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। वाई? बिकॉज आई एम नॉट इन पेन। तो बिकॉज आई एम नॉट इन पेन मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। सी, एंड फंडामेंटल रिश्तों में क्या है कि हमें एक दूसरे
1: ध्यान।
0: का ध्यान रखना है, कि अगर दूसरा दर्द में चला गया मुझे उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बीमार हो तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना, लेकिन अगर कोई इमोशनली बीमार होता है तब क्या होता है, हम उसकी बीमारी को कैच
1: खुद लेते हैं।
0: कर लेते हैं, और जैसे ही हमने उसकी बीमारी को कैच कर लिया हम बीमार हो गए, और जैसे ही हम बीमार हो गए हमने उसका ध्यान रखना, हमें
1: कर
0: तो
1: नहीं
0: अपना ही नहीं
1: सकते।
0: ध्यान रखना आता उस टाइम, तो आपका ध्यान मैं क्या रखूंगी? और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये जो वायरस आ रहा है ना मेरी तरफ, ये वायरस आना बंद हो जाए, तब मैं ठीक हो जाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नो हाउ टू हील यू। तो जैसे हमने कहा कि अगर वो कोई और बात पर गुस्सा कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलरली अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, यू नो पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ कह रहे हैं, कैन आई गिव माई सेल्फ अ थॉट कि एक्चुअली वो मुझे नहीं, अभी भी वो अपना दर्द ही बाहर निकाल रहे हैं, कारण कुछ और होगा, फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है, इमोशनल चोट उनकी अपनी है. टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है. दे कैन शाउट अबाउट द चिल्ड्रन, ही कैन शाउट अबाउट मी, ही कैन शाउट, बिकॉज व्हेन आई गो इनटू अ रिएक्टिव मोड, लॉजिक
1: doesn't hold. Yes.
0: You know, sometimes we tell each other, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना इलॉजिकल कैसे बात कर रहा है ये व्यक्ति. लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर कि एंगर कब से लॉजिकल होने लगा, रिएक्शन लॉजिकल कब होता है. उस समय तो हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. तो जब हमें ये पता है कि इस समय ये व्यक्ति दर्द में है, अंदर से हर्ट है, तो इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिएक्टिव ही होगा. उस समय उससे लॉजिक एक्सपेक्ट करना, डोंट. उस समय एक्सपेक्ट करना कि वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझे, डोंट. तो उस समय तो सिर्फ मुझे किसका ध्यान रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा कि ये मुझे नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये उनका पर्सपेक्टिव है. मुझे पहले किसका ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हर्ट अपने आप को मैं करती हूँ, वो नहीं कर रहे. हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं वो इतना कुछ कह रहे हैं, हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को जो कहना है वो चॉइस किसके पास है.
1: But it goes deep in me, you know, like वो जो वो sentences होते हैं, they stay and then they'll always bombard you, पूरा टाइम आपके कानों में वो गूंजते रहते हैं.
0: तो हमारा नुकसान पहले ज्यादा कौन कर रहा है?
1: हम खुद
0: कर रहे हैं. हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा कहा. हम अपने आप को क्या कहते हैं सारा दिन? उन्होंने अगर एक सेंटेंस कहा भी तो एक बार कहा, हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं वो सेंटेंस? उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कितनी बार कह सकते हैं? 5, 10, 20, 50 बार भी अपने आप को बोल सकते हैं. ज्यादा नुकसान कौन कर रहा
1: है?
0: दिस इज कॉल्ड टॉर्चरिंग योरसेल्फ. अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को दर्द देना, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन. अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं हम इमोशनली. एक है फिजिकल अब्यूज, लेकिन एक है इमोशनल अब्यूज. दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, वो अपना फेंका बाहर, लेकिन अपना दर्द मैंने क्रिएट किया. एट दैट टाइम डू आई हैव द पावर टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी भी चॉइस मेरे पास है.
1: आई डोंट हैव अ चॉइस जो है वो लाइन.
0: आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा फील करना है. लेकिन वो अवेयरनेस तब क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव थॉट तब क्रिएट हो पाएगा अगर वो सारा दिन में क्रिएट किया होगा. नहीं तो मुझे सिर्फ उन्हीं की थॉट्स सही लगेंगे. वो कह रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ. वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं करती. तो इट्स नॉट अबाउट वो मुझसे नफरत करते हैं, इट्स अबाउट मैं अपने आप से करने लग जाती हूँ
1: कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ? अच्छा, देन आई लास्ट 10 पीपल, यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ?
0: I need a verification certificate.
1: No, but we do it with so many people, you know. The hurt goes so deep and then we'll call 10 people, you know, what she said, what he said. Aur aapko lagta hai, kya main aise hi hu? Kya main aise karti hu?
0: Dekho na, wo kaise hai? Wo aise bolte hai. I need an assurance from people. Why? Because I don't know myself. Why don't I know myself? Because I don't have a relationship with me. मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है.
1: मैं दूसरों की नजरों से अपने आप को देख रही हूँ एक्चुअली.
0: तो मैं आपकी हर बात को सच मानकर अपने ऊपर वो लेबल लगाना शुरू कर देती हूँ. तो अगर आप मुझे आकर कहते हैं आप बुरे हैं, मैं सच मानती हूँ. अगर आप कहते हैं आप कोई काम के नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सच मानती हूँ. अगर आप आकर कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा आगे भी जाकर, मैं सच मानती
1: हूँ.
0: तो मैं आपकी हर बात को लेती हूँ, उसको स्वीकार कर लेती हूँ, सच भी मानती जाती हूँ, और अपने आप को बार बार वो रिपीट भी करते जाती हूँ. सो हुज क्रिएटिंग द पेन? एंड देन वी से उनकी वजह से दर्द.
1: ओह, आई एम डूइंग सो बैड टू मायसेल्फ.
0: It's to myself. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एंड दिस हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद, लेट्स से इट हैपेंस टुडे इवनिंग और टुमारो, इमीडिएटली फर्स्ट थॉट, क्योंकि तूफान देखो आता हुआ दिखाई तो देता है. इट्स लाइक
1: अब तो दिखने लग गया, अब तो दिखता है.
0: हाँ, स्टॉर्म दिखाई तो दे रहा है. कोई भी स्टॉर्म ऐसे ही नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, वो दिखाई देता है. जैसे ही आपको स्टॉर्म बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तुरंत अपने आप को बोलो ओके रेडी. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. अभी हमें तुरंत लगता है, let me take care of them. उनको चुप करा दो, उनको ठीक करा दो. अपने आप को चुप करा दो इधर
1: यहाँ। कितनी बार हमें लगता है जब वो कोई चिल्ला रहा होता है कि वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ही शुड नॉट शाउट, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट आई थिंक समवेयर जो मेरे अंदर की आवाज़ है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, और इसमें सचिवानी वो जो 1 आवर के बाद 1 मिनट है,
0: राइट, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, बिकॉज 1 आवर के बाद 1 मिनट स्टॉप करके पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, मतलब अपने माइंड को एक प्रैक्टिस दे देना पॉजिटिव थिंकिंग करने की। हम क्यों कहते हैं हर एक घंटे के बाद 1 मिनट, क्योंकि हर एक घंटे में हम बहुत सारी सिचुएशंस में हैं, तो हमारा मन यहाँ वहाँ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा है, तो इट्स लाइक अ कार विच इज़ ड्राइविंग इन द 4th or the 5th gear एंड देन सडनली 1 मिनट, तो हम 1 मिनट मतलब हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक कैसी है। अगर वो 1 मिनट भी वो परिस्थिति और लोगों के बारे में ही सोचने में चला गया, इसका मतलब आपने ब्रेक लगाई तो थी लेकिन ब्रेक लगी नहीं, दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड। इसको प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, गाड़ी की ब्रेक को ठीक करते रहना। अब क्या होगा, जैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, सडनली stop and a positive thought, not stop thinking but stop all those ordinary thoughts and a positive thought, I am a powerful being. ye practice hai sara
1: actually
0: day.
1: It gives you a lot of power, you know.
0: Now this is practice jab koi tufaan nahi hai. This is practice jab koi tufaan nahi chal raha. Ab aaya tufaan, aaye yahan se log ya koi situation aur kisi ne kuch keh diya, mujhe practice ho gayi hai. Dekho hum gaadi ki brake kab check karte hain, jab road par कोई नहीं है, हम फास्ट चलाते चलाते तुरंत ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता है कि ब्रेक ठीक चलती है, चेकिंग की हुई है, तो जब एक्सीडेंट के टाइम पर पहुंचे तो तुरंत ब्रेक लगाए, बच गए। लेकिन अगर ब्रेक पहले नहीं चेक की हुई है तो फिर उस टाइम तो लगाने की भी कोशिश की तो कहाँ की कहाँ गाड़ी पहुंच
1: जाएगी। अच्छा, जिसको ब्रेक लगानी आती है वही लगाएगा, नहीं तो एक्सीलेटर पर पैर दब जाता है। आई रिमेम्बर समबडी जो गाड़ी सीख रहे थे और उन्होंने ब्रेक लगानी थी लेकिन गलती से एक्सीलेटर पे लगा और तेज चली गई।
0: दैट इज अ वेरी गुड वन। तो जब सिचुएशन आती है तो यहाँ स्टॉप करने की बजाय हमारा भी तो एक्सीलेटर ही चल जाता है और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। सो दिस प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब जब यहाँ से सिचुएशन आती है ना, आई हैव प्रैक्टिस्ड, I am a positive being, I am a powerful being. This only will come if we have practiced many, many times. And agar hamara focus right hai, ki mujhe pehle apna dhyan rakhna hai. This is not being selfish. Kai baar log kehte hain bahut selfish nahi hai.
1: And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain.
0: Kyunki jaise aapne kaha abhi, ki jab wo auron ke baare mein chilla rahe the, तब मैं उनकी मदद कर रही थी, क्यों? क्योंकि तब मैं ठीक थी। इसी तरह अगर वो मेरे बारे में भी शोर मचा रहे होंगे, अगर मैं ठीक होंगे तो मैं क्या कर सकूंगी, उनकी मदद कर सकूंगी।
1: आई कांट बिलीव दैट कि कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव कह रहा है या इतना कहता जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। बट यस, इफ यू आर सेइंग
0: मदद करना मीन्स क्या करना,
1: उनकी हेल्प करना,
0: किस तरह से उनकी हेल्प? फर्स्ट चीज तो ये होगी कि मैं स्टेबल रहूंगी, क्योंकि जैसे ही मैं स्टेबल रही, नॉट हियर हियर, जैसे ही मैं यहाँ स्टेबल रही, इट्स ओके, इट्स ओके, वो कोई दर्द में है, आई एम नॉट कंज्यूमिंग द पेन, आई एम ओके, वो भी ठीक हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही हम अपना ध्यान रखते तो कौन सी एनर्जी वहाँ फ्लो होगी।
1: एक्चुअली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, जहाँ मैं स्टेबल हो गई, जहाँ उन्होंने देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया। सी ही विल से 5 sentences और शी विल से 5 sentences, उसके बाद व्हेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, द काइंड ऑफ रिएक्शन ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ही विल आल्सो टेक अ पॉज।
0: अभी क्या होता है, यहाँ से सिचुएशन आई, मैं भी अपसेट हुई, फिर मैं ये इनके लिए सिचुएशन बन जाती है, फिर ये अपसेट होते हैं, फिर ये मेरे लिए सिचुएशन बन जाते हैं, एंड द गेम जस्ट गोज ऑन।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, उनका क्लोजेट खुला, साथ साथ मेरा भी तो खुलता है उसी वक्त, मेरे पास भी तो उतना लंबा वो बॉक्स होता है।
0: इट जस्ट नीड्स वन पर्सन। सिर्फ ये है कि कई बार हम कहते हैं व्हाई डू आई हैव टू बी दैट वन पर्सन, दैट्स द क्वेश्चन, कि वो हर टाइम बोलते रहे आई हैव टू बी दैट पर्सन। यस, यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव योरसेल्फ, एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव द अदर पर्सन। क्यों हम क्लेम करते हैं ना, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल।
1: वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर हम रियलिटी में देखें तो कहीं ना कहीं हम कहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
0: सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा वेन वी ट्रैवल बाई एयर तो यू नो द सेफ्टी रेगुलेशंस जो बताए जाते हैं सबको, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक होता है कि इफ देर इज अ टर्बुलेंस एंड एयर प्रेशर कम होगा द ऑक्सीजन मास्क विल फॉल डाउन. एंड यू नो हम देखते हैं कि द ऑक्सीजन मास्क जस्ट कम्स डाउन. लेकिन उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कि ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले अपने को लगाना है. बच्चों का ध्यान या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ध्यान बाद में रखना है, पहले अपने ऊपर लगाना है. अब जैसे ही हम ये सुनते हैं विल बी से इजन दैट बीइंग सेल्फिश कि पहले ध्यान अपना रखना है. नो बट इट्स लॉजिकल कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे आप दूसरे का ध्यान कैसे रख
1: आप एक्चुअली खुद तो ब्रेथलेस है और दूसरे को मास्क कैसे लगा पाएंगे?
0: See, it's because physically हम उसको बहुत easily देख सकते हैं कि अगर I am not breathing properly, you know, I just have to create that scene in front of me. कि if I am not breathing properly, I am getting suffocated. Will I be able to put the oxygen mask? मेरा हाथ ही हिल जाएगा. In the process, दोनों का नुकसान हो जाएगा. इसलिए तुरंत सबसे पहले अपना ध्यान रखें. आप कितने औरों का ध्यान रख पाएंगे उसके बाद, यही चीज हमें उस टाइम करनी है कि जैसे ही तूफान आएगा, आता है तूफान, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाना है? अपने आप को लगाना. बिकॉज आई कैन कैच द स्टॉर्म. यस, टर्बुलेंस हो रही है, सब आसपास एनर्जी हिल रही है, मुझे अपना ध्यान रखना है. एंड जैसे ही मैं अपना ध्यान रखा, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मैं अंदर सफोकेट नहीं हो रही, फिर मेरे पास मार्जिन है आपका ध्यान रखना. फिर रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट दिस सीन. आप अपने सामने एक सीन लेकर आए जब लास्ट आपके साथ किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ या वट एवर आर्ग्यूमेंट हुई. Rewind that scene and look at yourself responding in another way. Not जो आपने कल respond किया था.
1: बच्चे के साथ ही अगर हम देखते हैं कि बच्चे ने ये कुछ खाना है जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं खाना है ये, और हम ये जो no no no करते जाते हैं because we're doing it for that child only. लेकिन वो जहाँ हमने किया कि नहीं, हम क्या कहें फिर, यहाँ खा लो.
0: No, it's not कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि something is not good for him, कि आप करने दो. लेकिन you know the energy, I think everyone should be able to understand कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं that is the energy that gets created at that time. It doesn't mean आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो. No, we're not saying that. Because बच्चे को right direction में लेकर जाना ये भी हमारी
1: actually हम एक बार firm हो जाए ना कि नहीं खाना है, लेकिन हम उसके साथ क्रिएट जो है, हम एक्चुअली गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, पांच चीज़ें और साथ में जोड़ते हैं. तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हर बार यही करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम चार पांच चीज़ें और जोड़ देते हैं.
0: तो एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम? एक, क्योंकि हर सीन की एक एनर्जी होती है. बिकॉज वी सेड दिस इज ड्रामा, वी आर एक्टर्स एंड देर इज एन एनर्जी फ्लो. तो एक होता है डायलॉग, लेकिन एक होता है एनर्जी ऑफ दिस सीन. तो डायलॉग तो हमें जो हमें उस सीन के लिए राइट लगता कि नो यू हैव टू स्टडी और यू डोंट हैव टू गो डाउन टू प्ले वट एवर. लेकिन एनर्जी, टर्ब्यूलेंस की जरूरत तो नहीं है ना हर सीन के अंदर, क्योंकि सीन तो हर थोड़ी देर के बाद सीन आने वाली है.
1: अच्छा, और वो तो करेगा ही. हम क्या कहते हैं कि वो फिर हमारे साथ नाराज हो जाता है या वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो उसका पर्सपेक्टिव.
0: या लेकिन उसका वो पर्सपेक्टिव भी चेंज करने के इंस्ट्रूमेंट कौन बन सकता है?
1: हम बन सकते,
0: यू नो, बिकॉज यू आर इन पेन. सपोज यू आर द चाइल्ड एंड आई एम टेलिंग यू कि नहीं, बट आप फिर भी रिएक्ट. अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अगर एक बार प्यार से बोला आप तुरंत उसी एक बार में ठीक हो जाओ? इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. आप दर्द में हैं, मेरे एक बार ठीक बोलने से नहीं आप चेंज हो जाएंगे. गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कीप ऑन गिविंग द राइट एनर्जी, क्योंकि द सोल जो सामने है आपके वो दर्द में है. आपका जो रोल है सिर्फ उसको खाना खिलाना पढ़ाना, वो रोल नहीं है. आपका रोल है उस आत्मा को एम्पावर करना. ये है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खाना तो खिला ही देंगे, पढ़ा तो देंगे, लेकिन उस आत्मा को दर्द से निकाल कर एम्पावर करना ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: या तो हम उसे बिगाड़ देते हैं या हम उसको दर्द में ले जाते हैं. वेरी ट्रू.
0: तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ठीक है, बट मैं अगर आपके ऊपर इतना जोर जोर से चलाएं तो आप तो और दर्द में चले जाएंगे. फिर आप भी रिएक्ट करें, फिर मैं भी कर रही हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग? बोथ ऑफ अस गोइंग इन पेन. तो माय फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ माय सेल्फ हियर एंड टेक केयर ऑफ यू फर्स्ट हियर. मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप टू एम्पावर द सोल. आप आत्मा को एम्पावर कर दो, वो राइट डिसीशंस तो अपने आप ही ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे, या एटलीस्ट वो सक्षम होंगे हमारी बात सुनकर उसको यू नो फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर वो ऐसे डिप्लीट होते जाते हैं तब उनको हमारी कोई भी बात कैसे अच्छी लगेगी.
1: एक्चुअली यही हो रहा था, हमें पता भी तो नहीं चल रहा था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. तो वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, जिस तरह से आज हमारे सामने बात आई है, खासकर जब भी कोई सिचुएशन आती है. लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं रिश्तों में जहाँ सिचुएशंस नहीं हैं, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, ऐसा लगता है कि दिस नो कनेक्टिविटी बनती नहीं है हमारी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. सो वो क्या है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: हो सकता है कोई बात आपके मन में हो आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई, या अदरवाइज जो हम सीरीज कर रहे हैं, या जीवन से जुड़ी हुई, आपका हम स्वागत करते हैं. आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि पूरी श्रृंखला, पूरा प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा मंच है जो आप ही के लिए है. हम आप साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखना है. तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0989-999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@pkmail.org.

अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे, रिश्ते को नए नजरिए से देखेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ या बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
1: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, वो विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करें तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है
0: 8 वीक्स
1: तक गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: अब अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज हैं, ये ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये हैं, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो ईजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहाँ से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माई टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माई मेडिटेशन, व्हेन देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट कि शुरू में
0: व्हेन आई कम बैक, यू नो,
2: यस,
0: व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस,
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करो और वो गुण पर चिंतन करो, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरो, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है. इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली. 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है, इट विल डेफिनेटली.
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने शुरू.
1: ये बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है. कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा. क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है. और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे. फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफ़ी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे.
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन.
2: बेसिकली 15 मिनट में आपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना. अस्सी जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है. लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले. आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स. गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं. तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुलाइज कैसे करें, क्या करें. क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है. I just can't imagine, visualize नहीं कर पाते हैं.
1: I will give you one example कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा. वह है डायबिटीज. कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की. छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें. कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे. शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं. शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया.
0: बिना दवाई के.
1: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था. हमने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर. अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई. और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई.
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की,
1: हाँ, ब्लड इंसुलिन. आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ. परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई, और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया. उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हो, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है जो विजुअलाइजेशन करना है. सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है.
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है.
1: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ. तो सबसे पहला तो यह स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है. उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है. दवाइयाँ भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं. तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है. फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज़्यादा शुगर है, ज़रूरत से ज़्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है. शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है. तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं.
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है, वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
1: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
1: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
1: है तो वो काम नहीं कर रहा है,
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
1: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी
1: हाथ पैर सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है। और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं, ये
0: चारों कैसे करेंगे?
1: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बहन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वह पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और नहीं पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: I could visualize actually. Cuddle it.
1: ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
1: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, कि भी उसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या होगा?
0: मन करेगा खाने का।
1: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
0: हम खा लेंगे,
1: पैसे उससे देंगे। पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा।
0: अच्छा, मुंह में पानी
1: देखो वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथि है।
0: अच्छा,
1: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके
0: तब ये, हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना।
1: हाँ,
0: it's possible
1: that it is working. और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपेंस।
0: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा। ओ, तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
1: हर हर ऑर्गन
0: उतना ही जितना चाहिए।
1: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए।
0: अच्छा।
1: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया
0: कि इट इज एक्चुअली वर्किंग.
1: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
0: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
1: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि भी ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
0: अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन
1: कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूँ. ये सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, ये सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
0: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया. हाँ, वो व्हाइट व्हाइट
1: स्क्वायर से वो अंदर चले गए.
0: मैं कर पा रही हूँ. और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता
1: है. बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वन दूसरा एक कहते हैं कि भी आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो. 250 लिखा है सारे बॉडी में. 250 लिखा हुआ है ब्लड में उतने सारे स्क्वायर से. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियल ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया
0: वो ब्लड में.
1: आत्मा में वह शक्ति है कि वो प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
0: Does it require quite lot of concentration?
1: Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना? Relaxation की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन. मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है. अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं. इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट. नाउ आई एम हीलिंग माय ओन बॉडी. सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है. इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं.
0: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ अच्छा. दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती.
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड. हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते. हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए. अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माय माइंड विल डू इट. सी इफ माय माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माय माइंड कैन हील द थिंग. अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना. इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर. अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट. इट विल डेफिनेटली वर्क. लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते. नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी. देन द पावर ऑफ द थॉट विल नॉट वर्क. पावर ऑफ द माइंड टू वर्क, फिर वो थॉट पावरफुल, पॉजिटिव एंड कंसंट्रेटेड होगा. उसमें कोई
0: कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा,
2: डाइल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि एक थॉट है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा थॉट है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं. देन तो क्या एक थॉट से मैं पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही हूँ, दूसरे थॉट से मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर एक्चुअली. सो इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली. इट हैज टू बी वेरी फोकस्ड, चैनलाइज थॉट्स. इसलिए मेडिटेशन का जो अभ्यास रेगुलर रीति से करेंगे, पर उनके लिए ये करना it's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
0: Actually,
1: और एक aspect आपको बताता हूँ जो डायबिटीज में है कि भी अधिकतर जो टाइप 2 डायबिटीज है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है, अधिक भी होता है. जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है. परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
0: अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी तो,
1: हाँ, ताला काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंग लगा है। वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है। टेंशन, ग्रीड, ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने यह कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूँ कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है। सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया। अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई,
0: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
1: कम। हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
0: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें सचिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
0: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
1: पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
0: हाँ,
1: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, we were creating thoughts of pain, you know, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज़्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा की ये दोनों जो फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हारमनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हारमनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
1: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। हाँ, आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 ईयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी जरूरत क्या, एक तो बताता हूँ पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
0: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
1: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा। दूसरा, ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है। पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है। वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया, तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
2: इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी एक्चुअली। वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन। घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रहे हो सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
0: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोलें और कहें और सोचें,
2: सोचकर सोचें, पहले ध्यान से सोचें।
0: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ में हैं। आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया, जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया,
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया,
0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया,
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया,
0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी ये ना, ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: साधी भोळी माझी आई, सुखाची तू सावली,
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते, आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
7: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
8: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। बीके तुषार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो न्यूरोथेरेपिस्ट है, नेचुरोपैथ है, और इनके साथ में बीके भावेश जी भी हमारे साथ हैं, जो खास नेचुरोपैथ ही हैं, और नरेश जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीज़न और विशेष नेचुरोपैथी अभी उन्होंने सीखा है। तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि इतने रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है इन चीज़ों को सीखते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिल जाता है। तो हमारे तीनों मेहमानों से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी जहाँ पर हम लोग नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जो है मास्टरी करके, आज सरकार भी जो है जागरूक है, इंडियन गवर्नमेंट, और सर्टिफाई कोर्सेस जो है इसके लिए आपको अवेलेबल है दिल्ली से, और वहाँ से सर्टिफाई होने के बाद आप जो है अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं नेचुरोपैथी का। और इससे जो है बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक मेडिसिंस लेते हैं या हमेशा बीमार रहते हैं, और उनको थोड़ा सा एक घंटे का थेरेपी अगर डेली देते हैं तो उनके मेडिसिंस भी कम हो जाते हैं और इन्हें रिलीफ भी मिल जाता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिल जाती हैं। तो आइए, ऐसा जो एक सेवा के साथ साथ जो है दुआएं कमाने का बहुत ही सुंदर कार्य हम लोग इस थेरेपी के माध्यम से, अल्टरनेटिव मेडिसिंस के माध्यम से हम लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे नेचुरोपैथी के सेंटर्स भी बड़े बड़े आजकल अच्छी तरह से मॉडर्न स्टाइल में खुले जाते हैं, और इसमें लोग जो है रिलैक्स होने के लिए जाते हैं और ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा जो है फील है, एक अच्छा स्टेटस है, तो आप अपना करियर इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो आइए, इसी चीज़ को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो आप सभी की तरफ से बीके तुषार जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी तुषार जी, कैसे हैं आप?
9: जी बढ़िया हूँ मैं।
8: हाँ, और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमें।
9: जी मैं एक्चुअली कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ मैं, और इस न्यूरोथेरेपी में 9 से 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ जी, और इसमें रिजल्ट तो बहुत गजब के रिजल्ट है। ऐसे ऐसे भी पेशेंट, ऐसे ऐसे केसेस है जो नागपुर वेलूर में होपलेस हो जाते हैं, जिसको घर बिठा दिया गया है, जो आप कभी चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे केसेस ही हम लोग ज़्यादा हैंडल करते हैं, और वो आज प्रॉपरली चल रहा है, दौड़ रहा है।
8: अच्छा
9: जी, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, वो अपने अपने कार्य में एकदम बिजी है, अपने गाड़ी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसको बताया गया है कि जो आप कभी चल नहीं सकते हैं। हाँ जी, जबलपुर में ऐसे केसेस हम लोग काफ़ी किए हैं, जो कमर से टोटली विकलांग हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया आप कभी चल नहीं सकते हो। तो ये न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम पौराणिक कह सकते हैं, इसको नाड़ी मर्दन प्रक्रिया भी कहते हैं।
10: अच्छा,
9: तो एक थेरेपी जो है विदाउट मेडिसिन हम 100% रिजल्ट देते हैं, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट में शायद भारत में 100% गारंटी ट्रीटमेंट नहीं होता है। पर न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ 100% पेशेंट ठीक होता है विदाउट मेडिसिन।
8: जी जी जी तुषार जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, 100% आपको जो है न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट्स मिलता है। तो क्या ये सभी बीमारियों में काम करता है या पर्टिकुलर कुछ बीमारियों में?
9: नहीं, यह मिनिमम कम से कम 100 बीमारी में, डिजीज में ये काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है। मैं न्यूरो के साथ साथ मैं कायरोप्रैक्टिस भी करता हूँ एक्चुअली।
8: जी,
9: यहाँ बोन्स एडजस्टमेंट होता है और नर्वस सिस्टम में भी ओके होता है। तो देखा जाए सभी प्रकार की बीमारी में हम लोग यहाँ काम करते हैं, सर्दी बुखार से लेके आपका नी पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, नर्वस सिस्टम कुछ भी हो, पैरालिसिस, सब में काम करता है ये चीजें।
8: सर्दी जुकाम में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है?
9: इसमें भी हम लोग का ये होता है, फार्मूला होता है कुछ कुछ।
8: अच्छा, अच्छा।
9: जी, वो फार्मूला देते हैं, तो जिसको लीवर में डैमेज है, फीवर है, तो फीवर में कौन सा फार्मूला यूज करना है ना, तो 125 फार्मूला है न्यूरोथेरेपी में।
8: अच्छा
9: जी, तो फार्मूला हम लोग देते हैं, तो उस फार्मूला में काम करता है बॉडी में।
8: अच्छा,
9: क्योंकि पहले भी लोग, राजा लोगों के पास ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, उनके पास भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, नाड़ी ज्ञान होते थे ना, तो उस समय भी लोग 100-100 साल से ऊपर जीते थे। अभी तो सब कुछ आ गया, साइंस ने तरक्की कर ली, फिर भी इंसान का आयु का कोई गारंटी नहीं है और ही जल्दी निकल जा रहा है वो, तो बीमारी बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। पर हम लोग का एक संकल्प है जो न्यूरोथेरेपी को घर घर पहुंचाना है। अरे न्यूरोथेरेपी ये कोई भी कभी भी कहीं कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति को सीखना जरूरी भी है ये चीज, और इससे हम कमाई भी कर सकते हैं। 6 महीने का इसका एक बेसिक सीनियर कोर्स है, जो करके आप अपना गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी क्लिनिक खोल सकते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा मार्ग है, क्योंकि आज एजुकेशन लेके सब घर बैठे हैं, बेकार घूम रहे, कुछ कर नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति को, उन युवा भाइयों के लिए हम कहेंगे, उन युवा बहनों के लिए कहेंगे, ये चीज़ जरूर सीखे, इसका फायदा ले, परिवार को भी स्वस्थ रखे, सारे भारत को भी स्वस्थ रखे, साथ में कमाई का साधन भी है।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तुषार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक नई क्रांति का जो काम है वो शायद इससे हो सकता
9: जी,
8: है देश की सेवा है, मानव सेवा ही देश की सेवा है।
9: बिल्कुल
8: तो अगर हमारे भारत के लोग समृद्ध होंगे, हेल्दी होंगे, तो निश्चित तौर पे एक हेल्दी इंडिया का हम लोग रिप्रेजेंटेशन,
9: स्वस्थ भारत बने।
8: बिल्कुल, और वो भी बिना कोई मेडिसिन का, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ भावेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है और हाल ही में उन्होंने इस प्रैक्टिस को पूरा किया है। तो मैं चाहूँगा भावेश जी, आप अपने बारे में बताइए, आप इस फील्ड में कैसे आए, क्या सोच के आए?
11: ओम शांति, मेरा नाम भावेश नागदौने है और मैं सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। भाई जी, हमारा क्लिनिक है एवर हेल्दी वेलनेस न्यूरोथेरेपी एंड योगा सेंटर के नाम से। न्यूरोथेरेपी में आने का जो मकसद था, वो सच कहूँ तो इस थेरेपी को कभी मैंने सीखने की कभी कोशिश नहीं की। ऐसा फील हुआ कि ये गॉड गिफ्टेड, मतलब बाबा ने इसे गिफ्ट दिया है करके। जब भी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए करते हैं तो उसमें हमें मेहनत लगती है, बट जब किसी चीज़ को हम अंदर से चाहते हैं तो उसमें हमें मेहनत नहीं लगती बिल्कुल भी। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ योग आयोग में जब हमारी दीदी जी, वहाँ ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी टिकरापारा सेवा केंद्र से, जब वो छत्तीसगढ़ योग आयोग की सदस्य रही थी, तो उन्होंने हम जैसे कई युवाओं को वहाँ छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षण में लेके गए थे। तो वहाँ आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी आए थे, जो अभी दिल्ली में आरोग्य पीठ के नाम से संस्था चला रहे हैं। वहाँ हमें न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला, और उसके बाद फिर सिर्फ हम ही नहीं, जैसे हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहना चाहिए ना, कि हम परिवार को भी संभाल सके, और इस अगर कोई ईश्वरीय पथ पे चलना चाहता है, ये इस ज्ञान को एक्सेप्ट करके रहना चाहता है, तो दोनों तरफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पिरिचुअल और न्यूरोथेरेपी, इस दोनों का बैलेंस मैंने अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी इस युवा वर्ग से संबंधित हूँ।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
11: मैं भी युवा हूँ, और मेरे लाइफ में तो परिवर्तन हुआ है इससे।
8: तो इसमें आप कैसे, आपका आजीविका चल जाता है बढ़िया सर?
11: जी भाई जी, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में विदाउट मेडिसिन, जैसे हमारे तुषार भाई जी ने बताया था कि विदाउट मेडिसिन थेरेपी है ये, तो जो भी न्यूरोथेरेपी में फॉर्मले रहते हैं और जो भी लोग रहते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तकलीफ तो आजकल हर जगह है भाई जी, हर जगह तकलीफ है, तो पेशेंट्स की कमी नहीं है। बाबा भी यही कहते हैं, हर पूरी दुनिया पेशेंट बनी हुई है, तो आजीविका चल जाती है, बहुत अच्छा इनकम का सोर्स भी है ये, और बहुत अच्छे से ये होता है।
8: चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपने तुषार जी और भावेश जी का एक्सपीरियंस सुना, दोनों ही न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, और पूरे भारत में जैसे कि तुषार जी अलग अलग जगह पे जाकर भी अपनी थेरेपी को देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं, और ऐसे ही हमारे बीच में सीनियर सिटीज़न जिनका मैंने नाम लिया था, नरेश जी भी हमारे साथ हैं, वो भी अभी अभी रिसेंटली इस कोर्स को किए हैं, तो कैसे इससे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताया आप जी।
10: नमस्कार,
8: नमस्कार,
10: ओम शांति। मेरा नाम नरेश कुमार श्रीवास है, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ
8: जी,
10: और मुझे इस थेरेपी में इसको और आगे जाने की जो जिज्ञासा है वो आदरणीय डॉक्टर तुषार जी से ही प्राप्त हुई है, और मुझे बहुत तकलीफ थी, और तो एक हमारे साथी हैं वो इनके पास लेके गए, और उन्होंने इन्होंने मुझे 3 दिन में बिल्कुल दौड़ने लायक बना दिया तो मुझे इससे प्रेरणा मिली, और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भी ये कुछ सिखाइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपी का, उसमें गवर्नमेंट सर्टिफाई है, और वैसे तो ईश्वर की कृपा से मैं पेंशनर हूँ और सब कुछ है, पर मेरे को कोई आय का मना वैसा कुछ है नहीं कि मुझे किसी से हाँ, पर मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, और जो सेवा से मुझे जो भगवान की कृपा से जो दुआएं मिलेंगे वही मेरे लिए बहुत बड़ा है, वही मेरे लिए धन है, तो मैं इस उद्देश्य से इस न्यूरोथेरेपी का कोर्स किया है, और ऑनलाइन कोर्स किया है 6 महीने का, तो 2 महीना का वहाँ है, तो दिल्ली में जाके किया, और अभी मैं इसको जो है जब से यहाँ आया हूँ तो आज की डेट में लगभग 30 लोगों को मैं ये थेरेपी दे चुका हूँ तो और जो भी क्रिटिकल केस आते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से ही सलाह लेता हूँ कि मुझे इसमें ये ऐसे ऐसे पेशेंट उनको मुझे क्या देना चाहिए, तो इस प्रकार से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और हर समय मुझे जो है ना वो मोटिवेट करते हुए सलाह देते कि आप इनको ये चीज़ दें, वो मैं दे देता हूँ, तो इस प्रकार से इस विधा को मैं भी अभी अपने जीवन में अपना करके, और इसमें से इसके माध्यम से भी, वैसे तो मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो भी क्रियाएं हैं और जो भी कार्य प्रणालियाँ उससे जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ की आध्यात्मिक सेवाएं भी करता हूं, पर साथ साथ ये न्यूरोथेरेपी की सेवा भी अभी इसी प्रारंभ कर दिया हूं।
8: तो कितना टाइम हो गया आपको?
10: मेरे को अभी वैसे मैं अभी 30 सितंबर को ये ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई है।
8: अच्छा अच्छा, रिसेंटली आपने पूरा करके?
10: जी हाँ, 1 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचा हूँ, 2 अक्टूबर से प्रैक्टिस चालू कर दिया।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप सीनियर रिटायर्ड होने के बावजूद भी आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो युवाओं को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बातें चल रही हैं, और तीनों एक्सपर्ट से हमने आपकी बातें कराई, तो अब कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कोर्सेस हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: in the company of God, the supreme amongst all souls.
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिंस की बातें चल रही हैं और डॉक्टर तुषार जी और भावे जी और नैनीश जी से बातें हो रही हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन में तीनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही हम लोगों को जो है दवा मुक्त ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो तुषार जी, मैं चाहूँगा अगर युवाएं इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ से सीख सकते हैं, क्या ऑनलाइन होगा
2: जी
1: या फिजिकली होगा जैसे डॉक्टर्स करते हैं, वो सारी बातें आप डिटेल में बताइए।
2: हाँ, जी ये 6 मंथ का ये कोर्सेस है तो आपको ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा। 4 मंथ आपको ऑनलाइन थ्योरी आपको मोबाइल से करना है और 2 महीना प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हम लोग से। तो हम लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे वो दिल्ली में भी जाके 2 महीने का प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें एजुकेशन भी कोई खास नहीं है, 12वीं पास तक भी हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, करा देते हैं, है ना। और इससे बहुत बड़ा फ्यूचर है। आज मैं अपने लिए बताऊँ तो इसमें कमाई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आज इंसान पैसा खर्चा करने को नहीं डर रहा है, वो रिजल्ट मांग रहा है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। तो यहाँ 100% रिजल्ट है तो लोग पैसा के लिए डरते हैं। तो आज के डेट में मैं बहुत बड़ा रकम कमाता हूँ, मैं कमाई बहुत है इसमें, क्योंकि आप इंसान को उनका स्वास्थ्य भी कर रहे हो, वो पैसा भी ज़्यादा उन्हें खर्चा नहीं हो रहा है इस ट्रीटमेंट में। तो आपको पैसा तो देंगे साथ साथ एक बड़ा ब्लेसिंग देगा, दुआ।
3: बिल्कुल, दुआएं मिल जाए।
2: सबसे बड़ी विधि इसमें दुआ कमाने का बहुत बड़ा ये
3: सोर्स
2: रास्ता है, ये सोर्स है जो हम दुआओं के साथ साथ हम पैसा कमा सकते हैं। आज वर्तमान में इंसान इतना करप्ट है भारत, जहाँ इंसान पैसा कमा रहे पर फ्रॉड से, वहाँ ब्लेसिंग नहीं मिलता है और बद्दुआ है। पर ये बाबा की इस कार्य में, बाबा को साथ लेके इस कार्य करने से हमारा तो काम डबल होता है। और इसमें स्पेशली जब हमारा सुप्रीम पावर हमारे साथ है तो ये काम बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों के पास तो सुप्रीम पावर की कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी वो लोग कर रहा है इस फील्ड में रह के भी। और हम बाबा के बच्चे इसमें जुड़ के बाबा से शक्ति लेके जब काम करते हैं तो 10 में 10% ठीक होता है। तो दुआ तो देते ही है, साथ साथ कमाई भी है। तो सभी युवा वर्ग के लिए हम बताएंगे, बिल्कुल हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना जरूरी है भारत को स्वस्थ रखने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूरोथेरेपी में जैसे कि हमारा जो है पॉइंट्स प्रेस करने वाली बात आती
2: जी है। इसमें जब ट्रेनिंग कराते हैं तो इसमें फार्मूला सिखाए जाते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: अच्छा,
2: कुछ बॉडी बैलेंसिंग फार्मूला है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। तो जब वो डिटेल्स, जब कोई कोर्स करना चाहे तो हम नंबर को ऐड कर दीजिएगा, हम उनको ट्रेनिंग के लिए क्या कैसे प्रोसेस सब बता देंगे। तो फार्मूला सिखाए जाते हैं इसमें।
1: तो आप अपना नंबर बता के रखिए सबको,
2: जी,
1: हमारे युवा साथी जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए।
2: जी जी, नंबर को आप ऐड करना तो करिए। नंबर है 6268135807, फिर से बताएं 6268135807, ये मेरा नंबर है, इसमें कांटेक्ट करिए। तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या कैसे प्रोसेस है सब मैं बता देंगे आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तुषार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो करियर में कुछ यूनिक करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दर्द से लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप जो है अपने करियर के साथ साथ जो है लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये आज के समय में बहुत नीड है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, लोग बीमार हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज हमारे बीच में है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। तो ऐसे में अगर हमारा नेचुरोपैथी या नेचुरोपैथी में जैसे न्यूरोपैथी की बात अभी कर रहे हैं हम लोग, इन सारी चीज़ों का अगर उपयोग हो रहा है और उपयोग करके हम लोग अगर लोगों को हेल्दी वेल्दी रख सकते हैं तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं भावेश जी से भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आपने जो है अभी तक कुछ प्रैक्टिस में कितने लोगों को आपने जो है ठीक किया है, थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंसेस हो तो आप शेयर कीजिए।
2: जी भाई जी, मैं सोच ही रहा था कि मेरे पास टर्न कब आएगा भाई जी। भाई जी, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं जो मतलब बहुत मेरिकुलस जैसे जो होता है ना, वो भी हुआ है इसमें। बट सबसे बड़ी बात जो रहती है वो होता है विश्वास का। जब आपको चलाने वाला कौन है, आपको जब उस परम शक्ति के साथ जब आप अपने आप को कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक ईजी लगने लगता है। तो जब हम
4: थेरेपी जब भी किसी पेशेंट को देते हैं, तो जब उस सुप्रीम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके देते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं, आते हैं। लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं करके, हम हमारे ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं। बट मैं कहूँगा ये ट्रीटमेंट से रिजल्ट आए ना आए, पर लोग ठीक हो रहे हैं तो कहीं वो उस परम शक्ति के पावर से ही है, वो है। और भाई जी ये है कि कल बाबा मिलन का दिन था, मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव थेरेपीज, न्यूरोथेरेपी जैसे ये थेरेपी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है कि विदाउट मेडिसिन भी किसी चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। नो डाउट एलोपैथी, नो डाउट वरदान है एमरजेंसी में, पर क्या अगर हम अपने शरीर के लिए, मतलब जो चीज़ हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं, जो परमात्मा ने दिया है, हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो क्या हम उसे नहीं कर सकते क्या?
1: बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर दवा खाते हैं, डायबिटीज वाले हैं, हार्ट वाले हैं, जो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, उनको मेडिसिन के बिना उनको तो कोई चारा नहीं है, तो क्या न्यूरोथेरेपी में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस?
4: जी भाई जी, जैसे तुषार भाई जी ने बताया, उसी प्रकार जो 125-130 फॉर्मले बनाए गए हैं न्यूरोथेरेपी में, ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग कार्य करते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
4: जैसे कि जैसे आपने बोला ब्लड प्रेशर, तो बीपी के लिए भी, चूँकि न्यूरोथेरेपी जो होता है ये ब्लड प्रेशर पे ही कार्य करता है। जब हम किसी पेशेंट को हमारे न्यूरोथेरेपी में 6 सेकेंड के प्रेशर का बहुत महत्व है, और चूँकि हमारे हार्ट की भी एक जो वेव्स रहती है वो 6 सेकेंड में वो रिदम में चलती है कहते हैं, तो जब 6 सेकेंड का प्रॉपर प्रेशर दिया जाता है किसी पेशेंट को, तो ये शरीर में अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है। और जो फॉर्मूले सेट किए गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को, तो हम उस प्रकार से उस फॉर्मूले को स्टिमुलेट करते हैं, देते हैं उस पेशेंट को, तो उनके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई हम भेजते हैं थ्रू न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में हम किसी पेशेंट को नीचे लिटा देते हैं, स्टैंड्स रहते हैं, हम स्टैंड्स भी यूज़ करते हैं, और पेशेंट को डिफरेंट कोड्स में रख के उतने निश्चित समय का प्रेशर देते हैं जिससे उनके उस ऑर्गन में प्रॉपर सप्लाई पहुँचे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और ये ट्रस्टेड और अप्लाई किए गए फॉर्मूले हैं जो हमारे देश के हज़ारों न्यूरोथेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं। भाई जी
1: क्या बात। चलिए भावी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा हमें, खुशी हुई आपके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन न्यूरोथेरेपी के बारे में खास आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर लोग रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, तो शायद न्यूरोथेरेपी का अगर इस्तेमाल करेंगे 15-20 डेज या जो साइकिल है उनका फार्मूला का, उस तरह से अगर प्रयोगशील होकर अच्छी तरह से अगर विधिवत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ, तो मेरे ख्याल से मेडिसिन उनका ख़त्म ही हो जाता है।
2: बिल्कुल, ब्लड प्रेशर टोटली हमेशा के लिए मेडिसिन ऑफ हो जाता है। शुगर का शुगर के लिए 3 महीने अगर कोई ट्रीटमेंट ले तो शुगर बिल्कुल ठीक हो सकता है।
1: अच्छा,
2: जो कि एलोपैथी में इस सारी चीज़ का कोई मेडिसिन प्रॉपर परमानेंट नहीं है, लाइफ लॉन्ग खाने के लिए डॉक्टर पकड़ा देते हैं, जो जिंदगी भर के साथ ही है, आपके साथ कोई वार ना दे पर दवाई साथ देते रहेंगे, तो उस जिंदगी भर की दवाई को साथ दे देते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को 100% नॉर्मल कर सकते हैं। जिसको अनिद्रा, आज के वर्तमान समय में नींद ना आना बीमारी एक है,
1: ये भी बहुत बड़ा बीमारी जो है, बहुत सारे एंड्रोजिनस के जो मेडिसिन है नींद के बीमारियों के लिए बहुत लोग खाते हैं।
2: इसके लिए भी हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर नींद आने लगते हैं। और जो वर्तमान में एक समस्या मैंने देखा है घर घर में, नी पेन और बैक पेन L4-5 के प्रॉब्लम, अधिकतर डॉक्टर्स का ऑपरेशन करते 4.5 लाख टेबल पर जमा करते, 4.5 दिन का भी गारंटी नहीं करते हैं, तो वो भी हम लोग 100% क्योर करते हैं। L4-5 का जो प्रॉब्लम है, जो नस दब जाती है, साइटी का पेन है, नी पेन है, तो मैं सारे दोस्तों को, मैं सभी भाई बहन को ये बताऊंगा, बिल्कुल ऑपरेशन की तरफ ना जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बताया था विदेश से लौट के, जो आपका इसमें ऑपरेशन मत में जाना, ऑपरेशन करने से कभी सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ, ना कभी हो सकते है। इसमें सिर्फ आपका लॉस है, डॉक्टर का फायदा है, प्रोफेसर आपसे पैसा लेगा और कोई फायदा नहीं देगा। तो इसलिए सभी एक बार ऑपरेशन करने से पहले जरूर न्यूरोथेरेपी अप्लाई करें, और मैं अपने दावे से कहता हूँ 100% ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल। चलिए डॉक्टर तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने भावनाओं को, विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक एक मैसेज हमारे सभी आज के मेहमानों से सुनेंगे और किस तरह से हम लोग जो है इस थेरेपी को कम्प्लीटली अच्छी तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं और इसका उपयोग खुद करके दूसरों को एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर हम लोग करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन और न्यूरोथेरेपी के बारे में खास बातें हो रही हैं। और न्यूरोथेरेपी ये पूरे जो है नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट करने का काम करता है, और इसमें 30 सेकेंड और 6 सेकेंड जो फार्मूलाज बने हुए हैं, वैसे एक प्रेशर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है। तो इससे जो है पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से रिलीफ भी मिलता है और पेशेंट जो है बहुत ही अच्छा एक्टिव फील करने लगता है उनके ट्रीटमेंट के बाद। और जो भी हमारी जो रेगुलर बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है कितने एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर यूज़ करते हैं, है ना। और कभी वो ठीक नहीं होता तो 50 mg का खा रहे हैं तो फिर 100 mg का खा लो, और 100 से नहीं ठीक हो रहा है तो डबल डोज कर देंगे तो 200 का खा लो। अरे भाई, इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं, खाली गोलियां ही खाना है, और फिर उसके ज़्यादा केमिकल्स अंदर चले जाते हैं तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट्स अलग हो के नए बीमारी पैदा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग जो है अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हमारे पास इसका है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को साइड में रख के अगर नेचुरोपैथी या न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से 2-3 सेटिंग अगर हम लोग करते हैं, तो हमें खुद को रिजल्ट्स मिल जाता है और उससे हम अपने हेल्थ को बचा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए, मैं नरेश जी से चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश जो है, अब तक उन्होंने जो 30 सितंबर को उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद रेगुलर लोगों को जो भी उनके पास मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा 30 पेशेंट्स को उन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है। तो उसमें से एक आध पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और आपको बहुत दुआएँ देने लगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा हमारे युवा साथियों को।
2: जी ज़रूर। हमारे एक परिचित के हैं, उनका नाम है अजय जी नाम है उनका।
1: जी जी,
2: साहिनी जी हैं। तो उनको लगभग 10 साल से उनको घुटने में दर्द था और उनके अंगूठे में दर्द रहता था। तो मेरे पास आए तो कि सर मुझे कुछ तकलीफ है, मुझे ये जो आप ट्रीटमेंट सीख के आए तो वो कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो जो जो फार्मूले हैं इसके, उसकी मैंने स्टडी करके और डॉक्टर साहब से ही मैंने सलाह लिया, और उसके बाद जो इन्होंने बताया तो वो फार्मूले मैंने उनको दिया, और उसमें करीबन मेरे को 25 या 30 मिनट लगे होंगे। उसके बाद उनको मैंने पूरा ट्रीटमेंट करके उनको बिठा दिया और उनको थोड़ा सा कहा कि आप वॉकिंग करें और देखें कि कुछ इसमें रिलीफ मिला कि नहीं मिला है। तो उस टाइम तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, हाँ रिलीफ मिला है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद दूसरे दिन मेरे को मिले, मेरे तो वो पैरों में गिर गए।
1: अरे बाप रे।
2: और कहा कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है मुझे 10 साल पहले से थी।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: और मैंने कई डॉक्टरों को इससे इलाज भी करवाया, जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने किया।
1: हाँ, हाँ।
2: पर आज तक मेरा इसका समाधान नहीं हुआ।
1: हुँ,
2: पर आपने पता नहीं क्या किया, वो 15-20 मिनट के अंदर मेरी 10 साल की वो जो तकलीफ है वो दूर कर दी। तो ऐसे एक मेडिकल ये चीज़ है कि आप कुछ भी कर दें, मतलब जो फार्मूले के हिसाब से जो भी करना है, वो तो पेशेंट को मालूम नहीं चलते हम क्या कर रहे हैं, परंतु उसको हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और दिल से देते हैं। और वो उसको पूरा उसका लाभ उसको मिलता है और वो बहुत अपने को निरोगी महसूस करता है।
1: चलिए नरेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए, मैं डॉक्टर तुषार जी से भी जोड़ना चाहूँगा, आप भी अपना एक यूनिक, ऐसे तो आपने काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस की है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन एक हाथ पेशेंट का जो क्रिटिकल हुआ और फिर वो अच्छे हुए, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
3: जी जी बिल्कुल जी। तो हमारे पास भी आए थे 75 एज के एक दादाजी, जिनको गुरु पूर्णिमा के दिन अचानक उनको पैरालिसिस हो गया, और दोनों पैर से ही, पैरालिसिस तो नहीं है बट वो कमर से अचानक वो विकलंग हो गया है, दोनों पैर उनका बिल्कुल ही सुन पड़ गए थे, चलना मुश्किल था।
1: अच्छा।
3: तो वो कार कार में मेरे पास ले, मतलब पहले तो जबलपुर एडमिट किया, नहीं हुआ, वहाँ से मना कर दिया। फिर उनको नागपुर लेके गया गए, तो नागपुर में से भी डॉक्टर ने कह दिया नहीं आप कभी भी चल नहीं सकते दोबारा, कभी भी
1: अच्छा
3: अपने पैर पे दोबारा खड़े नहीं हो सकते हो क्योंकि नस भी दब चुकी है। काफ़ी कुछ टेस्ट के बाद बताया गया जो पेशेंट को आप घर ले जा सकते हो, घर में इनको रेस्ट कराओ, ये कभी नहीं चल पाएंगे। तो वो व्यक्ति मेरा नाम सुन के मेरे पास आए थे, उस समय कटनी में था, कटनी में प्रैक्टिस करता था। तो वो लोग मेरे पास लेके आए, तो मैंने देखा कंडीशन देखा, तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने कहा कुछ टाइम लगेगा ऐसे पेशेंट को, मेरे को कम से कम 15 दिन तो चाहिए मेरे को, 15-20 दिन सुबह शाम। और मेरे पास कम से कम 80 किलोमीटर दूर से आते थे अपनी कार से, तो रोज 2 टाइम तो आना मुश्किल था, बट सिंगल टाइम ही वो लोग आए मेरे पास, 1 महीना सिंगल टाइम, मतलब 30 सेटिंग लिया रोज। वो व्यक्ति आज के डेट में भाई जी क्या बता दे मैं, वो मन वो भक्ति मार्ग के है, ज्ञान नहीं समझते हैं। तो वो व्यक्ति आज खुद दौड़ने जाता, रोज मेरे को एक पेशेंट रोज भेजता है, और वो अभी भी मंदिर जाने से पहले मेरा दर्शन करने आता है पहले।
1: अरे वाह,
3: ये भी ऐसा कंडीशन है। और रोज एक पेशेंट मेरे पास जरूर इंसान मेरे को भेजता है। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस हमारे साथ में है जो टोटल होपलेस है। हम लोग ये होपलेस केस ही मैं ज़्यादा हैंडल करता हूँ, तो मैंने सभी साथियों को बताएंगे जरूर एक बार अप्लाई करें अपने जीवन में। तो एक हंसी मजाक की बात है, कहते कहते एक हंसी मजाक की बात मैं जरूर करके जाऊंगा। एक बार किसी व्यक्ति को शरीर में कहीं भी टच करते थे, वो कहीं भी दबाता था, दर्द होता उनको। कान में दबाए दर्द है, नाक में दबाए दर्द है, पेट में दबाए दर्द है, घुटने में दबाए दर्द है, तो सारे डॉक्टर फेल। जब समझ में नहीं आता जो कहा इनको इतना कैसे पेन है, तो एक कोई होशियार व्यक्ति आए तो उन्हें कहा कहाँ कहाँ पेन है, तो उन्हें देखा अपनी उंगली से जहाँ दबा रहा है बोलता वहाँ दर्द है, जहाँ दबा रहा है वहाँ दर्द है। फिर वो व्यक्ति बोला दिखाओ उंगली दिखाओ, तो दर्द कहीं शरीर में नहीं था, उंगली उनका उंगली में दर्द था, दर्द था कहाँ उंगली में, और उंगली से जहाँ दबा रहा था वहाँ दर्द हो रहा था। तो यह जड़ है, एक्चुअली कहने का अर्थ है तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट जड़, तो उन्हें उंगली का दर्द खत्म कर दिया, पूरे बॉडी का ठीक हो गया।
1: बिल्कुल,
3: तो न्यूरोथेरेपी एक जड़ ट्रीटमेंट है जो हम उसको जड़ से
1: खत्म कर सकते हैं। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और चलिए हमारे युवा साथियों को अब तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जो है सभी बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन का ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक थेरेपी है और बहुत पुरानी थेरेपी है, नाड़ी संशोधन जो है, नाड़ी वैद्य करके हम लोग सुना करते थे दादा दादियों से, और उनसे ट्रीटमेंट पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में सारी चीज़ें जो है चेंज होते जाती है, अपग्रेड होते जाते हैं हम लोग, तो समय के साथ साथ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें फिर से वापस आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है ज़रूरत की जननी है, ज़रूरत के अनुसार जो है आविष्कार उसका जननी बन जाता है। जब हमें ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है तो वहाँ आविष्कार फिर से हो जाते हैं। तो फिर चाहे वो पुरानी पद्धति को वापस हम लोग ईजाद करके वापस लोगों को ट्रीट करें, या जो चीज़ें एकदम से नई हमारे बीच में आ जाती हैं तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग ठीक हो जाए, हमारा जीवन सुलभ और सुंदर बन जाए, यही हम चाहते हैं। तो आशा करूँगा अल्टरनेटिव मेडिसिन में न्यूरोथेरेपी के बारे में हमने आज बात की, और ये करियर का भी अच्छा सोर्स है अगर आप प्रॉपरली एक डिस्पेंसरी की तरह जो है न्यूरो सेंटर, न्यूरोथेरेपी सेंटर बना लेते हैं, तो प्रॉपरली अगर लोगों को एक सुविधाजनक ट्रीटमेंट अगर बहुत ही सुंदर तरीके से आप देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कला है। तो पेशेंट को देखना, पेशेंट से बात करना और उसको ट्रीटमेंट देना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो ये आर्ट को आप समझें और फिर इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो आप इनकम के साथ साथ दुआएं जमा करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए, आप जो आपका मन या दिल कहता है उसके बारे में सोचिए, आपको क्या करना है अपने करियर में ये अपने आप से पूछिए, किसी और को कॉपी मत कीजिए, और जब आपको लगेगा कि मुझे इसी में करना है तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और ये 6 महीने का कोर्स है, 4 महीना ऑनलाइन कर सकते हैं और 2 महीना प्रैक्टिस आप दिल्ली में जाके कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपना सेंटर खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आशा करूंगा आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दिया है, अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कॉल करके आप पूछिएगा। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर एक बार नरेश जी और तुषार जी और भावेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दुआएँ, और आप सभी को अपने नए करियर में अच्छा करने के लिए, आपका करियर ब्राइट हो, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी तरह करियर पर एक नए विषय को लेकर बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा आनंद वाटा।
2: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भाग्य की कलम आपके हाथ पे। इस पर मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी। मनुष्य का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। कभी वह अपने भाग्य को कोसता है तो कभी अपनी मेहनत पर गर्व करता है। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे ही हाथ में होती है। हम अपने भविष्य के लेखक स्वयं होते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं भाग्य और परिश्रम का आपस में क्या संबंध है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यह विचारधारा उन लोगों की होती है जो परिश्रम से बचना चाहते हैं। सच तो यह है कि भविष्य और भाग्य का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही अपने भाग्य को सवारने में सफल होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को भी देख लीजिए। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। यदि वे यह सोचकर बैठ जाते कि उनका भाग्य खराब है तो शायद वे कभी सफल नहीं होते। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। इसी तरह अब्दुल कलाम जी ने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपने परिश्रम से न केवल भारत के मिसाइल कार्यक्रम को दिशा दी बल्कि देश के राष्ट्रपति भी बने। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि भाग्य की कलम हमारे हाथ में होती है। दोस्तों, चलिए जानें कैसे अपने आप को नकारात्मक सोच से बचाएं। कई बार हम असफलताओं से घबरा जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि असफलताएं हमारे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर होते हैं। नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हम यह मान लें कि हमारी तकदीर खराब है तो यह मेहनत करने की इच्छा शक्ति ही खो देंगे। इसके विपरीत यदि हम हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करें और आगे बढ़ने की ठान लें तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। सही निर्णय का जीवन में क्या महत्व है? जीवन में सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परिश्रम करना। कई बार हम गलत निर्णयों के कारण असफल हो जाते हैं और इसे भाग्य का दोष समझ लेते हैं। लेकिन यदि हम सोच समझकर सही दिशा में प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेता और परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या यह उसके भाग्य का दोष है? नहीं, यह उसकी लापरवाही और गलत निर्णय का परिणाम है। यदि वही छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करता और सही रणनीति अपनाता तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करता। इसलिए भाग्य को दोष देने की बजाय हमें अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है, हमारे जीवन की कहानी हम स्वयं लिखते हैं। यदि हम अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में सौंप देंगे या इसे केवल परिस्थितियों पर निर्भर मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिश्रम, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता ही

0: के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न, उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा
2: विथ ब्रह्मकुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारी। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने बहुत अच्छा होमवर्क दिया कि हर एक घंटे में मैं तो उसे मेडिटेशन कहूंगा, लेकिन आपने कहा था कि एक थॉट डालो कि जो जो मैं कर रहा हूँ, जो जो मैं सोच रहा हूँ, जो जो मेरी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी एक रिकॉर्डिंग परमानेंट इटर्नल बन रही है।
3: राइट।
2: और ये ही मेरा अगले जन्म का फ्यूचर का पर्सनैलिटी बनने वाली है।
3: दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट।
2: क्यों ना मैं ऐसा पैदा हूँ कि सब मुझे प्यार करे, सब मेरी इज्जत करे और मैं भी खुश रहूं।
3: तो आज इन्वेस्टमेंट अगर की तो प्रेजेंट भी ब्यूटीफुल, फ्यूचर भी ब्यूटीफुल।
2: ये जो बनाने के लिए मेरे अतराफ ब्यूटीफुल नहीं है ना, मेरे पास कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे एक घंटे वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं।
3: लोग हमारे एक घंटे वाले को डिस्टर्ब करते हैं।
2: जो मैं सोचता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई ऐसी बात कोई बोल देता है या कुछ ऐसी हरकत स्टाफ कर देता है।
3: ये हम वापस ब्लेम मोड में कैसे चले गए?
2: इसलिए आए हैं कि मैं एक घंटे वाली जो प्रैक्टिस की है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ।
3: बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, मुझे क्या रिकॉर्ड करना है?
2: मैं रिकॉर्डिंग पर अटेंशन दे रहा हूँ, लेकिन लोग भी तो टेंशन दे रहे हैं।
3: अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, ये पर्पज ऑफ लाइफ बन गया। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखने कि मेरी अच्छी रिकॉर्डिंग होने के लिए सब कुछ मेरे आसपास बहुत अच्छा होना चाहिए।
2: माहौल होना चाहिए थोड़ा भी।
3: माहौल तो जैसा है वैसा रहेगा,
2: लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे,
3: लोग जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे हैं।
2: मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने लग गया,
3: फिर वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस आत्मा पे क्या रिकॉर्डिंग हो गई फिर, कि जहां कुछ मुझे सूट नहीं करे विड्रॉ, जहां मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे विड्रॉ, फिर वो बच्चा जो पैदा होगा वो भी सबसे विड्रॉ होगा। तो विड्रॉ होने की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।
2: आई वोंट डोंट वांट टू बी बॉर्न लाइक दैट।
3: आई डोंट वांट टू बी बॉर्न लाइक दैट।
2: नहीं,
3: कांट वी विजुअलाइज द चाइल्ड?
2: नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है अगले जन्म में। विड्रॉ करके कोने में बैठा हुआ है, डॉक्टरों के पास पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, ये बोलता ही नहीं है, इतना खामोश है, इतना इंट्रोवर्ट है।
3: इसकी स्कूल में किसी से बनती नहीं, इसके दोस्त नहीं है,
2: नहीं सब लोग खेलते हैं तो भी कोने में बैठता है,
3: घर आके अकेला बैठता है कमरे में, नीचे भी खेलने नहीं जाता घर से बाहर। ऐसा बच्चा बनना है?
2: नहीं बाबा।
3: अभी देखो कितना इजी हो गया है, इजी हो गया है। ये मेरा प्रेजेंट तो ये मेरा फ्यूचर, तो कैसा बच्चा बनना है? जो सबसे हार्मनी में रहता है, खुल मिल जाता है, हंसता खेलता है, बातों को भूल जाता है, लाइट रहता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है उसके अंदर, तो जीवन भी सिंपल है, वैसा बच्चा बनना है। अभी करना पड़ेगा।
2: ज्यादा बात कर तो ऐसी बात करते हैं कि फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ।
3: वो ऐसी बात करते हैं फिर मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। आज वो वैसी ही बात करेंगे, लेकिन आज
2: फिर मैं ही नहीं करूं तो इरिटेट ही नहीं हूं ना,
3: फिर विड्रॉ होने का संस्कार हो रहा है ना,
2: फिर मुश्किल हो रहा है ना। आई कांट चेंज द अदर पर्सन।
3: यू आर नॉट टू चेंज द अदर पर्सन।
2: फिर ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना ऐसे लोगों से। कांट यू बी सिलेक्टिव?
3: कितने लोगों से सिलेक्टिव होंगे?
2: ये भी सही है, हर एक में से कुछ ना कुछ तो अच्छा कुछ बुरा दिखता है, ज्यादा बुरा ही दिखता है हर एक का।
3: तो वो भी तो हमारा संस्कार है ना, जो हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है। ये भी एक रिकॉर्डिंग है कि हर एक का ज्यादा बुरा दिखता है हमें।
2: ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी।
3: एक्सेप्टेंस ऐसे मजबूरी से नहीं, ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। इट्स ट्रू ना कि हर एक का अलग अलग संस्कार है। जब हमें संस्कार समझ में आते हैं तो लोगों के साथ चलना बहुत इजियर हो जाता है, क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि हर आत्मा भी वो आइसबर्ग है, जिसका 90% तो इतना बंडल ऑफ संस्कार है जो वो लेकर आया है। किसी भी आत्मा को देखें, एक जो हमने देखा कि वो पिछले जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आते हैं, हर आत्मा लेकर आई है। वो इस जीवन में आने के बाद अवेयर भी नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग क्या कर गई है, लेकर आ गई है। ये आत्मा हमारा बेटा हो सकती है, बहू हो सकता है, दामाद हो सकता है। हम कहते हैं बेटा ऐसे कैसे, ये बेटा ऐसे कैसे, मतलब बेटा तो वो इस कॉस्ट्यूम में बना है, राइट? लेकिन सीडी तो पहले से लेकर आई है वो गाना. अब हम जैसे ही उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस रिश्ते के लेबल से नहीं, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस से देखते हैं, इट्स वेरी इजी टू से सन मींस ऐसा होना चाहिए, डॉटर मींस ऐसी होनी चाहिए. म्यूजिक प्लेयर को नहीं देखना, सीडी को देखना है जो अंदर आई है. सीडी गाने लेकर आई है, कौन से जीवन में, कौन सी परिस्थितियों में उस सीडी पे वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है. आज वो सीडी हमारे घर आई है. क्या होता है किसी भी घर में, पेरेंट्स है, दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं पर कितने सारे गाने रिकॉर्डेड होंगे?
2: अनगिनत.
3: क्या वो हस्बैंड एंड वाइफ के गाने सेम होंगे?
2: नहीं.
3: नहीं, तो पहले तो उनके ही गाने अलग, राइट? अब ये रिकॉर्डिंग्स हैं सारी. अब ये दो सीडी हैं, इनके घर एक तीसरी सीडी आई है. तो तीसरी सीडी भी तो अपने गाने रिकॉर्डेड लेकर आएगी ना. ये तीसरी आत्मा आई है उस घर में.
2: तीसरी आके बोले मेरी ही गाने सुनो, तो फिर ये दोनों को भी डिस्टर्ब होता है ना.
3: यही तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है ना. ईगो है तो सब कहने वाले हैं मेरे ही गाने सुनो, क्योंकि ईगो मींस हर सीडी कहती है कि मेरा ही गाना राइट है. यही तो ईगो.
2: इसीलिए तो विड्रॉल इजी हो जाता है.
3: विड्रॉल किया तो विड्रॉ होने का संस्कार क्रिएट हो जाएगा. आपने कहा कोई सामने ठीक से बात नहीं कर रहा है. ठीक से भी क्या मतलब, जो मुझे ठीक लगता है वैसे नहीं कर रहा है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है. ठीक है,
2: ये अच्छी लाइन है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा.
3: मुझे ठीक नहीं लग रहा. उस दिन आपने लंच पर कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई खाना परोसे मेरी प्लेट में आकर, कोई बार बार मुझे पूछे कि आप लेंगे, आप और लेंगे.
2: नहीं लेंगे नहीं, डाल देते हैं खाना प्लेट में, चलते चलते इधर बात कर रहा हूँ तो रोटी डाल के चले जाते हैं.
3: तो तब आपने
2: खो, खो, खो, और खो,
3: तो तब आपने और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही थी
2: जी,
3: विच वी नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट जस्ट नाउ
2: जी,
3: कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज
2: इन व्हाट,
3: इन दैट स्टेटमेंट. क्योंकि उस दिन लंच पर किसी ने आकर बहुत प्यार से कुछ परोसा था, जो कर रहा था उसका जो संस्कार था उस समय वो प्यार केयर का था. उसके संस्कार के अनुसार किसी को इस तरह से भोजन कराना, उनको और चार बार पूछना आप लेंगे, आप लेंगे, अच्छा थोड़ा सा तो ले लो, इतना नहीं, अच्छा एक, दिस इज साइन ऑफ केयर एंड लव फॉर सम सोल्स, फॉर अ लॉट ऑफ सोल्स. ये उनके लिए नेचुरल है, ये उनके लिए सही है, बिकॉज उनको वो सही लगता है. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर केयर फॉर यू. आप उसको कितना भी गलत कहें, उस आत्मा के लिए वो बिल्कुल सही है
2: जी.
3: सही है,
2: आपके कहने से सही है इसको.
3: नहीं, आप ही देखिए ना उस नजर से.
2: ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आगे बात करता हूं.
3: इतना करते हैं ना कि वो आत्मा सही है, राइट? आपने उस समय कहा I just will never be able to take it कि कोई मेरे खाने के बारे में बात करे.
2: करेक्ट.
3: ये स्ट्रॉन्ग लाइन है.
2: स्ट्रॉन्ग वंस एंड फॉर ऑल.
3: एक पहली बात तो ये मैसेज माइंड को कभी नहीं देना कि ये चीज तो मैं कभी टॉलरेट कर ही नहीं सकता. दिस इज एज गुड एज जैसे आपने लास्ट टाइम कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा अगर आपको ये एलर्जी ठीक करनी है तो नॉनवेज छोड़ दो, तो आपने एकदम से कहा ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता. ये स्टेटमेंट सच थी?
2: नहीं, छोड़ सका ना.
3: बाद में छोड़ सका, तो वो लाइन सच नहीं थी. इसी तरह कोई भी लाइन सच नहीं होती जब हम कहते ये तो मैं कर ही नहीं सकता.
2: ओके,
3: आई कैन से अभी ये मेरा संस्कार है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब हम कहते ये तो मैं कभी नहीं टॉलरेट कर सकता. नो नो, अभी मेरा ये संस्कार है कि कोई अगर मेरी प्लेट में ऐसे आए या मेरे खाने के बारे में बात करे कि आपने खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके, लेकिन मैं अपने अच्छे लगने को अब थोड़ा सा क्या करूंगा, वर्क करूंगा. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ग्रूव बन रहा है ना. अगर आज हमने ये रिकॉर्डिंग चेंज नहीं की कि जब कोई मेरे खाने पे बात करता है तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, विजुअलाइज द चाइल्ड, आत्मा ये रिकॉर्डिंग लेकर जाएगी।
2: मैं अब, आया ही हूँ।
3: हाँ, लेकर
2: रिकॉर्डिंग लेके
3: हो सकता है लेकर ही आए हैं, तो अब तो चेंज कर लेना चाहिए। अब वो बच्चा जो पैदा होगा ना, अब तो वो बच्चा है, अब उस बच्चे को उसके पेरेंट्स सिखाने वाले हैं, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे खाना है, थोड़ा सा और खाना है, ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये बच्चे का है ना।
2: मेरे जो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप उनकी प्लेट में डाल दीजिए जबरदस्ती, नो ऐसे बात करते हैं, आप मुंह में डाल दीजिए थूक देते हैं।
3: तो यू कैन सी ना कहाँ से आ रहा है वो संस्कार,
2: थूक देते हैं, डराते हैं कि वॉमिट कर दूंगा और
3: ये संस्कार कहाँ से आया। ये संस्कार लेकर आप भी जाएंगे अगर अभी चेंज नहीं कर दिया तो।
2: तीसरा
3: सी चेंज करेंगे, इट डजंट मीन कि हाँ कोई भी कुछ भी डाल दे मैंने खाना ही है, नहीं, डजंट मीन दैट, इट जस्ट मीन्स मेरे को रिकॉर्डिंग चेंज करनी है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है।
2: कई लोग झूठ बोलते, आधा खा लो, एक खा लो, मन में तो है नहीं जल्दी उठे, वो भी है।
3: अच्छा,
2: तो
3: वो उनकी रिकॉर्डिंग है ना,
2: उनकी रिकॉर्डिंग।
3: हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, टुडे वाज द होमवर्क।
2: हम इस टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या जानता हूँ।
3: हम इस समय ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अब मुझे कैसे करना है।
2: अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए आप,
3: मैं पास्ट का हर बार नहीं सो, फिर आप कहते हैं पास्ट में हो गई जो रिकॉर्डिंग उसको क्या करें, वो तो हो गई, अब रिकॉर्डिंग क्या करनी है।
2: अब जो आप प्लेट में रख देता हूँ जाके, प्लेट सबको बता के खाना डाल दीजिए,
3: नहीं सी एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, ऐसे नहीं कोई मेरे खाने पे बात करे तो मैं टॉलरेट नहीं, बहुत प्यार से मैं ये खाता हूँ, ये नहीं, सामने कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, दस बार, कितनी भी बार, क्योंकि प्यार से बात करना हमारी रिकॉर्डिंग है। अपना संस्कार क्यों छोड़ रहे हैं, लूप में चला जाएगा ना, लूप में चला जाएगा, थोड़े दिन वर्क करना है उस पे, फिर कोई आकर कहेगा थोड़ा सा ये ले लो, कहेंगे थैंक यू सो मच रियली आई डोंट वॉन्ट, फिर कोई और आकर कहेगा प्लीज ये ले लो, थैंक यू सो मच पर मेरे को सच्ची में नहीं चाहिए, लूप में चला जाएगा।
2: अगर ये सत्य जो आके बोलता है ना दिल से, उसके लिए तो मैं चरण भी छू, मुझे मालूम है ये झूठा नाटक है।
3: हम वो अपनी रिकॉर्डिंग, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे को देखकर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं चेंज करनी है। दुनिया में तो आसपास सारे संस्कार दिखेंगे, झूठ भी दिखेगा, छल भी दिखेगा, कपट भी दिखेगा, करप्शन भी दिखेगी, मैनिपुलेशन भी दिखेगा, वो सब रिकॉर्डिंग है, तो उस अनुसार रिकॉर्डिंग करनी है। मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी चॉइस, मैं आत्मा मालिक, मुझे इस सब छल कपट झूठ के बीच रहते हुए अपने संस्कारों की इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट, अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चीट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं,
2: किया भी है,
3: है ना, फाइनेंशियल, आई एम सेइंग फाइनेंशियल चीट भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान से पता करके, कहाँ मेरी सिक्योरिटी है, कहाँ मेरा फ्यूचर है, वो करेंगे या कहेंगे क्या करें, हैं इतने सारे लोग चीट करने के, तो मैंने धोखा खा लिया, गए मेरे पैसे, ऐसे करेंगे।
2: नहीं, मैं तो बिल्कुल क्या कर, वॉच रखूंगा, एक ध्यान रखूंगा।
3: सेम, वहां भी फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत लोग हैं, हम थोड़ी अपना पैसा सारा ऐसे गवा देंगे।
2: तो ये मतलब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे खाना डाल,
3: वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वो उनका संस्कार,
2: मेरे टेस्ट हो रहे हैं।
3: नहीं, टेस्ट नहीं हो रहे, हमें नई रिकॉर्डिंग करने का चांस मिल रहा है, आज ही करके देख सकते हैं, आज ही
2: कर... सबसे अच्छा है व्रत है बोल देता हूँ,
3: ऐसे विड्रॉ करना नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू नो, ऐसे बोल बोल के आत्मा अपने आप को ये कहने लगती है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं एक बार करके तो देखें, आज एक नया ग्रुप क्रिएट हो रहा है।
2: एम आई नॉट एनकरेजिंग द अदर पर्सन टू गो ऑन एंड ऑन डूइंग जो जो जो मेरे साथ कर रहा है, वो एक बार तो बोल रही है ना, देखो भाई साहब मुझे आप अपने आप खाने दीजिए, मुझे जो पसंद है मैं खाता हूँ,
3: जो कहना है वो कहना है, सोच, वाइब्रेशन, बोल, व्यवहार का तरीका, एंगर, इरिटेशन, एजिटेशन या कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग।
2: एक थॉट आई आपसे बात करते करते, जैसे मैं चाय की बात कर रहा था कि मैं स्टाफ से चाय अलग, दूध अलग, शक्कर अलग, पत्ते अलग, सारा कुछ अलग मंगा सकता हूँ, लेकिन फिर दुनिया में हर आदमी से जब मिलूंगा, क्या हर इंसान से वर्ल्ड में और हर सिचुएशन को बोलूंगा कि अलग अलग अलग करो, मुझे अपने हिसाब से करना है?
3: नहीं होने वाला है।
2: मैं खुद ही आंसर दे रहा हूँ,
3: नहीं होने वाला है,
2: मुझे खुद ही जवाब
3: मिलेगा। फिर हम कहेंगे नहीं मिलेगा ना अलग, तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल।
2: मेरा आंसर मुझे
3: टॉलरेंस का रिकॉर्डिंग संस्कार क्रिएट करना है, करना ही होगा। आज हम करके देखें। दिस इज द सोल टेकिंग अप द फर्स्ट स्टेप। आज एक नया संस्कार। ये लाइन क्लोज्ड, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, डिलीट। टुडे आई विल हैंडल द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। संस्कार चेंज करने का सबसे इजी पैटर्न वो होता है, वो लोग और वो बातें जो बहुत कई बार आती हैं, यू नो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, रोज होता है, वो रोज ही हो रही है वो चीज, उसमें तो चेंज करना और इजी है, क्योंकि वो रोज बात आती है, हम रोज वही संस्कार यूज करते हैं, वो रोज वैसा करते हैं, हम रोज डांट देते हैं, ग्रूव पक्का होता जा रहा है।
2: मैं तो उल्टा सोच रहा था, कि फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल बिजनेस में तो एक आध बार लाइफ में कोई करता है, ये तो रोज होता है, इसको कैसे संभालो?
3: इसीलिए रोज जो होगा वो ग्रूव पक्का हो जाएगा ना, रोज जो होगा वो फास्ट होता जाएगा, वो ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ अब ये बात बहुत छोटी है, ये कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं है, छोटी बात,
2: ये बड़ा, ये एक ही संस्कार लेके आगे दूसरे बनाएगा ना, इसके बच्चे पैदा होंगे।
3: अब ये जो फास्ट में चला गया है, अब क्या होता है, कोई आपके पास प्लेट लेकर आता ही है सिर्फ, सी दैट डे वी सो न्यूरॉन्स विल फायर टुगेदर, आपने उस दिन कहा, सिगरेट की पैकेट की तरफ हाथ अपने आप जाता है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव वॉच्ड इट, अब क्या हो रहा है, कोई प्लेट सिर्फ लेकर आता है, फोर्स नहीं कर रहा है खाने के लिए, डाला नहीं उसने जबरदस्ती, अभी वो सिर्फ आपके नजदीक आता है, एंड आप उसको कहते हैं नहीं नहीं नहीं मेरे पास नहीं डालना, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, वो ग्रूव इतना ऑटोमेटिक में चला गया है कि वो फास्ट रिएक्ट करता है। आज एक नया ऑप्शन, एक दिन में चेंज हो जाएगा, ये तो, ये इतना छोटा सिंपल
2: ये संस्कार इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो मुझे जूठा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई फाइंड इट क्राइम।
3: वन मिनट,
2: दूसरे लोग क्या करते हैं, दलवा लेते हैं और जितना पसंद है खा के दूसरा छोड़ के जाते हैं।
3: वी आर नॉट सेइंग कि एक्स्ट्रा लेना है और वेस्ट करना है, वी आर सेइंग रोकना है, लेकिन रोकने का तरीका कैसा है, इतना जस्टिफिकेशन नहीं देना है हर चीज को। ये कितनी बारी रिकॉर्डिंग, कितनी बारी होना है, लूप में जाना है ना, जब कितनी बारी मना कर सकते हैं डांट के, तो कितनी बारी प्यार करके नहीं कर सकते,
2: करना चाहे
3: आपको
2: तो कर सकते हैं।
3: अलग अलग लोग मिलेंगे, हर एक आपके प्लेट में डालने आएगा, हर बार आप रिएक्ट करेंगे, हर बार आप कहेंगे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरी प्लेट में नहीं
2: डालता हूँ ना, मैं अपनी बेटी के घर में,
3: हाँ, तो हर बार
2: नहीं कर सकता ऐसी बात,
3: तो वहाँ
2: टॉलरेट करता हूँ, टॉलरेट प्यार से बोलता हूँ
3: बस। अब अगर हर जगह थोड़े दिन के लिए ये प्यार से
2: नाजुक रिश्ता है, समझी है,
3: ये लंबी रिकॉर्डिंग है, इटर्नल है, वो समधि सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में है।
2: हाँ, इसीलिए मैं डिफरेंट जगह डिफरेंट कर सकता हूँ,
3: नहीं, नहीं, वो
2: समधि,
3: वो समधि तो इस कॉस्ट्यूम में है, संस्कार तो साथ में हर कॉस्ट्यूम में जाने वाला है, इतनी सी मेहनत, इतना सा अटेंशन। अब अगर दो बार चार बार कर लिया, ना हम खाना एक्स्ट्रा लेंगे, ना हम वेस्ट करेंगे, ना हम जो हमें नहीं खाना वो खाएंगे, नॉट गोना डू एनी ऑफ दैट, लेकिन हम रोकेंगे, मना करेंगे इन अ स्वीट पोलाइट लविंग मैनर।
2: मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ हर एक चीज क्यों पूछे, आप क्या दवा खाते हैं, आपको कौन सी बीमारी है, कोई मेरे से पूछे आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, तो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और
3: लेट्स पॉज वन मिनट, पॉज वन मिनट, वन लाइन नीड्स टू बी चेंज्ड, आई जस्ट कैन नॉट टेक इट,
2: या
3: नो, ये लाइन अब नहीं आ सकती है, जैसे पहले वो खाने पीने की चीजों पे नहीं आ सकती थी, आई जस्ट कैन नॉट लीव इट, इसके बिना मेरा नहीं चलता। अब हम सूक्ष्म संस्कारों पे बात कर रहे हैं। किसी भी संस्कार के लिए हम नहीं कहेंगे आई जस्ट कैन नॉट डू इट, आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, आई विल ऑलवेज बी लाइक दिस, क्योंकि जैसे ये लाइन कही परिवर्तन को बंद कर दिया, फिनिश्ड, ये नहीं हो सकता मेरे से। तो ये लाइन को चेंज करते हैं, फिर आगे लेते हैं।
2: कोई मुझे पर्सनल लाइफ में बोले मैं वैसे शुगर खाता हूँ, मीठा पसंद है, चॉकलेट खा लेता, चाय मैं फीकी पीता हूँ, एंजॉय द टी, उसे शुगर ऐड करके मैं तो ओरिजिनलिटी चली जाती है। अब मुझे लोगों की इतनी बात ही अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं टॉलरेट हो सकती थी या हो रही है एक बात, व्हाई शुड यू टेक आस्क सो मेनी पर्सनल क्वेश्चंस किसी को। मैंने एक बार किसी घर में शक्कर मत डालना, आपको डायबिटीज है, तो मैंने बोला आपको कैंसर है, तो वो रोने लग गई औरत। तो वो जाके वहां गुरुजी बैठे थे, मतलब फंक्शन था, तो बोलती है मेरे को रुला दिया। मैंने बोला वो मुझे कैंसर बोल रहा है।
3: हाँ।
2: तो मैंने बोला गुरुजी इससे मुझे डायबिटीज बोला तो मैंने दूसरी बीमारी बोल दिया।
3: हाँ।
2: वो मेरी मर्जी है मैं शुगर लू नहीं लू, ये जानना पहचान। ये
3: अच्छा, अभी पॉज करते हैं।
2: देखिए जानना पहचान, आप एक फंक्शन में बैठे हैं, एक गुरुजी के आप भी चले हम भी चले, आप मुझसे आके क्यों पूछ रहे मुझे डायबिटीज नहीं है।
3: ये सारी जो है वो हम उनके व्यवहार के बारे में क्वेश्चन,
2: इंटरफेरेंस, मेरी प्लेट पे खाना डालना, मेरे बारे में पूछना, मेरी क्या इनकम है, मेरी एज क्या है, मेरी नहीं होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूं।
3: ईगो कह रही है कि ये रॉन्ग है, ईगो कह रही है कि क्यों पूछा।
2: आई विल नॉट यूज कि चलो आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, बट दैट इज डिस्टर्बिंग। जो आपको मैंने कहा कि आपने कहा हर एक घंटे में हम
3: अब लाइन चेंज करते हैं, दैट इज डिस्टर्बिंग। दैट इज नॉट डिस्टर्बिंग, दैट इज एज इट इज, आई एम क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। दोनों बातों में फर्क। सारा दिन में लोग मिलने वाले हैं जो कहेंगे आपको डायबिटीज है क्योंकि हमने कह दिया हमें चीनी नहीं खानी। उन्होंने राइट कहा नहीं कहा इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था रिलेटिव, डिफरेंट पीपल डिफरेंट संस्कार। क्या मेरा रिएक्ट करके कहना आपको कैंसर है, ये राइट था?
2: मैंने रॉन्ग का रॉन्ग बोला, जवाब राइट का राइट देता
3: किया?
2: था।
3: आपने क्या किया, सामने वाले ने एनर्जी भेजी,
2: मैंने डबल भेजी,
3: रिफ्लेक्ट
2: कर डायबिटीज का कैंसर कर दिया।
3: राइट,
2: एक के दो पत्थर मारे।
3: रिकॉर्डिंग क्या हुआ, एक का दो पत्थर इज नॉट द रिकॉर्डिंग वी वॉन्ट टू डू ना। सामने वाले ने कहा आपको डायबिटीज है, आपको लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो इसका मतलब वो बात सही नहीं है। अगर वो बात सही नहीं है तो फिर खुद कैसे कर दे
2: ताकि उसको भी हर्ट हो जितना मुझे हुआ।
3: आज तक वो भूली नहीं होगी वो बात,
2: तो जिंदगी भर किसी को पूछेगी भी नहीं जाके कि आपको डायबिटीज है, आपकी
3: प्रॉब्लम है। नो, दैट्स नॉट ट्रू।
2: लर्न नहीं करेगी वो।
3: नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर उसने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन जो आपने कहा था वो गलत था अकॉर्डिंग टू हर। तो वो डायबिटीज है या नहीं है वो फिर भी पूछेगी लोगों को, लेकिन जब भी आपको याद करेगी या कोई और आपके बारे में बात कहेगा, हर्ट क्रिएट हुआ हुआ है वहां पे। ये भी तो कमाई है जो हमारे को मिल रही है फ्रॉम आर एवरी इन्वेस्टमेंट। एक कर्म किया वो इन्वेस्टमेंट थी, उसका रिटर्न मिल रहा है, बहुत समय मिलता रहेगा। किसको सिखाने के लिए, सिखाना भी था, चलो अगर ये इंटेंशन भी है कि सिखाना था, तो हाउ वुड वी हैव टू टीच द पर्सन और शेयर विद द पर्सन, कैसे करेंगे हम?
2: प्यार से बोलेंगे कि देखो किसी को ऐसा पूछना ठीक नहीं है, बुरा लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कैंसर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, हाउ वुड यू फील?
3: तो वो ऊपर से कहेगी थैंक यू सुरेश भाई, आपने मुझे एक अच्छी बात सिखाई आज, आई विल ऑलवेज टेक केयर।
2: मे बी, ये तो आपका अजम्पशन है।
3: चांसेस आर हायर। रोएगी तो नहीं?
2: रोएगी नहीं।
3: हर्ट तो नहीं होगी? हर्ट तो नहीं होगी। जाके शिकायत तो नहीं करेगी बड़ों से? चोट तो नहीं लगी होगी अभी तक? वी हैव अ चॉइस। अब अगर उस दिन वो हो गया इज ओवर, लेकिन अगर वो रियलाइजेशन अब हो गई, नेक्स्ट टाइम वी विल बी फेसिंग द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। दैट्स अबाउट ग्रूव, कि ग्रूव बना है अगर कॉन्शियसली जो उसने लिखा था उस दिन, कि कॉन्शियसली स्टॉप नहीं किया तो उसी ग्रूव में चलते रहेंगे इस जीवन भी आगे।
2: बट मुझे नहीं चलना है,
3: नहीं चल दिस,
2: तो मैं खूब मेहनत करूंगा।
3: दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट। तो आज अगर जब आप भोजन पर जाएंगे
2: जी,
3: कोई आपके पास परोसने आएगा तो उसे प्यार से हम रोक सकते हैं, ना एक्स्ट्रा लेंगे, ना वेस्ट करेंगे, लेकिन ना रिएक्ट करेंगे।
2: और मैं कई, अगर मैं सोचूं कि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो शायद वो करे भी नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी
3: डिफरेंट जा रही है,
2: अलग रहेगी ना, अकॉर्डिंग टू यू मेरा ऑरा बदला हुआ होगा।
3: तो एक नया ग्रुप,
2: मैं एक फियर क्रिएट करके जाता था टेबल पे, अब ये डालेगी, अब वो ये करेगी।
3: सी, वी नीड टू रिमेम्बर कि ये जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं ना, लोग हमारी वाइब्रेशंस के नजदीक आने में कंफर्टेबल नहीं होते। हमें तो क्या चाहिए, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, ये मंत्र है। तो हमारी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक होमवर्क करते हैं हम सब मिलकर
2: जी,
3: कोई भी एक संस्कार लेते हैं। हैबिट बहुत सूक्ष्म भी नहीं, लेकिन ऐसे विजिबल, जैसे आपने कहा कोई खाना डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई लोग कहते हैं पेन कोई ऐसे ऐसे करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई लोग कहते हैं कोई नकल्स को ऐसे ऐसे क्रैक करे तो आई गेट वेरी एंग्री, यू नो दिस स्मॉल, दिस इज नॉट वेरी सूक्ष्म, इट इज नॉट एकदम एक्सटर्नल, लेकिन ये है परिस्थिति को देखते हुए एजिटेट या इरिटेट हो जाना, कि उनके संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हमारी वो ही रिकॉर्डिंग फिर से चलती जाती है। आज कोई एक आदत को ऐसी लेते हैं जो हमने कहा ये मेरी नेचर है, बात ही ऐसी थी कि आई हैव टू रिएक्ट लाइक दिस, गुस्सा मुझे आ जाता है, अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझसे नहीं चेंज होता। आज कोई एक को लेते हैं, सिर्फ वन, एंड आज पूरा दिन सिर्फ अटेंशन अपनी प्रोग्रामिंग करके, बात नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, टुडे आई विल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे एंड चूज योर डिफरेंट वे, चूज द वे विच इज हेल्दी, चूज द वे विच मेक्स मी फील नाइस, मेक अदर्स फील नाइस, चूज दैट वे एंड क्रिएट अ न्यू रिकॉर्डिंग टुडे।
2: डेफिनेटली आई विल ट्राई।
3: थैंक
2: यू सो मच।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति।
4: Every thought, word and action we create does not influence only our present and future, but is also an investment which we are making for our future lives. Every recording made on the soul is eternal and will influence our mind, body and relationships in future lives, as will be our personality in this life, our habits, behavior, fears, likes and dislikes. So will be our personality when we take the new costume. This is the reason why every child has different patterns of likes, dislikes and habits, which are what the soul has carried from the past. When we look at family members through the consciousness of a relationship, we have expectations of how a spouse or a child should be. Look at them as a soul on a long journey, gone through varied experiences, created different sanskars. Then understanding them becomes easy. Let us select any one habit of people which we felt we cannot tolerate, and we always reacted to that habit. Today, understanding their sanskar and attention on the recording we are creating, we will face the sanskar with stability and increase our power of tolerance.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 9955966

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना लगड़े तुम, तेरे कर तुम, ना लगड़े तुम, हम तुम, नता साथ, ठिपा साथ, लता फाथ, फता फाथ, मेरा कच करामत,
1: ताते ठेटा, ताते ठेटा, ताते ठेटा, ताते ठेटा, थैया, थैया, थै, तकता दूं, तकता दूं, तकता न्या

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। तो आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ सुनहरे पल, जिसे ज्ञान के पिंजरों से छुड़ा कर लाई हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई जानता है और करना भी पसंद करता है। लेकिन योग क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा विषय है संकल्पों के अनुशासन का नाम क्या है, योग। योग एक प्रकार से मन, वचन और कर्म का आध्यात्मिक अनुशासन है। हम देखते हैं कि फौज में शारीरिक ड्रिल करते समय हर एक फौजी अपनी भुजाओं, टांगों इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन करता है। उसके कदमों और उसकी भुजाओं का दूसरे फौजियों के कदमों और उनकी भुजाओं की गति के साथ एक तालमेल, जिसे हम कहते हैं रिदम, होता है। और जिस समय उसे रुकने के लिए आज्ञा दी जाए, उसी समय वह अनुशासनबद्ध होकर रुक जाता है। उसे जिधर मुड़ने के लिए कहा जाए, वह एक सुंदर ढंग से उधर ही मुड़ता है। इसी प्रकार योगी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अपनी कर्म इंद्रियों के संबंध में भी अनुशासन का पालन करता है, जिनकी गणना यम नियमों के अंतर्गत होती है। और वह जब चाहे अपने मन को अपने कारखाने या मकान दुकान से हटाकर परमात्मा में एकाग्र कर सकता है, जिसे हम कहते हैं योग। और जब चाहे तब कार्य व्यापार में भी प्रवृत्त हो सकता है। वास्तव में आत्मा स्वयं एक अणु है, एक ज्योति कण है। इसका कर्म इंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है योग क्या है। योग संकल्पों के अनुशासन का एक नाम है योग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्मा जो है एक अणु की तरह है, एक ज्योति कण है। इसका कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। योगी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, उसका मन विषयों के पीछे नहीं भागता, वह मित्ताहारी होता है और उसका व्यवहार दिव्य मर्यादा के अनुसार होता है। एक साधारण मनुष्य जो होता है, वो राह जाते हुए निष्प्रयोजन ही इधर उधर ताक झांक करता जाता है और वह एक विषय को छोड़ दूसरे विषय पर अनियंत्रित होकर बोलता रहता है। उसकी वृत्ति बिखरी रहती है और दृष्टि भटकती सी रहती है। भोगी मनुष्य सारा दिन खाता पीता, बोलता और पदार्थों को भोगता रहता है। गीता में इसे ही मन की चंचलता अथवा व्यभिचार कहा गया है। इसके विपरीत योगी जो होता है, वो संयम रखता है, वो संयमी होता भी है। जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करते हुए उस पर उनका नियंत्रण होता है, इसी प्रकार एक योगी जो होता है, उसका जो है अपने मन पर नियंत्रण होता है और वो नियंत्रण रखता भी है। अपने मन को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को वो नियंत्रण करके चलता है। उसे ही कहते हैं राजयोगी। राजयोगी भी अपने जो होते हैं कर्मेंद्रियों को तथा अपने मन को ज्ञान के अनुसार, अपने मन को ज्ञान रूप

अंकुश के अधीन रखता है, तो जिसे हम कहते हैं राजयोगी। तो आपने देखा राजयोगी किसे कहते हैं, ये एक अनोखी बात है जिसे हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको उसके नियमों को पालन करने में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है योग। योग जो है संकल्पों के अनुशासन का नाम योग है। अब जरा सोचिए कि यदि ऊंट की नकेल न हो तो सवार की क्या गति होगी। इसी तरह यदि कोचवान घोड़े की लगाम अपने काबू में न रखे तो रण में वह कहां जाकर उतरेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को चाहिए कि वह भी अपनी कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों की बागे जो है ज्ञाननिष्ठ बुद्धि के वश में रखे। परंतु प्रश्न उठता है कि स्वयं बुद्धि की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। मन को काबू में कर सकने वाली बुद्धि है। बुद्धि यदि दिव्य हो और बलवती हो तो वह मन को कुपथ पर चलने से रोककर सुपथगामी बनाए रख सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि बुद्धि में दिव्य बल कैसे आए, उसका विवेक सद्विवेक कैसे बने, उसे पाप पुण्य की परख कैसे आए। इसी के लिए ही राजयोग रूप साधन है। जब हम बुद्धि को सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करते हैं तो उसकी शुद्धि होती है और उसमें वह दिव्य शक्ति आती है जिससे मन का अनुशासन सहज हो जाता है। उसकी विधि यही है कि हम परमपिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को उसकी सूक्ष्म स्मृति एवं अनुभूति में स्थित करें और मन को ऐसी बुद्धि का सहगामी बनाए। यही है राजयोग। तो राजयोग की विधि ऐसे है तो बहुत सहज। अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी सेवा केंद्र में, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आप जाकर इस राजयोग की विधि को बहुत सहजतापूर्ण ढंग से सीख सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी में से धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी आपकी जीवन शैली बहुत सहज हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सबके कदम देखो रंग।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: शांति पाने की इच्छा से विवेकानंद काशी पहुंचे, पर उनका अशांत मन शांत न हो पाया। उनके गुरुजी ने समाज का उद्धार करने का जो कठिन व्रत उन्हें दिया था, उसका कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे। काशी से 22 जनवरी सन 1890 को वे गाजीपुर पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि विख्यात साधु श्री पभारी बाबा से मिलने की। वहां वे अपने बचपन के साथी श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के पास ठहरे। कई बार प्रयत्न करने पर भी उन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था,
1: बड़े भाग्य से बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, वे महापुरुष हैं। आज इस नास्तिकता के युग में वे भक्ति तथा योग की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ये बात साधारण नहीं है, मैं इनकी शरणागत हुआ हूं। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो सभी के भाग्य में प्राप्त नहीं होता।
2: पभारी बाबा पहले से ही श्री रामकृष्ण के बारे में जानते थे। स्वामी जी को उन्हीं का शिष्य जानकर वे उनका सत्कार करने लगे। धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो गए। जिस समय वे धर्मराज की उच्चारी अनुभूति तथा कठिन दार्शनिक तत्संबंधी चर्चा करने लगते थे, उस समय उनका वार्तालाप ऐसी उच्च स्थिति पर पहुंच जाता था कि अन्य उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी उसका मर्म समझ नहीं पाता था।
0: घनिष्ठ परिचय हो जाने से महान तपस्वी पभारी बाबा पर स्वामी जी बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या कारण है कि भगवासन श्री राम कृष्ण की असीम कृपा के अधिकारी होकर भी आज तक मुझे शांति नहीं मिली। संभव है कि इन ब्रह्म पुरुष की सहायता से मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा।
2: पभारी बाबा का जन्म काशी के निकट एक गांव में ब्राह्मण वंश में हुआ था। बाद में गाजीपुर आकर अपने एक विद्वान चाचा से विद्यार्जन कर व्याकरण और न्याय शास्त्र के वे पंडित हो गए। उनके चाचा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद वे सत्य की खोज में भारत के विभिन्न स्थानों का परिव्राजक के रूप में पर्यटन करते रहे। इसी क्रम में किसी एक समय काठियावाड़ के गिरिनार पर्वत की चोटी पर वे योग के रहस्यों में दीक्षित हुए। गिरिनार से वे काशी लौट आए। वहां उन्हें गंगा तट पर एक गुफावासी सन्यासी का दर्शन हुआ। उनसे अद्वैत वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया। तदुपरांत दीर्घ काल तक तपस्या और तीर्थ भ्रमण कर वे गाजीपुर के पुराने निवास स्थान पर लौट आए। इसके अनंतर शीघ्र ही काशी धाम के अपने गुरु के आदर्श के अनुरूप शहर से 2 मील उत्तर नदी के तट पर एक गुफा बनाकर उसमें तपस्या करने लगे। स्वामी जी जब गाजीपुर गए तब बाबा जी दिन का अधिकांश समय गुफा में ही व्यतीत करते थे और रात में नदी के दूसरे किनारे पर जाकर वहां भी साधना निरत रहते। उनके भोजन में केवल एक मुट्ठी नीम के पत्ते अथवा कुछ मिर्च थे। वे हर प्रकार के कर्म को भोजन की आराधना मानते। इष्ट देवता को भोग निवेदन करने के बाद वे प्रसाद स्वयं न खाकर समागत साधुओं और दरिद्रों में बांट दिया करते। वस्तुतः वे इतने स्वल्पाहारी थे कि लोगों ने उनका नाम रखा था पभारी, अर्थात पवन आहारी बाबा।
0: लोगों ने देखा कि उन्होंने गुफा में दिन पर दिन यहाँ तक कि पूरा महीना बिता दिया। उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के सोचा कि वे कैसे बचे रह सकते हैं, शायद मर तो नहीं गए। बहुत समय के बाद देखा गया कि वे जीवित हैं और ओट में रह करके इच्छा अनुसार 2-4 बातें भी करते हैं। जीवन के अंतिम भाग में वे बिल्कुल बाहर नहीं निकला करते थे। अंत में एक दिन मांस के जलने की दुर्गंध और बहुत अधिक धुआं निकलते देख लोगों ने गुफा में झांक करके देखा। विराट होम अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने शरीर की आहुति दे दी है। उनकी आत्मा इस बीच शरीर पिंजर का परित्याग कर समाधि मार्ग के द्वारा परमात्मा में एकाकार हो गई है। यह निश्चय ही बात की बात है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय भी पभारी बाबा का नाम लोगों की जबान पर था और उनके दर्शन की लालसा से दूर दूरांतर से लोग आया करते थे। अतः स्वामी जी जो ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लालायित हुए तो इसमें आश्चर्य क्या है।
2: परंतु बाबा जी का दर्शन होना सहज नहीं था। गुफा के ऊपर एक कुटिया थी। वे बातें करना चाहते पर बाबा जी गुफा के द्वार पर स्थित उस कुटिया में आकर बंद दरवाजे की ओट से ही बातें करते। इसी से स्वामी जी ने भी आसानी से दर्शन नहीं पाया। बाद में बहुत प्रयास करने पर सफल मनोरथ होकर 4 फरवरी को प्रमदा बाबू को लिखा,
1: बड़े भाग्य से बाबा जी का दर्शन हुआ। वास्तव में वे महापुरुष हैं। बड़े आश्चर्य की बात है किस नास्तिकता के युग में भक्ति एवं अद्भुत क्षमता के व्यालौकिक प्रतीक हैं। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जो हरेक के भाग्य में नहीं। बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहां ठहरूं। वे मेरा कल्याण करेंगे। अतएव इन महापुरुष की आज्ञानुसार मैं कुछ और दिन यहां ठहरूंगा।
2: बाबा जी के पास ही रहने के अभिप्राय से स्वामी जी ने इसके बाद गगन बाबू के एक उद्यान भवन में रहने का संकल्प किया और स्वामी अखंडानंद को एक चिट्ठी लिखकर सूचित किया।
1: यहाँ एक सज्जन है जिनके छोटे बगीचे में एक सुंदर बंगला है। मैं वहां ठहरना चाहता हूं। वो बगीचा बाबा जी के निवास स्थान से निकट है। वहां बाबा जी का एक भाई रहकर साधुओं की सेवा करता है। मैंने उसी स्थान पर भिक्षा ली।
0: बाबा जी उद्यान भवन के समीप गंगा के किनारे एक बड़ी सुरंग के अंदर समाधिस्थ होकर के पड़े रहते थे। स्वामी जी उन दिनों 2 महीने तक कमर के दर्द से पीड़ित थे। इतने निकट रहने पर भी बाबा से नियमित मिलना संभव नहीं हो पाता था, परंतु बाबा जी आदमी भेज करके उनकी खोज खबर लिया करते थे। स्वामी जी को एक और असुविधा यह थी कि वे इस समय उदर रोग से ग्रस्त थे। भिक्षा से प्राप्त भोजन सामग्री उन्हें पचती नहीं थी।
2: गाजीपुर में निवास करते समय स्वामी जी से अनेक अंग्रेजों की बातचीत हुई थी। गगन बाबू ने अफीम विभाग के उच्च पदाधिकारी रॉस साहब से उनका परिचय करवा दिया। रॉस साहब ने भी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न कर उनसे हिंदू धर्म के अनेक तत्वों को जान लिया एवं होली के संबंध में उनसे एक लेख लिखने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने लेख लिख दिया। इस प्रकार स्वामी जी की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर रॉस साहब ने स्थानीय जिला जज पेनिंगटन साहब से उनका परिचय करवा दिया। स्वामी जी से हिंदू धर्म की व्याख्या सुनकर जज साहब इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उनसे इंग्लैंड जाकर उसका प्रचार करने का अनुरोध

0: करने लगे।
1: एक दिन रात्रि में स्वामी जी पबहारी बाबा की गुफा में जाने के लिए तैयार हुए। श्री राम कृष्ण या पबहारी बाबा, प्रश्न मन में आते ही उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। संदेह पूर्ण चित से विवेकानंद भूमि पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण की असीम कृपा, गंभीर प्रेम, स्नेहयुक्त व्यवहार एक एक करके उनकी स्मृति में आने लगे और इससे उनका व्यथित चित आत्मधिक्कार से भर गया। एकाएक उनका अंधकार में कक्ष दिव्य आलोक से उद्भासित हो उठा। स्वामी जी ने अपने सजल नेत्रों को उठा करके देखा, दिव्य दर्शन। उनके जीवन के आदर्श दक्षिणेश्वर के वही अद्भुत देव मानव उनके सामने खड़े हैं। उनके उज्जवल तथा विस्तृत नेत्रों में स्नेह, करुणा एवं व्यथापूर्ण भत्सरना थी। विवेकानंद अवाक रह गए। प्रहर तक पत्थर की मूर्ति की तरह वे जमीन पर बैठे रहे। प्रातःकाल हुआ, मन में संकल्प विकल्प होने लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण का वह दर्शन मस्तिष्क की दुर्बलता का फल तो नहीं था।
0: अगली रात को वे फिर से पबहारी बाबा के पास जाने को तैयार हुए, पर आज भी वही पहले की देखी हुई ज्योतिर्मूर्ति उसी तरह उनके सामने खड़ी हो गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार 21 दिन इसी प्रकार व्यतीत होने पर अंत में वे मर्म वेदना से भूमि पर लोटपोट होकर आठ स्वर में बोल पड़े।
2: नहीं प्रभु, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। हे राम कृष्ण, तुम ही मेरी एकमात्र आराध्य हो, मैं तुम्हारा ही दास हूं। मेरी इस मानसिक दुर्बलता के अपराध को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो।
1: कुछ दिनों के बाद उनके द्वारा रचित गीता में शीर्षक कविता के कुछ अंश में हम इस घटना का थोड़ा बहुत आभास पाते हैं।
2: बाल केली करता हूं तुमसे मैं, और क्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना कभी चाहता हूं। किंतु निशा काल में शैया के शिरोभाग में देखता हूं तुमको मैं खड़े हुए चुपचाप, आंखें छल छलाई हुई। हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर, उसी समय बदल जाता भाव मेरा। पैरों पड़ता हूं पर क्षमा नहीं मांगता, तुम नहीं करते हो रोष। पुत्र हूं तुम्हारा, कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। प्रभु हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा मेरे हो। कभी देखता हूं तुम मैं हूं, मैं तुम हूं।
1: जब वे स्टेशन से गाजीपुर से उस पार ताड़ीघाट स्टेशन पर उतरे तो वह समय दोपहर का था। स्वामी जी के सामानों में एक तीसरे दर्जे का टिकट, एक कंबल और पहनने के लिए कुछ गेरवा कपड़े थे, साथ में और कुछ, यहां तक कि एक जल पात्र भी नहीं था। चौकीदार ने उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छांव में नहीं बैठने दिया, बाहर कर दिया। विवश होकर के वे जमीन पर कंबल बिछा करके विश्रामागार के बाहर एक खंभे से टिक करके बैठ गए। आसपास में लोग थे, उनमें एक व्यापारी स्वामी जी के बिल्कुल सामने छावनी के नीचे दरी पर आराम से बैठा था। स्वामी जी को क्लांत देख करके अनेक प्रकार के व्यंग कर रहा था। वह व्यक्ति और उसके कई साथी स्वामी जी के साथ रेलगाड़ी में एक डब्बे में बैठकर आए थे, और रास्ते में भी वह ऐसा करने से बाज नहीं आ रहा था।
0: यहाँ आने पर भी उसका व्यंग नहीं रुका। प्लेटफॉर्म पर छाया में आराम से बैठकर वो पुनः उपदेश झाड़ने लगा। अरे देखा, पैसे की क्या शक्ति है, तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, उसका फल भी देखा, और मैं रुपए पैसे कमाता हूँ, उसका सुफल भी देख लो। ये कहकर वे अपने साथ लाए खाद्य पदार्थों को खोलकर खाने लगा, और स्वामी जी को वे सब वस्तुएं दिखा दिखा कर कहने लगा, ये सारी पूड़ियां, कचौड़ियां, पेड़े, मिठाइयां क्या बिना पैसे के मिल सकती हैं? स्वामी जी सब कुछ देख और सुन रहे थे तथा बिना कुछ कहे सारे अपमानों को सहन करते जा रहे थे।
1: उसी समय अचानक एक दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा।

0: उसके दाएं हाथ में थी एक गठरी, एक लोटा तथा बाएं हाथ में एक गगरी जल और एक दरी थी। स्टेशन पर इधर उधर घूमकर फिर स्वामी जी के निकट आकर के उसने कहा,
1: अरे बाबा जी, आप धूप में क्यों बैठे हैं? छांव में चलें। मैं आपके लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आया हूँ, दया पूर्वक ग्रहण कीजिए।
2: स्वामी जी तो अचानक विश्वास ही नहीं कर सके। व्यंग करने वाला व्यापारी भी तब आश्चर्य से अवाक हो गया। नवागत व्यक्ति द्वारा स्वामी जी को बार बार भोजन के लिए अनुरोध करने पर स्वामी जी ने कहा,
3: भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो। शायद किसी दूसरे को देने के लिए आकर भूल से मेरे पास चले आए हो।
1: नहीं नहीं, आप ही हैं वो बाबा जी जिन्हें मैंने देखा है।
3: मतलब अब तुमने मुझे कब देखा?
1: महाराज, मैं आपसे कभी मिला तो नहीं।
3: फिर?
1: मैं हलवाई हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। दोपहर को भोजन के बाद सोया था, उसी समय सपने में देखा कि श्री राम जी आकर मुझसे कह रहे हैं कि मेरा एक साधु स्टेशन पर खड़ा हुआ बिना खाए दुख भोग रहा है। कल से ही उसने खाया पिया नहीं है, तुम तुरंत जाकर उसकी सेवा करो। महाराज, मेरी नींद खुल जाने पर भी दूसरे ही क्षण से मैंने मन का भ्रम समझकर करवट बदल कर सो गया, परंतु श्री राम कृपा कर पुनः आए और मुझे सचमुच में धक्का मार कर उठा दिया और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही करने का आदेश दे दिया। तब महाराज मैं बिस्तर त्याग कर उठा और तुरंत कुछ पूड़ियां और सब्जियां बनाई और सुबह की बनाई हुई कुछ मिठाइयां, जल और तम्बाकू लेकर जल्दी स्टेशन आ गया।
3: मैं ही वो साधु हूँ, तुमने कैसे जाना?
1: महाराज, पहले मुझे भी ये संदेह हुआ था, इसलिए यहाँ आते ही एक बार चारों ओर घूमकर देख लिया, किंतु किसी दूसरे साधु को नहीं देखकर मैं समझ गया महाराज कि आपके अतिरिक्त कोई और साधु हो ही नहीं सकता।
3: अच्छा अच्छा, तब ठीक है,
1: चलिए महाराज छांव में चलिए।
3: धन्यवाद भाई।
1: अरे नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, सब राम जी की लीला है।
2: इसके बाद उसने स्वामी जी को छाया में बैठा कर भोजन करवाया। भोजनोपरांत हाथ पर जल डाल दिया तथा चिलम भर कर दिया। व्यापारी अब तक अवाक होकर सारी घटनाएं देख रहा था और कान लगाकर सब सुन रहा था। अंत में उसे और संदेह नहीं रहा कि स्वामी जी एक उच्च अवस्था संपन्न महात्मा हैं। उसे भय भी हुआ कि इनका अपमान करने के कारण उसका भयंकर अनिष्ट होना निश्चित है। तब उसने अनुनय हृदय से प्रणाम करने के बाद अपने किए गए अपराध के लिए स्वामी जी से क्षमा याचना की।
0: स्वामी अभिदनंद जी की अस्वस्थता का समाचार पाकर के स्वामी जी गाजीपुर छोड़ चले। काशीधाम पहुंचकर उन्होंने अभिदनंद जी की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की। जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो स्वामी प्रमदा दास जी को उनके टहल में नियुक्त करके स्वामी जी बाबू प्रमदा दास मित्र के बगीचे वाले मकान में रहने लगे। इसी समय एक दिन स्वामी जी को श्री रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त बाबू बलराम बसु के परलोक सिधारने का समाचार मिला। इससे स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। गुरु भाई के वियोग की व्यथा से कातर होकर के स्वामी जी को विलाप करते देख प्रमदा बाबू ने कहा,
4: ये क्या स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, शोकाकुल होना आपको शोभा नहीं देता।
3: आप क्या सोचते हैं कि प्रकृत सन्यासी में हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं होती? प्रकृत सन्यासी दूसरों के लिए साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सहानुभूति का अनुभव करते हैं। विशेषता मैं तो मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, और फिर वे मेरे गुरु भाई जो थे, हमने एक साथ ही श्री रामकृष्ण के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी। उनके वियोग में जो मैं कातर हूं, इसमें विचित्र बात क्या है? पत्थर की तरह अनुभूति शून्य सन्यासी का जीवन मेरे लिए इप्सित नहीं है।
2: बलराम बाबू की मृत्यु के बाद शोकाकुल बसु परिवार को सांत्वना देने के लिए तथा वराहनगर मठ की व्यवस्था आदि के लिए स्वामी जी काशी से कलकत्ता लौट आए। इसी बीच 25 मई को मठ के एक मित्र तथा सहायक एवं श्री रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्य सुरेश चंद्र मित्र का देहांत हो गया। इससे अब मठ का खर्च चलाने के लिए स्वामी जी चिंतित हो गए। 2 महीने कलकत्ता व वराह नगर में रहकर स्वामी जी ने मठ का खर्च चलाने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद उनके मन में भारत भ्रमण की इच्छा फिर तीव्र हो उठी। एक ओर तो नव गठित श्री रामकृष्ण संघ के प्रति तीव्र ममत्व बोध और दूसरी ओर सत्यकाम सन्यासी की निसंग साधना का आवेग, इन दो विरुद्ध भावों के संघर्ष में विचलित होकर स्वामी जी ने मन ही मन संकल्प किया कि सभी बंधनों को, यहाँ तक कि गुरु भाइयों के निस्वार्थ प्रेम बंधन तक को छिन्न करना होगा। जिस शक्ति के बल पर श्री रामकृष्ण के महान आदर्श का प्रचार किया जा सकता है, उसी शक्ति को प्राप्त करूंगा, अन्यथा इसी चेष्टा में प्राण त्याग दूंगा। बस यही संकल्प उनके मन में दृढ़ हो गया।
0: उसी समय श्री रामकृष्ण भक्तों की माता श्री शारदा देवी भगीरथी के पश्चिम तट पर घुड़सी गांव में निवास करती थी। स्वामी जी मठ छोड़कर जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा से वहां गए। श्री माता जी के पवित्र चरणों की वंदना करते हुए गंभीर श्रद्धा में उन्होंने कहा,
3: जब तक श्री गुरु के इच्छित कार्य को मैं संपन्न न कर लूंगा, तब तक नहीं लौटूंगा। तुम आशीर्वाद दो, मेरा संकल्प सिद्ध हो।
2: सन 1890 ईस्वी के जुलाई मास में मठ भवन छोड़ने के बाद स्वामी जी ने पहले पहले भागलपुर में वकील मथुरानाथ सिंह के मकान पर कुछ दिन व्यतीत किए। वहां से विदा लेकर वे अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ देवघर आए। वहां स्वामी जी ने श्रद्धेय राजनारायण बसु से भेंट कर एक दिन उनके साथ धर्म चर्चा की। देवघर से काशी आकर उन्होंने प्रमदादास बाबू का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय उन्हें हिमालय आकर्षित कर रहा था, अतः वे अधिक दिन काशी में ना रहे। विदा लेने से पूर्व वे प्रमदादास बाबू से कह गए,
3: जब मैं लौटूंगा तो समाज के ऊपर बम की तरह फूट पड़ूंगा और समाज मेरे पीछे चलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: माझ्यासोबत आहात म्हणजेच आर जे कैलास सोबत आनंदी राहा, आनंद लुटा.
1: एक बहुत प्यारा इंसान तलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: दादी भोळी माझी आई, सुखाची कुसावली,
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: चल चल चल मेरे कम्प्युटर, चल चल चल मेरे कम्प्युटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम रिश्तों को देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की बात में जब रिश्ते सामने आए, तो एक नए अंदाज से हमने देखने का प्रयत्न किया कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हर रिश्ते में मुझे आपसे कुछ चाहिए, या वो रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, व्हाट इज़ इट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नथिंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैं हर बार ये कहती हूँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पिछली कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि रिश्ते से मुझे कुछ नहीं लेना, बल्कि मुझे रिश्ते को क्या देना है, और जब मैं देना शुरू करूँगी तो सबसे पहले वो मुझे ही मिलेगा, यानी मैं खुद ही अपने आप को देने के कैपेबल हूँ। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि ये संभव कैसे होगा। जब रिश्तों में सिचुएशंस आती हैं तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से छूट रही हैं बातें, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक नई लहर पर तो आप ले गए हमें, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं कि अभी तक ये था कि इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, या इस पर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आपके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ, लेकिन जब देखा, इस नज़र से देखा, स्पिरिचुअलिटी में हमें समझ में आया कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अच्छा फील हो रहा, बुरा भी फील हो रहा है, वो मुझसे होकर गुजर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन एक लेते हैं, मेरे हस्बैंड आए, ऑफिस से आए, और वो मेरे बारे में कोई भी बात थी, मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब हो सकता है वो उनकी पेन, वो जो भी करके आए थे,

0: बहुत खास बना नहीं सकता, डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द कुक आई एम. तो यस, ये इंग्रेडिएंट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, एक्शंस भी आए हैं, एनर्जी भी आई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा कुक
1: उन्हीं में से कुछ बना देगा. ओह यस, वी कैन मेक अ गुड पकौड़ा.
0: वो ही इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फंडामेंटल, कि वो ही इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग लोग अलग अलग डिश बनाने वाले हैं. राइट, ये याद रखें कि हाँ, अब मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसका पावर फिर भी किसके पास है? मेरे पास है. जब हम दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज जो इंटरैक्ट करती है वो है एनर्जी फील्ड. वर्ड्स बाद में करते हैं, कई बार एनर्जी कुछ और होती है, वर्ड्स तो कुछ और ही निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो यू नो, लाइक वी नो दैट एवरीवन कैरीज एन ऑरा, एक एनर्जी फील्ड है. तो सपोज यू एंड मी मीट टू पीपल, दोनों का एक एनर्जी फील्ड है. अब कई बार हम कहते हैं इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी
1: ट्यूनिंग है,
0: हाँ, और इनके साथ इतना अच्छा नहीं है. सो व्हाट इज हैपनिंग, जिनके संपर्क में मैं आई, दे कैरी अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड. किसी की एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, किसी की दूसरी क्वालिटी की तरफ भी जा सकती है. जैसे ही मैं इनके कॉन्टैक्ट में आती हूँ, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती, एंड देन आई से मैं बिल्कुल ठीक थी. लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली, तो मेरा मूड भी खराब हो गया, या मुझे भी गुस्सा आ गया, या मैं भी उदास हो गई. दैट्स लाइक सेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनकी बीमारी को मैंने पकड़ लिया. लेकिन मैंने इनकी बीमारी को एक्चुअली इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ. बिल्कुल ठीक जो होगा वो बीमारी को कैच नहीं करेगा. हाँ, अभी मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक था ना, इसलिए उनकी एनर्जी फील्ड ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया. जब मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते, तो जैसे ही मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करती हूँ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि औरों का एनर्जी फील्ड मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता. आई एम एबल टू रिमेन इन माई स्टेबिलिटी, मे बी नॉट वेरी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली डोंट गो डाउन. So basically, I'm just able to take care of myself.
1: लेकिन अगर हम देखें ससुर शिवानी, तब तक मेरा एनर्जी फील ठीक रहता है. अगर रिलेशनशिप पर रियली देखते हैं, अगर मेरे सपोर्ट हस्बैंड आए या मेरे फादर आए, जब तक वो पर्सनल नहीं होता, तो वो जब वो होना शुरू होता है, देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन, और तब मुझे वो दिखना बिखना सब बंद हो जाता है. देन ऑल ऑफ माई यू नो सारी जो फैकल्टीज हैं वो काम करनी बंद कर देती हैं, जब वो मेरे साथ पर्सनल मुझ पर अटैक होने लगता है. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एक रिश्ते में, जब हम देखते हैं कि जब तक उनका किसी और के प्रति नाराज़गी थी, किसी और से गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वो नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन आई वॉज एबल टू टेक इट एंड आई वॉज एबल टू हेल्प हिम आउट ऑल्सो, कि ठीक है आप कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, पानी पी लो, ये करो. लेकिन जब वो मेरी तरफ टारगेट हुआ और वो मुझे ही पर्सनली हिट करने लगे, वो पुरानी पुरानी बातें जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने याद रखी होंगी, अपने साथ रखी होंगी. सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मुझे डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता. सो ईदर आई रिएक्ट, एंड इफ आई डोंट रिएक्ट, आई गो इनटू सो मच ऑफ डीप हर्ट.
0: Now when we say reaction, तो reaction पहले कहाँ होता है, ठीक है ना? आपने जो कहना है वो आप कह रहे हैं. कई बार ये होता है कि मैं चुप रह जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, तो मुझे लगता है मैंने react नहीं किया. मैं कहती हूँ मैंने चुप करके सुन लिया, मैंने चुप करके सुन लिया. लेकिन कितनी बार भी चुप करके सुनो, इनका तो चलता ही रहता है, ये बार बार ये सब बोलते रहते हैं. एंड देन भी से हम कब तक फिर ऐसे चुप करके सुनेंगे?
1: एक बार तो मैं चुप रह ली, अगली बार मैं नहीं रहूंगी चुप, कितनी बार ये भी.
0: लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना होगा, क्या सचमुच में मैं चुप रही? चुप मींस नो क्रिएटिंग ऑफ नेगेटिविटी. नेगेटिविटी थॉट्स तो आएंगे, बट नो क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, तब हम कह सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हम क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने कहा कि दूसरा अगर गुस्सा करे आप चुप रहोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा. नाउ दे टेक हाफ द फॉर्मूला, टेक द फुल फॉर्मूला,
1: एंड दे से कि चेंज नहीं होता.
0: एंड देन दे से मैं तो चुप रही लेकिन वो चेंज तो हुआ ही नहीं. फंडामेंटल बात, पहली बात, हम चुप रहते हैं उनको चेंज करने के लिए नहीं. अगेन द थॉट इज नॉट कि मैं चुप रहूँ ताकि वो चेंज हो जाए. मैं चुप रहूँ पहले ताकि मैं चेंज हो जाऊँ, मैं प्रोटेक्टेड रहूँ. एंड चुप रहना मतलब क्या, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना, कि हाँ वहाँ से एंगर आ रहा है, वहाँ से

0: दर्द आ रहा है, लेकिन पहले मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो यहाँ नहीं क्रिएट होता, पहले यहाँ क्रिएट होता है। जैसे आपने अभी कहा कि इतनी पुरानी बातें कई बार किसी को याद आ जाती हैं, वो कहेंगे पिछली बार भी आपने ये कहा, एक साल पहले आपने ये किया था, ये क्या हो रहा है। यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि जो कबर्ड है
1: वो
0: वो
1: खुल गया।
0: खुल गया और सारा कुछ जो उसके अंदर स्टफ किया हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा है,
1: अबे मैं भी अपना कबर खोल देती हूँ कई बार तो।
0: और सडनली वो जो एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब कि हमने बहुत समय से वो बहुत कुछ सोच कर अपने कबर्ड के अंदर दबा कर बंद रखा होता है। आप देखो, कभी हम किसी के घर जाते हैं तो घर बाहर से बहुत सुंदर होता है, सब नीट एंड क्लीन, लेकिन कबर्ड अगर खोलो।
1: सब कुछ ऊपर गिरेगा आपके।
0: ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाता है कि बाहर से तो बहुत साफ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन कबर्ड में शायद बहुत सारा ऐसा कुछ रखा है। और जैसे ही ये ऐसी सिचुएशन आती तो वो कबर्ड एकदम खुल जाता, और जैसे ना घर का भी कबर्ड होता है, आप जैसे खोलो यू हैव नो कंट्रोल आफ्टर दैट कि वो क्या क्या क्या क्या एक के बाद एक निकल कर गिरता जाएगा। फिर आप उसको रोकने की भी कोशिश करो
1: नहीं
0: तो वो
1: रुकता।
0: रुकता नहीं है। संभाल कब करनी थी कि रखते टाइम ही क्या रख रहे थे और किस तरह से रख रहे थे। इसी तरह जब हम बोलना शुरू करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा होता है, कई बार बाद में खुद को हैरानी होती है, क्या बोला मैंने,
1: क्या वेरी
0: यू नो
1: ट्रू यू नो।
0: व्हाट वाज
1: और
0: आई सेइंग टू दैट अदर पर्सन, एंड देन इमीडिएटली आई से आई एम सॉरी आई डोंट मीन टू से दैट। अब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि मेरा एक्चुअली कहने का भाव नहीं था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इन्होंने ऐसा किया, और उस टाइम हम दर्द में गए होंगे जब वो सिचुएशन हुई होगी, और हमने उस दर्द का जिम्मेवार आपको समझा है, और इसलिए हमने उस बात को पकड़ कर रखा है। और अब आप फिर से जब ट्रिगर करोगे मुझे तो मैं वो सारी बातें बाहर निकालूंगी। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या हो जाता है, सिचुएशन तो इतनी थी लेकिन वो सारी कहीं की कहीं यू नो बढ़ जाती है। तो द नीड ऑफ द आवर इज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ताकि सिचुएशन डजेंट गो आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज वट यू वर सेइंग। यू सेड कि अगर वो ऑफिस के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, इधर उधर के लोगों के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। वाई? बिकॉज आई एम नॉट इन पेन। तो बिकॉज आई एम नॉट इन पेन मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। सी, एंड फंडामेंटल रिश्तों में क्या है कि हमें एक दूसरे
1: ध्यान
0: का ध्यान रखना है, कि अगर दूसरा दर्द में चला गया मुझे उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बीमार हो तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना, लेकिन अगर कोई इमोशनली बीमार होता है तब क्या होता है, हम उसकी बीमारी को कैच
1: खुद लेते हैं।
0: कर लेते हैं, और जैसे ही हमने उसकी बीमारी को कैच कर लिया हम बीमार हो गए, और जैसे ही हम बीमार हो गए हमने उसका ध्यान रखना,
1: कर
0: हमें
1: ही
0: तो
1: नहीं
0: अपना ही नहीं
1: सकते।
0: ध्यान रखना आता उस टाइम, तो आपका ध्यान मैं क्या रखूंगी। और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये जो वायरस आ रहा है ना मेरी तरफ, ये वायरस आना बंद हो जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगी। बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नो हाउ टू हील यू। तो जैसे हमने कहा कि अगर वो कोई और बात पर गुस्सा कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलरली अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, यू नो पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ कह रहे हैं, कैन आई गिव माई सेल्फ अ थॉट कि एक्चुअली वो मुझे नहीं, अभी भी वो अपना दर्द ही बाहर निकाल रहे हैं, कारण कुछ और होगा, फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है, इमोशनल चोट उनकी अपनी है, टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है, दे कैन शाउट अबाउट द चिल्ड्रन, ही कैन शाउट अबाउट मी, ही कैन शाउट, बिकॉज व्हेन आई गो इन टू अ रिएक्टिव मोड लॉजिक,
1: डजंट होल्ड
0: यू नो
1: यस।
0: समटाइम्स वी टेल ईच अदर क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये इतना इलॉजिकल कैसे बात कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर कि एंगर कब से लॉजिकल होने लगा, रिएक्शन लॉजिकल कब होता है, उस समय तो हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब हमें ये पता है कि इस समय ये व्यक्ति दर्द में है, अंदर से हर्ट है, तो इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिएक्टिव ही होगा। उस समय उससे लॉजिक एक्सपेक्ट करना डोंट, उस समय एक्सपेक्ट करना कि वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझे डोंट। तो उस समय तो सिर्फ मुझे किसका ध्यान रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा कि ये मुझे नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हर्ट अपने आप को मैं करती हूँ, वो नहीं कर रहे। हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं वो इतना कुछ कह रहे हैं, हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को जो कहना है वो चॉइस किसके पास है?
1: But it goes deep in me, you know, like वो जो वो sentences होते हैं, they stay and then they'll always bombard you, पूरा time आपके कानों में वो गूंजते रहते हैं।
0: तो हमारा नुकसान पहले ज्यादा कौन कर रहा है?
1: हाँ हम खुद
0: हम खुद कर रहे हैं। हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा कहा। हम अपने आप को क्या कहते हैं सारा दिन? उन्होंने अगर एक सेंटेंस कहा भी तो एक बार कहा, हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं वो सेंटेंस? उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कितनी बार कह सकते हैं? 5, 10, 20, 50 बार भी अपने आप को बोल सकते हैं। ज्यादा नुकसान कौन कर रहा
1: है?
0: दिस इज कॉल्ड टॉर्चरिंग योर सेल्फ। अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को दर्द देना, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन। अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं हम इमोशनली। एक है फिजिकल अब्यूज, लेकिन एक है इमोशनल अब्यूज। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, वो अपना फेंका बाहर, लेकिन अपना दर्द मैंने क्रिएट किया। एट दैट टाइम डू आई हैव द पावर टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी भी चॉइस मेरे पास है।
1: आई डोंट हैव अ चॉइस जो है वो लाइन जो
0: आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा फील करना है। लेकिन वो अवेयरनेस तब क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव थॉट तब क्रिएट हो पाएगा अगर वो सारा दिन में क्रिएट किया होगा। नहीं तो मुझे सिर्फ उन्हीं की थॉट्स सही लगेंगे। वो कह रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं करती। तो इट्स नॉट अबाउट वो मुझसे नफरत करते हैं, इट्स अबाउट मैं अपने आप से करने लग जाती हूँ
1: कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ? अच्छा, देन आई लास्ट 10 पीपल, यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ?
0: I need a verification certificate.
1: No, but we do it with so many people, you know. The hurt goes so deep and then we'll call 10 people, you know, what she said, what he said. और आपको लगता है क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं ऐसी करती हूँ?
0: देखो ना वो कैसे हैं? वो ऐसे बोलते हैं। I need an assurance from people. Why? Because I don't know myself. Why don't I know myself? Because I don't have a relationship with me. मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है।
1: मैं दूसरों की नजरों से अपने आप को देख रही हूँ एक्चुअली।
0: तो मैं आपकी हर बात को सच मानकर अपने ऊपर वो लेबल लगाना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आप मुझे आकर कहते हैं आप बुरे हैं, मैं सच मानती हूँ। अगर आप कहते हैं आप कोई काम के नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सच मानती हूँ। अगर आप आकर कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा आगे भी जाकर, मैं सच मानती
1: हूँ।
0: तो मैं आपकी हर बात को लेती हूँ, उसको स्वीकार कर लेती हूँ, सच भी मानते जाती हूँ, और अपने आप को बार बार वो रिपीट भी करते जाती हूँ। सो हूज क्रिएटिंग द पेन? एंड देन वी से उनकी वजह से दर्द।
1: ओह आई एम डूइंग सो बैड टू माईसेल्फ,
0: इट्स टू माईसेल्फ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एंड दिस हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद, लेट्स से इट हैपेंस टुडे इवनिंग और टुमारो, इमीडिएटली फर्स्ट थॉट, क्योंकि तूफान देखो आता हुआ दिखाई तो देता है, इट्स लाइक
1: अब तो दिखने लग गया, अब तो दिखता है।
0: हाँ, स्टॉर्म दिखाई तो दे रहा है, कोई भी स्टॉर्म ऐसे ही नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, वो दिखाई देता है। जैसे ही आपको स्टॉर्म बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तुरंत अपने आप को बोलो ओके रेडी, यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन वी विल टेक केयर ऑफ अदर पीपल। अभी हमें तुरंत लगता है लेट मी टेक केयर ऑफ देम, उनको चुप करा दो, उनको ठीक करा दो, अपने आप को चुप करा दो इधर।
1: हाँ, कितनी बार हमें लगता है जब वो कोई चिल्ला रहा होता है कि वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ही शुड नॉट शाउट, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट आई थिंक समवेयर जो मेरे अंदर की आवाज़ है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, और इसमें सचिवानी वो जो 1 आवर के बाद 1 मिनट है,
0: राइट, that makes all the difference. Yes. Because 1 hour ke baad 1 minute stop karke positive thought create karna, matlab apne mind ko ek practice de dena positive thinking karne ke. Hum kyun kehte hain har ek ghante ke baad 1 minute? Kyunki har ek ghante mein hum bahut sari situations mein hain, to hamara man yahan wahan bahut sari baaton ke bare mein soch raha hai. To it's like a car which is driving in the 4th or the 5th gear, and then suddenly 1 minute. तो हम 1 मिनट मतलब हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक कैसी है। अगर वो 1 मिनट भी वो परिस्थिति और लोगों के बारे में ही सोचने में चला गया, इसका मतलब आपने ब्रेक लगाई तो थी लेकिन ब्रेक लगी नहीं, दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड. इसको प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, गाड़ी की ब्रेक को ठीक करते रहना. अब क्या होगा, जैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, सडनली स्टॉप एंड अ पॉजिटिव थॉट. नॉट स्टॉप थिंकिंग बट स्टॉप ऑल दोज ऑर्डिनरी थॉट्स एंड अ पॉजिटिव थॉट. आई एम अ पावरफुल बीइंग. ये प्रैक्टिस है सारा दिन.
1: इट गिव्स यू लॉट ऑफ पावर, यू नो.
0: नाउ दिस इज प्रैक्टिस जब कोई तूफान नहीं है. दिस इज प्रैक्टिस जब कोई तूफान नहीं चल रहा. अब आया तूफान, आए यहाँ से लोग या कोई सिचुएशन और किसी ने कुछ कह दिया, मुझे प्रैक्टिस हो गई है. देखो हम गाड़ी की ब्रेक कब चेक करते हैं, जब रोड पर कोई नहीं है, हम फास्ट चलाते चलाते तुरंत ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता है कि ब्रेक ठीक चलती है. चेकिंग की हुई है तो जब एक्सीडेंट के टाइम पर पहुंचे तो तुरंत ब्रेक लगाई, बच गए. लेकिन अगर ब्रेक पहले नहीं चेक की हुई है तो फिर उस टाइम तो लगाने की भी कोशिश की तो कहाँ की कहाँ गाड़ी पहुंच जाएगी.
1: अच्छा, जिसको ब्रेक लगानी आती है वही लगाएगा, नहीं तो एक्सीलेटर पर पैर दब जाता है. आई रिमेम्बर somebody जो गाड़ी सीख रहे थे और उन्होंने ब्रेक लगानी थी लेकिन गलती से एक्सीलेटर पे लगा और बहुत तेज चली गई.
0: दैट इज अ वेरी गुड वन. तो जब सिचुएशन आती है तो यहाँ स्टॉप करने के बजाय हमारा भी तो एक्सीलेटर ही चल जाता है और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स. सो दिस प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब जब यहाँ से सिचुएशन आती है ना, आई हैव प्रैक्टिस्ड, I am a positive being. I am a powerful being. This only will come if we have practiced many, many times. And agar hamara focus right hai, ki mujhe pehle apna dhyan rakhna hai. This is not being selfish. Kai baar log kehte hai, bahut selfish nahi hai.
1: And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain.
0: Kyunki jaise aapne kaha abhi, ki jab wo auron ke baare mein chilla rahe the, तब मैं उनकी मदद कर रही थी. क्यों? क्योंकि तब मैं ठीक थी. इसी तरह अगर वो मेरे बारे में भी शोर मचा रहे होंगे, अगर मैं ठीक होंगी तो मैं क्या कर सकूंगी, उनकी मदद कर सकूंगी.
1: आई कांट बिलीव दैट कि कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव कह रहा है या इतना कहता जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ. बट यस, इफ यू आर सेइंग
0: मदद करना मीन्स क्या करना,
1: उनकी हेल्प करना.
0: किस तरह से उनकी हेल्प? फर्स्ट चीज तो ये होगी कि मैं स्टेबल रहूंगी. क्योंकि जैसे ही मैं स्टेबल रही, नॉट हियर हियर, जैसे ही मैं यहाँ स्टेबल रही, इट्स ओके, इट्स ओके. वो कोई दर्द में है, आई एम नॉट कंज्यूमिंग द पेन, आई एम ओके, वो भी ठीक हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे ही हम अपना ध्यान रखते तो कौन सी एनर्जी वहाँ फ्लो होगी.
1: एक्चुअली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. जहाँ मैं स्टेबल हो गई, जहाँ उन्होंने देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. सी हिल से 5 sentences और शील से 5 sentences. उसके बाद वेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, द काइंड ऑफ रिएक्शन ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ही विल आल्सो टेक अ पॉज.
0: अभी क्या होता है, यहाँ से सिचुएशन आई, मैं भी अपसेट हुई, फिर मैं ये इनके लिए सिचुएशन बन जाती है, फिर ये अपसेट होते हैं, फिर ये मेरे लिए सिचुएशन बन जाते हैं, एंड द गेम जस्ट गोज ऑन.
1: वही तो मैं कह रही हूँ, उनका क्लोजेट खुला, साथ साथ मेरा भी तो खुलता है उसी वक्त. मेरे पास भी तो उतना लंबा वो
0: बॉक्स होता है. इट जस्ट नीड्स वन पर्सन. सिर्फ ये है कि कई बार हम कहते हैं, व्हाई डू आई हैव टू बी दैट वन पर्सन, दैट्स द क्वेश्चन. कि वो हर टाइम बोलते रहे आई हैव टू बी दैट पर्सन. यस, यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव योरसेल्फ, एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव द अदर पर्सन. क्यों हम क्लेम करते हैं ना, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल.
1: वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अगर हम रियलिटी में देखें तो कहीं ना कहीं हम कहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है.
0: सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, व्हेन वी ट्रैवल बाय एयर तो यू नो द सेफ्टी रेगुलेशंस जो बताए जाते हैं सबको, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक होता है कि इफ देयर इज अ टर्बुलेंस एंड एयर प्रेशर कम होगा, द ऑक्सीजन मास्क विल फॉल डाउन.
1: एंड वो
0: यू नो हम देखते हैं कि द ऑक्सीजन मास्क जस्ट कम्स डाउन. लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कि ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले अपने को लगाना है. बच्चों का ध्यान या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ध्यान बाद में रखना है, पहले अपने ऊपर लगाना है. अब जैसे ही हम ये सुनते हैं, विल बी से इजंट दैट बीइंग सेल्फिश, कि पहले ध्यान अपना रखना है. नो, बट इट्स लॉजिकल कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप दूसरे का ध्यान कैसे रख
1: पाएंगे? आप एक्चुअली खुद तो ब्रेथलेस है और दूसरे को मास्क कैसे लगा पाएंगे?
0: See, it's because physically हम उसको बहुत easily देख सकते हैं कि अगर I am not breathing properly, you know, I just have to create that scene in front of me कि if I am not breathing properly, I am getting suffocated, will I be able to put the oxygen mask? मेरा हाथ ही हिल जाएगा. In the process, दोनों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुरंत सबसे पहले अपना ध्यान रखें, आप कितने औरों का ध्यान रख पाएंगे उसके बाद। यही चीज़ हमें उस टाइम करनी है कि जैसे ही तूफान आएगा, आता है तूफान, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाना है? अपने आप को लगाना, बिकॉज आई कैन कैच द स्टॉर्म। यस, टर्बुलेंस हो रही है, सब आसपास एनर्जी हिल रही है, मुझे अपना ध्यान रखना है। एंड जैसे ही मैं अपना ध्यान रखा, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मैं अंदर सफोकेट नहीं हो रही, फिर मेरे पास मार्जिन है आपका ध्यान रखना। फिर रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट दिस सीन। आप अपने सामने एक सीन लेकर आए जब लास्ट आपके साथ किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ या वट एवर आर्ग्यूमेंट हुई, रिवाइंड दैट सीन एंड लुक एट योर सेल्फ रिस्पॉन्डिंग इन अनदर वे, नॉट जो आपने कल रिस्पॉन्ड किया था।
1: बच्चे के साथ ही अगर हम देखते हैं कि बच्चे ने ये कुछ खाना है जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं खाना है ये, और हम ये जो नो नो नो करते जाते हैं बिकॉज वी डूइंग इट फॉर दैट चाइल्ड ओनली, लेकिन वो जहाँ हमने किया कि नहीं, हम क्या कहें फिर, यहाँ खा लो।
0: नो, इट्स नॉट कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि समथिंग इज नॉट गुड फॉर हिम, कि आप करने दो, लेकिन यू नो द एनर्जी, आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, दैट इज द एनर्जी दैट गेट्स क्रिएटेड एट दैट टाइम। इट डजंट मीन आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो, नो वी आर नॉट सेइंग दैट, बिकॉज बच्चे को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना ये भी हमारी,
1: एक्चुअली हम एक बार फर्म हो जाए ना कि नहीं खाना है, लेकिन हम उसके साथ क्रिएट जो है, हम एक्चुअली गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, पांच चीज़ें और साथ में जोड़ते हैं, तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हर बार यही करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम चार पांच चीज़ें और जोड़ देते हैं,
0: तो एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम एक, क्योंकि हर सीन की एक एनर्जी होती है, बिकॉज वी सेड दिस इज ड्रामा, वी आर एक्टर्स एंड देर इज एन एनर्जी फ्लो। तो एक होता है डायलॉग, लेकिन एक होता है एनर्जी ऑफ दिस सीन। तो डायलॉग तो हमें जो हमें उस सीन के लिए राइट लगता कि नो यू हैव टू स्टडी और यू डोंट हैव टू गो डाउन टू प्ले वट एवर, लेकिन एनर्जी टर्ब्यूलेंस की जरूरत तो नहीं है ना हर सीन के अंदर, क्योंकि सीन तो हर थोड़ी देर के बाद सीन आने वाली है।
1: अच्छा, और वो तो करेगा ही, हम क्या कहते हैं कि वो फिर हमारे साथ नाराज हो जाता है या वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो उसका पर्सपेक्टिव।
0: या लेकिन उसका वो पर्सपेक्टिव भी चेंज करने के इंस्ट्रूमेंट कौन बन सकता है?
1: हम बन सकते,
0: यू नो, बिकॉज यू आर इन पेन, सपोज यू आर द चाइल्ड एंड आई एम टेलिंग यू कि नहीं, बट आप फिर भी रिएक्ट, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अगर एक बार प्यार से बोला आप तुरंत उसी एक बार में ठीक हो जाओ? इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। आप दर्द में हैं, मेरे एक बार ठीक बोलने से नहीं आप चेंज हो जाएंगे। गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कीप ऑन गिविंग द राइट एनर्जी, क्योंकि द सोल जो सामने है आपके वो दर्द में है। आपका जो रोल है सिर्फ उसको खाना खिलाना पढ़ाना, वो रोल नहीं है। आपका रोल है उस आत्मा को एम्पावर करना, ये है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाना तो खिला ही देंगे, पढ़ा तो देंगे, लेकिन उस आत्मा को दर्द से निकाल कर एम्पावर करना, ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: या तो हम उसे बिगाड़ देते हैं या हम उसको दर्द में ले जाते हैं। वेरी ट्रू।
0: तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ठीक है, बट मैं अगर आपके ऊपर इतना जोर जोर से चलाएं तो आप तो और दर्द में चले जाएंगे, फिर आप भी रिएक्ट करें, फिर मैं भी करूँ, सो वॉट इज हैपनिंग, बोथ ऑफ अस गोइंग इन पेन। तो माई फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हियर एंड टेक केयर ऑफ यू फर्स्ट हियर, मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप टू एम्पावर द सोल। आप आत्मा को एम्पावर कर दो, वो राइट डिसीजंस तो अपने आप ही ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे, या एटलीस्ट वो सक्षम होंगे हमारी बात सुनकर उसको, यू नो, फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसे डिप्लीट होते जाते हैं तब उनको हमारी कोई भी बात कैसे अच्छी लगेगी?
1: एक्चुअली यही हो रहा था, हमें पता भी तो नहीं चल रहा था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, जिस तरह से आज हमारे सामने बात आई है, खासकर जब भी कोई सिचुएशन आती है, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं रिश्तों में जहाँ सिचुएशंस नहीं हैं, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, ऐसा लगता है कि दिस नो कनेक्टिविटी बनती नहीं है, हमारी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। सो वो क्या है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हो सकता है कोई बात आपके मन में हो आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई, या अदरवाइज जो हम सीरीज कर रहे हैं, या जीवन से जुड़ी हुई, आपका हम स्वागत करते हैं। आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि पूरी श्रृंखला, पूरा प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा मंच है जो आप ही के लिए है। हम आप साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिंदगी को किस नज़रिए से देखना है। तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@pkmail.org।

अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे, रिश्ते को नए नजरिए से देखेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: इतिहास से, भूगोल से,
1: समाज से, संस्कार से,
0: आधुनिकता से और विचार से,
1: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
0: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
2: अतुल्य भारत।
1: चलिए आपको बताते हैं
0: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
1: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
0: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि किसी भी देश में कार से की गई लॉन्गेस्ट जर्नी यानी सबसे लंबी यात्रा 31,798.2 किलोमीटर है। यह यात्रा भारत में ही की गई है और इसे करने वाले 3 भारतीय हैं जिनके नाम हैं आतिफ अब्दुल्ला, शीतल श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव। इस यात्रा को इन तीनों भारतीयों ने 30 अप्रैल 2015 से लेकर 7 जून 2015 तक संपन्न किया जिसे वे ड्राइव अगेंस्ट कैंसर कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करना था।
0: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
1: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
0: जय भारत।
4: भारत अनोखा राग है।
5: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार पुणे, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं पुणे का अपना फेवरेट स्टेशन रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास गेस्ट है, डॉक्टर श्रद्धा कामपरिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पिंपरी चिंचवर साइंस पार्क एंड प्लेनेटेरियम। शी इज अ डॉक्टरेट इन वाटर ट्रीटमेंट फ्रॉम सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी पुणे, MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम नीम्स मुंबई। शी इज अ रिसर्चर, साइंस कम्युनिकेटर एज वेल एक्सपीरियंस एकेडेमिशियन। शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एशिया पैसिफिक रीजन। तो आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर श्रद्धा जी, सबसे पहले हम आपकी एक अमेजिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में आने और आज पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क की कमान संभालने तक का आपका सफर कैसा रहा, आप क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
4: सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज मुझे सुन रहे हैं। और रही बात आपके प्रश्न की, सो ये जो साइंस की जर्नी है वो सीधे मेरे फादर से स्टार्ट हुई थी जो एजुकेशन फील्ड में थे, और वहीं से मुझे बुक्स के थ्रू काफी रुचि आई। देन मैंने अपना केमिस्ट्री का जर्नी चालू किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से, फिर मेरा आना हुआ पुणे, और उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई विद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। एंड देन मेरा ख्याल था कि क्यों ना हम रिसर्च किया जाए, कुछ नई चीजें खोजी जाए और जो सोसाइटी को हेल्प की जाए। इस तरीके से मेरी जर्नी PhD में चालू हुई जो सिम्बायसिस से हुई। उसके आगे मेरा था कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट शुड रीच टू सोसाइटी, इट शुड बी रियली लिंक्ड विद इट, सो दैट वाज मेन एम। एंड उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी कि उसको मार्केट कैसे किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे MBA भी करना चाहिए, और इस बीच लगातार मैं बच्चों के संपर्क में रही हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, ये सभी जो है मैं उनके साथ काम करती आई हूँ। इसके अलावा मेरी रुचि थी कि मैं कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन करती रहूं, सांस्कृतिक, कल्चरल और हैंड्स ऑन जो है वो मेरा काफी फोटे था। तो मुझे मौका मिला पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क में ज्वाइन करने का, और आज जो जितने तमाम बच्चे, बड़े बूढ़े सब आते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी लेके आते हैं साइंस पार्क में, और हम सभी कोशिश करते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जाए और साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप किया जाए. सो एक छोटी सी जर्नी है और कुछ कोशिश है जो सोसाइटी तक पहुंच सके और इस जिंदगी जो काफी उलझनों से भरी हुई है, डिस्ट्रैक्शंस है, उसमें हम साइंस का उपयोग करके कुछ ना कुछ नया और अपनी जिंदगी आसान कर सकते.
5: बहुत खूब मैम, आपकी जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब छोटे से लेके बड़ों तक. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. जब हम साइंस का समाज में योगदान की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग साइंस ने एक नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ को सबसे ज्यादा कैसे चेंज किया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज सभी के दिमाग में कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है उससे हमारी जिंदगी में चेंज क्या आया है. आज हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और मेरी आवाज शायद मीलों तक पहुंचेगी, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी सुनी जाएगी. तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है. साइंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई वुड से, एंड हमारी जिंदगी को उसने बेहतर, फास्ट और सुरक्षित बनाया है और हम एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं. वी आर मोर कनेक्टेड. सो फ्रॉम स्मार्टफोन्स इन अवर हैंड्स और टू द मेडिसिंस दैट सेव्स अवर लाइफ. आज हम ब्लिंकिट करते हैं, जेप्टो करते हैं, हमारी चीजें हमारे साथ में होती हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल सी जिंदगी को काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाती है. प्लस ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टेक्नोलॉजी बट इट्स ह्यूमन पॉसिबिलिटी. जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो आज हम करने की क्षमता रखते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से. सो साइंस हैज ब्रोकन बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड नॉलेज. सो गिवन एन ऑर्डिनरी पर्सन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दैट वॉज अनइमेजिनेबल. हम सोच भी नहीं सकते थे, इट वॉज अनइमेजिनेबल. वो सारी चीजें हम कर रहे हैं. सो इट डज नॉट चेंज हाउ वी लिव, हम कैसे जी रहे हैं वो चेंज नहीं करती. बट हम ये सोच सकते हैं कि हम जो चाहते थे, करना सोचते थे, जो नहीं भी हो सकता वो भी हम आज कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट हैज बीन चेंज्ड द ऑर्डिनरी लाइफ बेसिकली.
5: मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंस की वजह से हमारा लाइफ काफी इजी भी हो चुका है.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
5: यस, बहुत खूब मैम. तो वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का, तो डॉक्टर श्रद्धा जी आप इस अवसर पर कौन सा एक गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
4: सिंस हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली साइंस पार्क में हमारे काफी बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, तो उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी मैं ये. सभी ने सुना होगा ये गाना, बच्चे

0: इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के टाइम में साइंस और मेडिकल सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो प्रोग्रेस की है, जो काफी क्षेत्र में भी है, उस पर आपका क्या विचार है?
1: When we talk about health care and medical sector, काफी लोगों ने सुना होगा कि हम जो बीमारियों से लड़ते हैं, स्पेशली कैंसर जो आज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है विमेन्स में भी, उसका सोल्यूशन नहीं था। उसका सॉल्यूशंस के लिए भी हम बाहर देश के लिए राह तकते थे, बाहर देश में जो डॉक्टर्स हैं उनको हम इंडिया में बुलाते थे। तो आज की जो दुनिया है, आज का टाइम जो है, हम वीडियो कॉल पे भी हम कंसल्टेशन लेते हैं और एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये हेल्थ सेक्टर जो हमारा इंडिया में है अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। आज काफी ज्यादा सुविधाएं हमको पहुंचाई जा चुकी हैं, प्लस मेडिकल सेक्टर और स्पेशली वेमेन्स के बारे में बात करूंगी मैं, जो काफी ज्यादा पीछे होती थी और काफी ज्यादा आगे भी नहीं आती थी, उनको समस्याएं भी होती थी। आज काफी ज्यादा कंसल्टेशन अवेयरनेस के कारण जो हम घर तक पहुंच रहे हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं अपनी तकलीफों के बारे में। और मुझे इसी हिसाब से लगता है कि काफी तरक्की की है हमने और आगे भी हम करते जाएंगे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो काफी बड़ी हो जाती है बाद में जाके, राइट फ्रॉम हाइजीन, राइट फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स, सो इट वाज अ ट्रॉमा थिंग जो आज की डेट पे नहीं है, इट्स कॉमन थिंग।
0: कैसे बताया जाए,
1: बिल्कुल कैसे बताया जाए, छुपाते थे लोग, बात करने की जरूरत नहीं होती थी। तो दिस इज फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शंस आल्सो नाउ, पहले जो है वो एडिक्शन की बात नहीं होती थी, लोग सोचते थे कि अरे बताएंगे हमको सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे। तीसरी चीज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, पहले मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोग बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सोचते थे कि या तो हमको कोई समझेगा कि पागल हो गया है, या तो कोई सोचेगा कुछ गंभीर बीमारी होगी, तो एक ट्रॉमा था वो। बट आज की डेट में मेरे ख्याल से मेडिकल सेक्टर ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस सारे डिलेमास को लोगों के माइंड से हटा सकता है और हटा चुका है, और लोग संपर्क कर रहे हैं हमारे मेडिकल प्रोफेशनल से इन सब चीजों के लिए।
0: तो कहीं ना कहीं वो सामने आके अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं।
1: यस, वेरी ट्रू,
0: वेरी नाइस मैम। पिंपरी चिंचवड़ साइंस बाग बच्चों में प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देता है, जैसे ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस को दूर करके सोसाइटी में एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट क्रिएट करने में, ऐसे साइंस पार्क का क्या रोल रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे?
1: जब हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस और विज्ञान हम हिंदी में कहते हैं, बात करता है तथ्यों की, बात करता है फैक्ट्स की, और वो बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं कहता। तो साइंस पार्क का मेजर रोल हमारे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कॉलर्स हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मिथ्स जो हैं सोसाइटीज में या जो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो मिथ्स दूर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग सा शो लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का शो।
0: ओके,
1: तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री है, टेम्परेचर का खेल है, कुछ दो कॉम्बिनेशंस किया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। उस तरीके से हम बता दें कि कुछ मैजिक नहीं होता है, देयर इज नो मैजिक काइंड ऑफ वर्ड, देयर इज एवरीथिंग साइंस बिहाइंड इट। कोई ऊपर से चीज नीचे गिर रही है, अचानक से पानी यू नो मीठा हो गया, या कुछ भी चीजें हैं कि फॉग बन रहा है तो किस तरीके से बन
0: रहा है,
1: देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, दैट देयर इज अ साइंस, देयर इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर, यू नो वी सी कि मटीरियल्स कैसे होते हैं, अलग अलग मटीरियल्स के साथ खेल सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हमारे साइंस पार्क में हम देते हैं वो बताता है कि इट इज ऑल साइंस, नथिंग इज देयर विदाउट अ रीजन, कुछ भी एग्जिस्टेंस जो है वो ऐसे ही नहीं है, मैजिक नहीं है, कोई भी जो हम ब्लाइंड फेस या सुपरस्टिशंस की बात करते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ उसी से अनेबल्ड हुआ है,
0: फैक्ट के ऊपर ही डिपेंड, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में उसमें इंटरेस्ट भी आता होगा।
1: बिल्कुल, और दे डेवलप सम न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो कि हम ये बना के दिखाते हैं। तो इन आवर साइंस फेयर्स आल्सो वी डू सो मेनी थिंग्स, तो 3D शोज हो गए, तो टेक्नोलॉजी हम बताते हैं कि 2D और 3D में क्या फर्क है, ये कुछ मैजिक नहीं है अगेन।
0: करेक्ट।
1: तो ये सारी चीजें हम साइंस पार्क, इवन एनर्जी हो गया, फन साइंस गैलरी हो गया, ऑटोमोबाइल, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसमें हम बताते हैं कि साइंस इज देयर।

0: needs to be done, and therefore Science Park plays a vital role in the field of education, especially the students. They are rightly made to think that what is right, what is wrong, and how to analyze, how to evaluate things. That is very important.
1: Because कहीं ना कहीं जैसा हम student को पढ़ाते हैं वैसे ही वो catch करते हैं. Because students are the learning process. They comes in the learner. So हम जैसा उनको बताएंगे वैसा वो adopt करेंगे. तो कहीं ना कहीं आपकी जो team है और आपका जो science park है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा role play कर रहा है. तो चलते हैं दूसरे सॉन्ग की ओर. तो आपकी एक सुरीली आवाज में मैम दूसरा गाना हो जाए, हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे दूसरा गाना.
0: सिंस हम बात कर रहे हैं कि हम सब साथ में काम कर रहे हैं, और एक और बात करना चाहूंगी कि सिंस साइंस पार्क की बात कर रहे थे तो स्ट्रीम हम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. ये हमने साइंस पार्क में अडॉप्ट किया हुआ है, तो सारी चीजें हम साथ में लेके चलते हैं. तो उसी के ऊपर एक गाना है

0: तो जैसे कि हमने अभी अभी बात की कि लर्निंग प्रोसेस, जो स्टूडेंट है लर्निंग प्रोसेस में, सो इसी से ही जुड़कर हम आगे का क्वेश्चन कहना चाहेंगे कि एजुकेशन में फील्ड में स्पेशली रूरल और जो अंडर प्रिविलेज एरिया के बच्चों हैं, तो उस बच्चों तक में साइंस के वंडर्स को आसानी से पहुंचाने तक के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से स्टेप्स हम उठा सकते हैं, जो कि ये साइंस की भाषा है और साइंस के वंडर्स है, जो हम रूरल और अंडर प्रिविलेज बच्चों तक पहुँचा सके?
1: करेक्ट, ये एक सोसाइटी को बांधता है साइंस। तो जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज का या अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स का या जो एरियाज हैं, आई टेक द एग्जांपल ऑफ साइंस पार्क इटसेल्फ, सिंस हम वो कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑल द रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड सबसे बड़ी बात जो हम सबके सामने आई कि वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी शाय हैं, वो अपनी बात आराम से कह नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उस गैप को फिल करने की जो जवाबदारी है वो हमने लेके रखी है कि रूरल बच्चों तक हम भी पहुँचे। तो एक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउटरीच प्रोग्राम्स का होता है, जिसमें हम और हमारी टीम जो है एग्जिबिट्स लेके, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेके, एक्सपेरिमेंट्स लेके, इनफ्लैटेबल डोम है, हमने बात की है दिन में तारे, तो क्या दिन में तारे देखे जा सकते हैं? तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है अगेन इनफ्लैटेबल डोम, कि वो नहीं आ सकते तो हम उन तक पहुँचते हैं और हम रूरल एरिया तक जाते हैं, बच्चों को समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ाते कैसे हैं उन बच्चों को।
0: करेक्ट, वेरी ट्रू,
1: क्योंकि हर बच्चे की समझने की जो क्षमता है वो अलग है।
0: right.
1: और स्पेशली जब हम रूरल एरियाज और अंडर प्रिविलेज्ड की बात करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जो वो कह नहीं पाते, वो बता नहीं पाते। तो उस समय हमारा कर्तव्य है और हमारा एक पर्पस है, विजन है कि उनसे फ्रेंडली होके उनको समझ के कि वो किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उनके लेवल पे जाके हम उनको एक्सपेरिमेंट, उनकी स्टोरी टेल करते हैं ताकि वो याद रखे, इंस्पायर करते हैं कि वो कुछ बन सके। और सिमिलरली जब वो हमारे यहाँ आते हैं साइंस पार्क में स्पेशली, तो हम एक इन्वायरमेंट से उनको अवगत कराते हैं कि ऐसा भी इन्वायरमेंट होता है, इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं। तो जो क्यूरियोसिटी है उनकी, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगी। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ कुछ रूरल एरियाज के बच्चे आए हुए थे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आए हुए थे, वो जानने के बहुत इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स क्यूरेट करते हैं जो कि उन बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल इन द सेंस कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनके टीचर्स हैं, सब कुछ है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है और इन बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हम उनके तरीके से एडजस्ट होके अपग्रेड हो सके बोलना चाहिए, अपग्रेड होते हैं, अपडेट होते हैं और उनके लेवल से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लस उनको लिंक करते हैं आज की नई टेक्नोलॉजी से, ताकि वो भी कहीं पीछे ना रह जाएं और इंस्पायर हो के वो कुछ आगे और नया कुछ कर सके। हाल एक अभी जो नेशनल साइंस डे हुआ था हमारा 2026 में, काफी बच्चे आए थे, हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, वेदर यूनिट्स बनाए हुए थे यहाँ पे, वेदर मॉनिटरिंग यूनिट्स कल्पक घर के थ्रू एंड साइंस पार्क। सो वहाँ पे हमने काफ़ी अमाउंट में, आई वुड से काफ़ी मात्रा में क्यूरियस माइंड्स को देखा, इनोवेटिव माइंड्स को देखा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है हम ऑफर करते हैं सारे रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को भी, जो हम चाहते हैं कि वो भी एक साथ कॉम्पीट करें, एक साथ पढ़ें और हेल्दी कॉम्पिटिशन में आ जाए। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से,
0: मतलब कहीं ना कहीं जैसे इन अंडर प्रिविलेज बच्चों को है तो उनको उन्हीं की भाषा से अगर समझा जाए तो हो सकता है इसमें से ही साइंटिस्ट निकले।
1: बिल्कुल निकलेंगे, मुझे आशा है कि इंडिया में ऐसे कई साइंटिस्ट आने वाले हैं। और आजकल के स्पेशली जेन अल्फा और जेन जी जब हम बोलते हैं, दे आर वेरी फास्ट।
0: यस, वेरी ट्रू।
1: तो उनको हमको ज्यादा जरूरत नहीं है नर्चर करने की, बस उनको सही डायरेक्शन, सही एग्जांपल सेट करने की जरूरत है, जो शायद हम कोशिश कर रहे हैं।
0: या जरूर जरूर पूरा होगा आपका सपना भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन और एआई, जैसा का आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई के इस इरा में सोसाइटी की सेफ्टी और प्राइवेसी को मेंटेन रखना कितना बड़ा चैलेंज है, आपको क्या लगता है?
1: एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी से डिजिटल रिवॉल्यूशन, AI in our hands. आज की डेट में हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, ChatGPT, OpenAI, Gemini, Claude, various options आते हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं सोसाइटी की सेफ्टी की, तो सबसे पहले तो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी इन अ सैनिटाइज्ड वे.
0: करेक्ट.
1: इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से यूटिलाइज करनी है ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. तो ये सेंसिटाइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्लस हम बात कर रहे हैं कि AI है, AI कैन बी यूज्ड एज यू नो एडवांटेजियस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और साथ में वो डिस्ट्रक्शन में भी यूज हो सकता है. तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम बात करते हैं कि AI की, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस पार्क्स हैं, साइंस सेंटर्स हैं, आई विल टेक अगेन आवर एग्जांपल पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क. तो हमने PCCOE टीम जो है अंडर गाइडेंस ऑफ आवर फाउंडर डायरेक्टर श्री प्रवीण तुपे जी, उनके साथ उनका विजन था कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो बच्चों तक तो पहुंच गई है, उनके मोबाइल सेट्स में है, बट उनको सही तरीके से सिखाना जरूरी
0: है, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये उनका नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ दे आर यूजिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एज वेल.
1: राइट. और उनके पास इन्फॉर्मेशन की भंडार है, कहीं से भी फेच कर सकते हैं, बट उसमें उनकी डेटा प्राइवेसी लीक होती है. तो हमने कुछ मॉड्यूल्स डेवलप किए हुए हैं बेस्ड ऑन AI, छोटे बच्चों के लिए भी और कुछ बड़े बच्चों के लिए. तो हम सिखाते हैं कि AI यूज करना है आपको, AI को हेल्पिंग हैंड की तरह लीजिए.
0: करेक्ट.
1: AI हमसे सीखता है.
0: करेक्ट.
1: तो हम उसके टीचर बने ना कि वो हमारा टीचर बने. तो ये हम सिखाते हैं कि कैसे सही तरीके से AI का यूसेज किया जाए.
0: कहीं ना कहीं हमें AI को हमें खुद भी ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके वो आंसर देता है.
1: बिल्कुल. जो AI में आज की डेट में आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ परचेज करते हैं, वो सारा AI ले रहा है. तो जब भी नेक्स्ट आपको कोई सजेशंस आते हैं तो वो आपके फीडबैक से ही आए हैं. तो वो अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है, बट वो हमारे दिमाग से कर रहा है. तो हमको उससे दो लेवल आगे चलना होगा. तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. अपने खुद के जो पर्सनल डेटा है वो कभी भी हमको एंटर नहीं करना चाहिए. सारी चीजें हम बताते हैं. तो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन इट. AI इज चेंजिंग द होल वर्ल्ड एरा, बट एट द सेम टाइम AI शुड बी cautiously and wisely used.
0: Yes, very true. We need to very aware about it.
1: Right.
0: Thank you so much. तो चलिए श्रोतागणों, वक्त हो चला है एक और सॉन्ग का, तो सुनते हैं हम आपकी सुरीली आवाज में.

0: अभी हम आगे बढ़ते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें साइंस किस तरह हमारी हेल्प कर रहा है?
1: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी से साइंस इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे हवा हो, हम एक कहावत बोलते हैं, भूजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा. सो इट्स लाइक अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, जो इट्स वेरी वाइटल कॉम्पोनेंट. तो जो भी एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें ही हमारे आगे जो लाइफ है उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है, एनर्जी है. सो साइंस जो है, इट इज बिकॉज ऑफ, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, पहले तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी, फिर धीरे बिजली आई, देन वी आर अगेन स्ट्रगलिंग कि हमारे तो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो वी आर कमिंग विद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. वी केम टू सोलर एनर्जी, वी केम टू विंड एनर्जी, वी आर कमिंग टू वेव एनर्जी. तो देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स व्हिच इज हैपनिंग थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सिमिलरली व्हेन वी से, यू नो, मोबाइल फोन्स कनेक्टिविटी, सो इनिशियली अगर आप देखेंगे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ एक फोन का, सबसे पहले हम STD बूथ्स में, उसके पहले भी हम तार करते थे. उसके पहले हम चिट्ठी लिखते थे. तार आया, देन फिर पेजर आया आपका. मैं कुछ हो सकता है बूथ में भूल भी रही होंगी, रेडियो आए, फिर हम एक दूसरे संपर्क करने के लिए STD बूथ्स आए. किसी के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, घर में ट्रंक कॉल्स होते थे. तो ये सारे डेवलपमेंट हुए, रेवोल्यूशन हुआ है एंड इन एवरी फील्ड, राइट फ्रॉम मेडिकल सेक्टर, राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट फ्रॉम यू नो एनर्जी सेक्टर. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, सो दीज डेवलपमेंट्स कैन बी सीन इन साइंस पार्क ऑल्सो. तो वो हम बच्चों को बताते हैं वहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्पेशली 17th जो है SDG 17, जिसमें हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर गोल्स. सो सोसाइटी शुड कम टुगेदर. It's not only about an individual, it's not only about the institution, it's about society working together, right from all the stakeholders like students, teachers, parents, community, industries, government, non-government sectors, NGOs. So all these are very important to work together, and we are very fortunate, I would say, ki aise kuch centers hain, jaise ki maine science center ki baat ki, Pimpri-Chinchwad mein science park ki bhi baat ki, yahan pe hum sab miljul ke kaam karte hain. So kabhi koi ek sochta hai ki is direction mein jana hai, ho sakta hai wo direction galat ho, but char log ek hi jagah sochte hain, brainstorming hoti hai, to usse kuch na kuch acha milta hai. To abhi humne ek community engagement program chalu kiya hai, उसमें भी हम वही बात करते हैं कि हम जो आज के बच्चे हैं उनसे ही फीडबैक लेते हैं कि क्या चाहिए, और उनका फीडबैक बेस होता है विजिटर्स से. तो विजिटर्स से वो बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लगता है. वी फाइंड आउट प्रोज एंड कॉन्स एंड वी ट्राई टू डेवलप इट. सो मुझे लगता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट फ्रॉम वाटर, सो वी हैव अ डेडिकेटेड गैलरी ऑन माई रिवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उस पर भी हमने काफी फोकस किया है कि आसपास की नदियों को इंसान भूल जाता है. जब आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल नाउ, हमारे घरों में पानी आता है, जिस दिन पानी नहीं आता सुबह, सबको फिक्र होने लगती है. सबसे पहले हम मोबाइल उठा के सोसाइटी के ग्रुप में डालते हैं, पानी क्यों नहीं आया.
0: राइट.
1: प्लम्बर की बात करते हैं, सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं, और फिर हो हल्ला मचता है. फिर पानी आ जाता है थोड़ी देर बाद, और हम फिर भूल जाते हैं. वही टैप खुला रहता है, वही हम अनकॉशियसली पानी यूज करते हैं. फिर जब एक आध दो हफ्ते बाद फिर वही सेम चीजें होती हैं, तो फिर हमको याद आ जाती है. तो ये रिकॉल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. एंड जब हमको कुछ नहीं मिलेगा, तभी आपको याद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन है, दे आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ अस.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: तो आज की डेट में हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एक्चुअली में आज की डेट में हमने प्रैक्टिस करना है.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: सिमिलरली प्लास्टिक ड्रिवन कैंपस बोलते हैं, प्लास्टिक फ्री कैंपस ड्राइव बोलते हैं जिसको हम. तो पहले तो बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज हुआ था, जिसमें अगर आप मानेंगे नहीं, जो जमीन की लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर प्लास्टिक की लेयर होती जा रही है, क्योंकि इतना कचरा हम जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, जमा कर चुके हैं. तो इस टाइप की ड्राइव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे भी हमने हमारे यहाँ पिंपरी-चिंचवड़ साइंस पार्क में एक प्लास्टिक फ्री कैंपस ड्राइव करके रखा हुआ है शुरू, जिसमें हम कोशिश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि प्लास्टिक ना कम से कम यूज करें, ना यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अर्थ को ही नहीं डिस्ट्रॉय कर रही बट हमारे में लाइफ को भी हार्म कर रही है. माइक्रोप्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं. इट्स वेरी मच अफेक्टिंग. वेरियस रिसर्चेस हैज बीन शोन. सो इस तरीके से एनवायरमेंट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ साइंस. साइंस एंड एनवायरमेंट इज लाइक लिंक्ड.
0: देयर इज अ कोरिलेशन.
1: यस, हैवीली इट इज देयर. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स जो है वो कर सकते हैं. प्लस अवेयरनेस. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in achieving our goals. 2050 का goal हम बात करते हैं विकसित भारत का, तो उसके लिए ये सब चीजें काफी जरूरी हैं. 2047 की बात करते हैं especially, तो 2050 तक पहुंचने तक ये goal जो है permanent हो जाना चाहिए हमारा कि
0: correct.
1: बिल्कुल अपने अचीव कर लिया है सारे टारगेट्स. कार्बन फुटप्रिंट हो, वाटर फुटप्रिंट हो, तो यूजिंग अवर ओन रिसोर्सेस की जो हमारे आस पास के रिसोर्सेज है उसी का यूज करके हम कैसे रीयूज रिसाइकल. सो जो पूरी जो साइकल्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो शायद हम बिल्कुल पहुंच सकेंगे.
0: यस, वेरी ट्रू. तो बहुत अच्छा आपने बताया कि हम इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. तो फिर से एक बार वक्त हो चला है एक सुंदर से आपकी सुरीली आवाज में सॉन्ग गाने का. तो मैम प्लीज.
1: ओके, सो सिंस इट इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड नाउअडेज इट्स लाइक लॉट ऑफ पोल्यूशन, स्ट्रेस इज देयर, एंड सो एक गाना उसी में डेडिकेटेड कर लेते हैं हम लोग. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2050 तक हमारा गोल अचीव कर रहे तो जीना इसी का नाम है, हम ऑब्वियसली कह सकते हैं
1: बिल्कुल
0: तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है कि यंगस्टर, हमारे लर्नर स्टूडेंट जिसके बारे में हमने बात की है, तो अक्सर यंगस्टर में कहीं ना कहीं साइंस के बारे में एक डर सा रहता है, एक फोबिया सा रहता है, जो आप अपनी संस्था के बारे में किस तरीके से थॉट आप देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को, जो ये डर कैसे दूर कर सके या फोबिया कैसे दूर कर सके?
1: अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन लेने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। हमारा जो टैग है पिंपरी चिंपरी साइंस पार्क का, लर्निंग साइंस इज फन, तो जब कोई बच्चा या विजिटर या पार्टिसिपेंट, अभी मैं एक और चीज बात करती, हम विजिटर नहीं बोलना चाहते, हम कहना चाहते हैं वो पार्टिसिपेंट है।
0: Yes.
1: कि जैसे ही वो हमारे गेट से आते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है कि ये हम एक कोई क्लासरूम में नहीं आए कि मुझे कुछ यू नो टाइम रिस्ट्रिक्टेड है कि मुझे यही पढ़ना होगा, ये खेलना होगा, यही होमवर्क करना होगा, नहीं, इट्स अ फ्री ओपन प्ले ग्राउंड। वी मेक श्योर कि जो बच्चा आ रहा है, पार्टिसिपेंट आ रहा है, स्कूल के बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग आते हैं, दे ट्रेनर्स आते हैं, उनको एक फ्री ग्राउंड मिले। और सबसे पहले हम यही ब्रीफिंग के दौरान हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या गैलरीज हैं, क्या है, उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। और सबके डर में मन में ये रहता है कि मैथ्स वेरी टफ, फिजिक्स वेरी टफ, केमिस्ट्री माइट बी वेरी टफ, तो ये फोबिया हम हटाने की कोशिश करते हैं कि टफ कुछ नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो आपको खोजने की देर है। तो ये जो प्लेग्राउंड आपको मिला है साइंस पार्क का, उसमें आप आइए, खोजिए, खुद को खोजिए कि आपको क्या इंस्पायर करता है, आपको क्या इंटरेस्ट करता है। तो जब कोई बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो हम उसको छोड़ते हैं कि ओके ऑटोमोबाइल में जा सकते हो आप, कोई भी गैलरी आप चुनिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्टेड टाइम नहीं है कि आपको एक घंटा ऑटोमोबाइल में रहना है, एक घंटा क्लाइमेट चेंज में रहना है, या एक घंटा फन साइंस में रहना है। तो फन साइंस की बात कर लेती हूँ, फन साइंस हमने नाम ही इसलिए रखा हुआ है कि साइंस इज फन, जो हम बड़े बड़े फॉर्मूलेस लिखते हैं,
0: करेक्ट,
1: याद करना पड़ता है,
0: रटना पड़ता है,
1: तो वो रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास एग्जिबिट है जो हमने रिसेप्शन एरिया में रखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ पे है, पांच बॉल हमने लगाई हुई है, उसको जस्ट ब्लो करना है, वो बच्चों को हम स्टोरी टेल के माध्यम से बताते हैं और बच्चे काफी आसानी समझ जाते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन का भी हमारे पास ऐसा ही एग्जिबिट्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को, वो काफी आसानी से समझते हैं और वो हमेशा याद रखते हैं। तो ये जो फोबिया है, इट इज ओनली बिकॉज, क्योंकि हम रटते हैं,
0: yes.
1: हम समझना नहीं चाहते,
0: और वो क्षणिक भी होता है मैम, कहीं
1: बिल्कुल क्षणिक,
0: मतलब वो भूल जाते हैं
1: बिल्कुल, तो वो क्यों, क्योंकि वो क्रैम करते हैं, याद करते हैं। अगर आप कोई भी चीज समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि थ्रू आवर एग्जिबिट्स, जो हमारे मोर देन 325 एग्जिबिट्स हैं हमारे पास, जो कि इंडोर एंड आउटडोर में है, उसमें सारे एग्जिबिट्स में एक स्टोरी टेल होता है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है, एंगेजिंग होता है, जिसमें वो खुद टच करके करके देखता है और फिर समझता है कि अच्छा ये तो इसके कारण हो रहा है। तो काफी सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं और वो रिलेट करते हैं, अरे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये तो हमने इतना बड़ा इक्वेशन पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, हमको समझ ही नहीं है। वो एक उंगली पे एक बैलेंस करने का हमारे पास एक छोटा सा हैंडमेड एग्जिबिट है, वुड से उनको वैसे ही समझ में आता था कि उनके वेट्स डिवाइड करो तो कैसे होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं जिसमें हम चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि फोबिया निकल जाए, और हम लिंक करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ताकि आपने जो सही कहा कि क्षणिक होता है,
0: क्षणिक होता है,
1: भूल जाते हैं, तो वो जब रियल लाइफ से जुड़ जाता है तब वो भूला
0: नहीं जाता। कहीं ना कहीं हम ऐसा भी देखते हैं कि जो बच्चों को हम स्टोरी टेलिंग से जो सिखाते हैं ना, दैट इज लॉन्ग टर्म लर्निंग होता है वो। और अभी NAP 2020 ने भी वही निकाला है ना, फन विथ लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल थ्रू लर्निंग। सो ऐसे करने से क्या होता है ना, स्टूडेंट का फोबिया है, जो हमारी इस जनरेशन के बच्चे हैं जो AI में जी रहे हैं, तो उनको ये अगर करेंगे इससे सीखेंगे तो उनको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दे रही है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी।
1: नहीं नहीं, हमारी कोशिश वही है कि बच्चों को यहाँ पे आए, एक फ्री प्लेग्राउंड मिले, कोई बैरियर ना हो वॉल्स का, कोई बैरियर ना हो टाइम का, और वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट जो है वो चुन सके, समझ सके, टाइम दे सके, और उससे फोबिया निकलेगा, जरूर निकलेगा,
0: डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि वो उसमें वो इंटरेस्ट आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो फोबिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसका. वेरी नाइस मैम. देन हमारा अब हम लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा एक लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैम. जैसे कि हम बात करते हैं समाज में साइंस स्पिरिचुअलिटी, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या योगदान है? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ये एक काफी कठिन प्रश्न है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, और जिसका मेरे ख्याल से आंसर सरल है. समझना थोड़ा मुश्किल लोगों के लिए होता है कि यू नो डिफरेंट है या सेम है, सप्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. हमारा जो यूनिवर्स है, उसके फिनोमेना है, वो कैसे वर्क करता है. बट कैसे समझता है साइंस? थ्रू फैक्ट्स, एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजन. तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, एविडेंस बेस्ड होता है. वेयर एज अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो वो एक्सप्लोर करता है कि हम कौन है, हु आर वी एंड हाउ शुड वी लिव. बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ. रिफ्लेक्शन की बात करता है, योग का की बात करता है, जो हमारे प्राचीन कला से चलती आ रही है, प्राचीन काल से, आई वुड से, एंड मेडिटेशन की बात करता है. सो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड से कि बोथ कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बैलेंस लाइफ. बोथ, साइंस सपोर्ट्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू एविडेंस बेस्ड नॉलेज बेसिकली. वाइल्ड प्रैक्टिसेस जो हम स्पिरिचुअलिटी में भी कम करते हैं, सच एज मेडिटेशन, देन योगा कैन स्ट्रेंथन फोकस. हमारा फोकस जो है वो काफी बढ़ जाता है, काम हो जाते हैं हम, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, एंड वी आर मोर सेल्फ अवेयर्ड. तो दैट इज वॉट, एंड आई फील टूगेदर दे कैन इंस्पायर अस टू रिस्पेक्ट नेचर. क्योंकि जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आसपास की जो चीजें हैं, नेचर है, उसको हम रिस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं. हम रिसोर्सेज को वाइसली यूज करना चालू कर देते हैं. हम अपनी लाइफ को केयर करना चालू कर देते हैं, एंड वी कल्टिवेट अ हेल्दियर माइंड, हेल्दी आई वुड से. सो साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. So a balanced life can be learned from both
0: the things.
1: So this is what I would like to say.
0: Yes, yes, very true, ma'am. जैसे कि science और spirituality अगर दोनों अगर हमारे life में है, तो फिर क्या कहना?
1: Yes, yes. It's a choice. It's about us. Learning ourselves. Science is learning about all surrounding of us, and it is, you know, mental health की बात करते हैं सारी चीजें. It's science.
0: Right.
1: And it can be achieved through practices.
0: Yes, both the things can achieve with the help of practices.
1: Yes, yes, absolutely.
0: वेरी वेरी वेरी नाइस मैम. आपने बहुत बहुत हमें वैल्यूएबल नॉलेज भी बताया. तो हमने सुना है कि आप शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं सॉन्ग के साथ साथ. तो इस सारी सिचुएशन को मैच करते हुए या सिचुएशन को देखते हुए आप हमें, हमारी श्रोताओं को एक सुंदर सी शायरी सुनाएंगे.
1: सबसे पहले तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये सारे क्वेश्चंस जो हमारी वार्तालाप हुई हैं उसमें एंगेज होके, और आपके श्रोताओं से मिलके भी, और जो मुझे सुनेंगे. सो उनके लिए सब, जैसे आपने कहा कि आज की जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से कि डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, फिर हम डर जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन एंड देर इज ह्यूज पॉसिबिलिटीज.
0: यस,
1: वन डोर विल क्लोज, अनदर विल ओपन.
0: ओपन, यस.
1: तो इसके लिए एक बोलना चाहूंगी, जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है. जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है. सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है.
0: वेरी गुड मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत ही बढ़िया डॉक्टर शर्ता जी. मुझे विश्वास है कि साइंस, सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी के इस ब्यूटीफुल बैलेंस को आपने जितने सिंपल वर्ड में समझाया, और हमारे, जाहिर सी बात है, हमारे श्रोताओं को वो समझा भी होगा, उससे हमारे श्रोता साथियों को साइंस के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई होंगी. पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क के जरिए आप और आपकी टीम जो काम कर रही है वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है. आपको इस आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी है हमारे रेडियो पुनेरी आवाज़ की तरफ से. और आपने इस रेडियो पुनेरी आवाज़ में आने के लिए जो अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भी है. तो दोस्तों, आज के इस विशेष एक मुलाकात शो में अब समय हो गया रुकने का. तो सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM, और भूलिएगा मत, खुश रहो, खुशियाँ बांटो. नमस्कार.
1: नमस्कार.

0: आए प्यार के जमाने
1: आज का हाल लगे या नहीं,
0: आए प्यार के जमाने
1: आज का हाल लगे या नहीं,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी, न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी, दिल में यही है कुछ करके

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम्। अर्थात न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त, न मैं कान हूँ, न जीभ हूँ, न नाक हूँ, न नेत्र, न मैं आकाश हूँ, न मैं भूमि हूँ, न अग्नि, न वायु, मैं चित आनंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मात्र 8 वर्ष की आयु में अकेले ही निर्जन वनों, पहाड़ी नदियों और विशाल पर्वतों को लांघकर नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर में आचार्य गोविंद पाद के समक्ष अपना ऐसा उच्च आध्यात्मिक परिचय देने वाला ये विलक्षण बालक था शंकर, जो आगे चलकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। बालक शंकर के मुख से अपना ऐसा परिचय सुनने के बाद गोविंद पाद के हर्ष का कोई पारावार न था। शंकर ने जिस ढंग से स्वयं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया था, उससे गोविंद पाद बहुत प्रभावित हुए और शंकर की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। इस अद्भुत बालक शंकर का जन्म 788 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी को केरल में पूर्णा नदी के तट पर बसे कालड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्याम्बा था। शंकर ने 1 वर्ष के भीतर ही बोलना शुरू कर दिया था। 3 वर्ष की अवस्था तक उनकी स्मृति इतनी तेज हो गई थी कि वो जो कुछ भी सुनते उसे अक्षरशः दोहरा देते। अब तक काव्यों और पुराणों के अनेक श्लोक उन्हें कंठस्थ हो चुके थे। 3 वर्ष की अवस्था में ही उनका अक्षर भाष्य संस्कार संपन्न हुआ। बालक शंकर 3 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। तब माँ ने ही उनका लालन पालन किया। माँ ने 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार कर उन्हें गुरुकुल भेज दिया। बालक शंकर उदीयमान सूर्य के समान थे। थोड़े ही समय में वे चारों वेदों और उनकी शाखाओं में पारंगत हो गए। 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बाल बोधि संग्रह लिखा ताकि उनके सहपाठी संस्कृत ग्रंथों की समुचित व्याख्या कर सकें। अध्ययन में उनकी बहुत रुचि थी। कुछ ही महीनों में शिक्षा प्राप्त कर वे सभी विषयों में निष्णात हो चुके थे। समय बीतने लगा और बालक शंकर के मन में संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रबल होने लगी। माँ से अनुमति लेकर वो गुरु की तलाश में निकल पड़े और एक कठिन और लंबी यात्रा के बाद नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर में आचार्य गोविंद पाद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। ऋषि गोविंद पाद ने उन्हें ब्रह्म के स्वरूप को समझाया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान या चैतन्य है। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं अर्थात जीव ही ब्रह्म है। तत् त्वमसि, अर्थात तुम भी वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। गुरु गोविंद पाद ने उन्हें व्यास के वेदांत सूत्र की शिक्षा दी, उनकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस तरह 4 वर्ष के अंतराल में गुरु ने अपने शिष्य को जगत गुरु बना दिया। 12 वर्ष की अवस्था तक शंकराचार्य सभी शास्त्रों के व्याख्याकार हो चुके थे। 16 वर्ष की अवस्था तक गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने भाष्यों की रचना की। यहाँ नर्मदा के पावन जल, प्राकृतिक सौंदर्य और हरितिमा के साथ साथ सभी जीव जंतुओं से उनका तादात्म्य स्थापित हो गया था। उनकी रचना नर्मदाष्टक में इसी वैभव का वर्णन शब्द सलिला के रूप में प्रवाहित है।

गुरु गोविंद पाद ने शंकराचार्य को एकात्म दर्शन की सीख दी और उन्हें अनुभव कराया ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। 16 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। एक दिन गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, देखो आकाश में बादल किस तरह विचरण कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बरस रहे हैं। सन्यासी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर अध्यात्म की वृष्टि करनी चाहिए। गुरु ने शंकराचार्य को आदेश दिया कि अब वे काशी से अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करें। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जिस युग में शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ वो परस्पर संघर्ष, आपसी फूट और अराजकता का युग था। देश अनगिनत टुकड़ों में बंटा हुआ था। लोग थोथे कर्मकांड और तंत्र में उलझे हुए थे। कई मत मतांतर आपस में उलझे हुए थे। ये धर्म के शाश्वत मूल्य में गिरावट का समय था। ऐसे में नैतिक और चारित्रिक क्रांति आवश्यक थी और मन का ये परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन से ही संभव था। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य एक ऐसे आदर्श राष्ट्र नायक के रूप में उभरे जिसने प्राचीन भारत के मर्म को छुआ। इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों को वेदांत दर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत की बात की जो आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है। ये सिद्धांत कहता है कि परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। इस सृष्टि का मूल कारण वो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण करता है। लेकिन यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति

और शक्तिमान एक ही है। उनके अद्वैत मत का कथन है, एको अहम बहुस्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इस संकल्प के साथ वो ब्रह्म सर्वरूप हो गया, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। ऐसे में बंधन और मुक्ति जैसे शब्द भी खेल मात्र हैं। उनका कहना था कि विचारों से ही मनुष्य बंधता है और उसी के द्वारा मुक्त होता है। भवरोग से मुक्ति का एकमात्र उपाय है विचार। इसके लिए निष्काम कर्म और निष्काम उपासना को शंकराचार्य ने साधना बताया। निष्काम होने का अर्थ है संसार की वस्तुओं की कामना न करना, क्योंकि शारीरिक मांग तो प्रारब्धता से पूरी होगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक चाह की कोई सीमा नहीं है। इस सत्य को जानकर अपने कर्तव्यों के पालन और ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पण की बात उन्होंने कही। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उत्तर काशी से कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, वृंदावन, मथुरा, अनेक स्थानों से भ्रमण करते हुए शंकराचार्य मांधाता पहुंचे। यहां एक उद्भट विद्वान मंडन मिश्र रहा करते थे। 18 दिन तक उनसे शास्त्रार्थ कर शंकराचार्य ने उन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। एक बार काशी में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट श्मशान घाट में काम करने वाले एक सेवक से हुई। उन्होंने उसे रास्ते से परे हटने को कहा। जवाब में उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन क्या हटाऊं, अपना शरीर या आत्मा, आकार या निराकार, सीम या असीम। इन सवालों ने शंकराचार्य को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने श्मशान सेवक को अपना गुरु बना लिया। शंकराचार्य ने तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर समभावदर्शी धर्म की स्थापना की। जाति धर्म के भेद को मिटाकर सभी को गले लगाने और मानवीय व्यवहार करने का उपदेश देने पर वे दंडित किए गए, साथ ही निर्वासित भी किए गए। लेकिन उनकी दृष्टि तो प्रत्येक जीव में परमात्मा के ही दर्शन करती थी।

शंकराचार्य का जीवन वृत्त मत मतांतर और उनके खंडन का बहुत बड़ा साहित्य है। वैदिक परंपरा के अनुसार एक बार गृहस्थी छोड़ने के बाद सन्यासियों को गृहस्थ जीवन के कोई भी संस्कार करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया था, इसलिए अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए वे केरल लौटे। जब लोगों ने उनका विरोध किया और श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की जगह नहीं दी, तो उन्होंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उनका अंतिम संस्कार किया। क्योंकि शंकराचार्य के मत विवेक सम्मत और तर्क पर आधारित थे, वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि स्थापित अनुचित मान्यताओं को नकारने वाले क्रांतिकारी थे। वे सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, बल्कि वैदिक धर्म के पुनर्संस्थापक और भारतीय संस्कृति के उद्धारक थे। वेद व्यास के बाद शंकराचार्य ऐसे पहले रचनाकार माने जा सकते हैं जिन्होंने पौराणिक और वैदिक हिंदूवाद को आपस में जोड़ा। शंकराचार्य की रचनाओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है, भाष्य, प्रकरण ग्रंथ और स्तोत्र। उनके द्वारा ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों और भगवद गीता पर लिखे गए भाष्य ही आज हिंदू धर्म की आधारशिला है। ये तीनों प्रस्थान त्रयी के नाम से विख्यात हैं। इन भाष्यों में वेदांत के संपूर्ण शास्त्रों का सार निहित है। उनके प्रकरण ग्रंथों की संख्या लगभग 40 के ऊपर है, जिसमें वेदांत के साधन के रूप में वैराग्य, शम, दम, त्याग का विस्तार से वर्णन है। वैसे तो शंकराचार्य स्वयं अद्वैतवादी थे, लेकिन वे सगुण उपासना को भी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का सशक्त साधन मानते थे। उनका हृदय बहुत तरल था। उनके स्वभाव की कोमलता और सरसता उनके स्रोतों के लालित्य में मुखर हो उठती है। आदि शंकराचार्य का चमत्कार ये है कि उन्होंने पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास दिया, उसे एक सूत्र में बांधा, रूढ़ियों पर प्रहार किया, जाति प्रथा का विरोध किया और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्हें भारत को सुदूर क्षितिज तक ले जाने की चिंता थी। उन्होंने भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ा। दक्षिण के श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ और पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना कर पूरे राष्ट्र को सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधा। संपूर्ण वेद विद्या के सर्वोन्मुखी विकास के उद्देश्य से उन्होंने इन चारों मठों को अलग अलग वेद सौंपे। गोवर्धन मठ को ऋग्वेद, श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद, शारदा मठ को सामवेद और ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद। अपना प्रयोजन पूरा होने पर मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही पवित्र केदारनाथ धाम में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन आदि शंकराचार्य अमर हैं, क्योंकि वे युगीन हैं। वो अपने युग के मुहावरों में बोले, अपने युग को वाणी दी, अपने युग को झकझोरा और युगांतर कर दिया। ब्रह्म को सत्य, जगत को मिथ्या और जीव को ही ब्रह्म बताने वाले अद्वैतवाद के प्रणेता जगत गुरु आदि शंकराचार्य का दर्शन आज भी भारतीय जनमानस में बसा हुआ है। इसीलिए परम एकांत क्षणों में आध्यात्मिक प्रकाश के बीच वो गुनगुनाता है, तुम कौन हो और मैं कौन हूं, कहां से आए हैं और कहां जाना है, कौन सी है मां तुम्हारी और पिता कौन सा, विचारो इस पर तुम पाओगे सब माया है, नहीं है इसमें कोई सार, त्याग दो संसार को सपने की तरह, ओ मूढ़ मते गोविंद भजो, गोविंद भजो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ या बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
1: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, वो विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करें तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स तक गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: अब अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज हैं, ये ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो ईजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहाँ से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप, लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माई टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माई मेडिटेशन, देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट कि शुरू में ही
0: आई कम बैक, यस, व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस,
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करो और वो गुण पर चिंतन करो, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरो, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हार्ट पर पड़ रहा है. इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली. 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है, इट विल डेफिनेटली वर्क.
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने शुरू.
1: ये बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है. कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा. क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है. और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे. फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफ़ी है, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे.
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन.
2: बेसिकली 15 मिनट में अपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना. अस्सी जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले. आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स. गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं. तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे.
0: रक्षा पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुलाइज कैसे करें, क्या करें. क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है. I just can't imagine, visualize नहीं कर पाते हैं.
1: And I will give you one example कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा. वह है डायबिटीज. कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है. हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें. कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे. शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं. शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% वो 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया.
0: बिना दवाई
1: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था. हमने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर. अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई. और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई.
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की,
1: हाँ, ब्लड इंसुलिन. आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ? परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई, और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया. उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हो, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है, जो विजुअलाइजेशन करना है. सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है.
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है,
1: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ. तो सबसे पहला तो यह स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है. उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है. दवाइयाँ भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं. तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है. फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज़्यादा शुगर है, ज़रूरत से ज़्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है. शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है. तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं.
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है, वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
1: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
1: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
1: है तो वो काम नहीं कर रहा है,
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता
1: है। हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी
1: हाथ पर सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है। और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं, ये
0: चारों कैसे करें?
1: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वह पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: I could visualize actually.
2: Cuddle it.
1: ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
1: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, कि भी उसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या होगा?
0: मन करेगा खाने का।
1: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
0: हम खा लेंगे, पैसे
1: उससे
0: देंगे।
1: पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा।
0: अच्छा, मुंह में पानी आएगा।
1: देखो, वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथि है।
0: अच्छा,
1: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके
0: तब ये, हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना।
1: हाँ,
0: it's possible
1: that it is working. और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपेंस।
0: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा। ओ, तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
1: हर हर ऑर्गन
0: उतना
1: को कर सकते,
0: जितना चाहिए।
1: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए।
0: अच्छा।
1: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया
0: कि इट इज एक्चुअली वर्किंग.
1: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
0: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
1: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि भी ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
0: अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन
1: कि अपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूँ. ये सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, ये सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
0: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया.
1: हाँ,
0: वो व्हाइट व्हाइट
1: स्क्वायर से
0: आई कैन एक्चुअली सी दैट. मैं कर पा रही हूं और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता है.
1: बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वन दूसरा है कहते हैं कि भी आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो. 250 लिखा है सारे बॉडी में. 250 लिखा हुआ है ब्लड में उतने सारे स्क्वायर से. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियल ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया
0: वो ब्लड में.
1: आत्मा में वह शक्ति है कि वो प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
0: Does it require quite lot of concentration?
1: Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना? Relaxation की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं. अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन. मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है. अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं. इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट. नाउ आई एम हीलिंग माय ओन बॉडी. सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है. इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं.
0: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ को. अच्छा, दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती.
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड. हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते. हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए. अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माय माइंड विल डू इट. सी, इफ माय माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माय माइंड कैन हील द थिंग. अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना. इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर. अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट. इट विल डेफिनेटली वर्क. लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते. नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, देन द पावर ऑफ द थॉट विल नॉट वर्क. पावर ऑफ द माइंड टू वर्क, फिर वो थॉट पावरफुल, पॉजिटिव एंड कंसंट्रेटेड होगा. उसमें कोई
0: कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा,
2: डाइल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि एक थॉट है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा थॉट है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं, देन तो क्या एक थॉट से मैं पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही हूँ, दूसरे थॉट से मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर एक्चुअली सो इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली. इट हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड, चैनलाइज थॉट्स. इसलिए मेडिटेशन का जो अभ्यास रेगुलर रीति से करेंगे, फिर उनके लिए ये करना It's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
0: Actually,
1: और एक aspect आपको बताता हूँ जो डायबिटीज में है कि भी अधिकतर जो टाइप 2 डायबिटीज है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है, अधिक भी होता है. जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है. परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
0: अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी तो,
1: हाँ, काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंग लगा है। वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है। टेंशन, ग्रीड, ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूँ कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंग है उसको खींच लेता है। सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया। अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
0: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
1: कम? हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
0: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें शिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं,
1: सब
0: हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
0: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
1: पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
0: हाँ,
1: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास,
0: वी वर
2: क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज़्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा की ये दोनों जो फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन। जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
1: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। नो, दिस आल्सो कैन वर्क। हाँ, आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 ईयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी जरूरत क्या, एक तो बताता हूँ पहले कि उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
0: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन्ड रहेगी,
1: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा। दूसरा, ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, ये केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है। पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया, तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
0: वेरी ट्रू।
2: इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी एक्चुअली। वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन। घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
0: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोलें और कहें और सोचें,
2: सोचकर सोचें, पहले ध्यान से सोचें।
0: वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ में है, आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन सी वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स, इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अब उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

वो पेट ही झूट के संदक में छुपा को, संदक में छुपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घस को घसा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घस को।

पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम।

0: किस्मत को अपने आज मैं रोती बैठ को।
1: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
0: क्या हूँ?
1: चिकनी मछली।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: व्हाट इज ही से?
1: कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे।
0: इज दैट सो? देन लेट हिम कंटिन्यू।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: हम बात कर रहे थे संस्कारों की, आदतों की, थॉट लेवल से लेके फिर कहां से कहां तक पहुंचे। तो संस्कार जिनको मैं समझ रहा था कि संस्कार तो बाय बर्थ है। जैसे कहते हैं ना गाड़ी में या कोई इक्विपमेंट में, इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो हम वापस ले लेंगे। वैसे मैं इन चीजों को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी समझता था। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये एक्वायर होता है और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं,
3: चेंज कर सकते हैं।
2: हाँ, यहां मुझे अभी इतना विश्वास हो गया कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है ही नहीं सोल में, सिर्फ अच्छी क्वालिटी ही है। तो अभी मैंने कोशिश की काफी एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल। छोटा छोटा जैसे आपने कहा था खाने के ऊपर वो नहीं करना, मैंने पहले से ही उनको वाइब्रेशन अच्छे देके भेजे। कि भाई दे आर नाइस पीपल, वो दे आर डूइंग आउट ऑफ लव। तो आज ना उधर से आया ना मैंने किया।
3: कितना सिंपल है, नॉलेज नहीं थी तो ये समझा ये नेचर है, जीवन भर उसके साथ चलते और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते। एक नॉलेज मिली कि दीज आर अक्वायर्ड संस्कार्स, आई ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल संस्कार्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन क्रिएट अ न्यू संस्कार।
2: नॉलेज के साथ साथ पहले मैं डर गया। मैंने कहा अगले जन्म में मुझे ऐसे नहीं बनना है, अगले जन्म में मुझे वैसे भी नहीं बनना है, अगले जन्म में मैंने क्या बनना है मैंने डिसाइड किया।
3: तो अगले जन्म में हमें कैसा चाहिए?
2: मुझे नाइस मैन चाहिए।
3: नहीं, नाइस तो अभी भी हैं सब लोग, हम सब नाइस हैं, लेकिन अगले जन्म में एग्जैक्टली कैसा चाहिए?
2: एग्जैक्टली अच्छी, मतलब सोचना, बोलना और करना तीनों मुझे परफेक्ट, क्लोजेस्ट टू परफेक्शन चाहिए।
3: हाँ, नहीं परफेक्ट भी बोल सकते हैं।
2: अच्छा, प्यार से।
3: हाँ,
2: लव, पीस,
3: एवरी सोल नोज,
2: हार्मनी एंड जहां मैं बैठूं चारों तरफ मैं सबको प्यार फैलाऊं। आई शुड वाइब्रेट हैप्पीनेस, वाइब्रेट लव।
3: तो ये सब कुछ अगले जन्म में क्यों चाहिए?
2: अभी से प्रैक्टिस करूंगा तो अभी मिलता तो रहेगा।
3: तो एम ये रखना है कि इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बहुत जल्दी।
2: ऐसा बनूंगा तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा।
3: कैरी फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट फील्स लाइक।
2: आज मैं पैसे बैंक में डाल के ओल्ड एज के लिए रखूंगा तो आज मैं रिच हूँ, उसको पैसे आज हैं, लेकिन काम तो मेरे अगले ओल्ड एज में भी आएंगे ना।
3: काम तो अभी भी आएंगे ना, लेकिन
2: हाँ जरूरत पड़ती है।
3: जरूरत क्यों, जो आज आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, संस्कारों पे वर्क करेंगे, उसका इमीडिएट बेनिफिट तो अभी मिलने वाला है।
2: तो फिर नया जन्म अभी हो रहा है।
3: फिर
2: अगला जन्म क्या हो, यही जन्म में दूसरा जन्म।
3: जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तो उसको नया जीवन ही कहते हैं, जब अज्ञान से ज्ञान में आते हैं उसको भी नया जीवन ही कहते हैं। न्यू बर्थ, वाई न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई है, मैं कौन, तो नया जीवन ही हो गया। एंड फिर जैसे आपने कहा कि जो अभी हम करेंगे वो संस्कार मुझ आत्मा के साथ यात्रा पर जाएंगे।
2: डबल बेनिफिट हो गया ना,
3: परमानेंट बेनिफिट हो गया।
2: परमानेंट
3: हो गई ना वो रिकॉर्डिंग, आज की हुई मेहनत परमानेंट चलने वाली है वो रिजल्ट। ये याद रखना कि आत्मा है, शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, ये हमें कितनी सारी चीजों पर ध्यान रखना सिखाती है। जैसे आप देखो, जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं बुरा नहीं बोलना उसके बारे में, चला गया ना, भी उसके लिए बुरा नहीं बोलना। क्यों कहते हैं इस तरह से कि बुरा नहीं बोलना?
2: क्यों?
3: क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है.
2: ओके.
3: उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है क्योंकि अब वो 100% सोल कॉन्शियस है आत्मा. जब हम मेडिटेशन,
2: बॉडी नहीं है ना,
3: बॉडीलेस है ना, तो कैचिंग पावर हाईएस्ट है. 100% सोल कॉन्शियस आत्मा हर एक की थॉट्स कैच कर सकती है. इसीलिए जब हम मेडिटेशन भी करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे भी सोल कॉन्शियस की तरफ चलते हैं, वी आर एबल टू कैच पीपल्स वाइब्रेशंस. संत महात्माओं के पास जाते हैं हम, देखते हैं हम दादियों के पास जाते हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं, मन में कोई बात है, पहले ही आंसर मिल जाता है.
2: उनको पता भी तो चल जाता है.
3: पता कैसे चल जाता है?
2: कि कम्युनिकेट कर दिया सोल टू सोल.
3: हाँ, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठे हैं तो वो सामने वाली आत्मा की वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं. तो ऐसे ही आत्मा जब शरीर से न्यारी है, शरीर छोड़ दिया है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है. इसीलिए कहते हैं कि जहां पर सब इकट्ठे होते हैं उस आत्मा के प्रति शांति का दान देने के लिए, पूजा के लिए, कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस में उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कहो क्योंकि वो आत्मा यही है, वो सुन लेगी क्योंकि वो कैच कर सकती है सबकी थॉट्स. अब अगर हमें ये बात याद रहे तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो आत्मा जो हमारे घर से गई है अभी वो दूसरे घर जाकर एक नए शरीर में जन्म लिया, राइट? लेकिन अभी वो नए शरीर से अटैच नहीं हुई है, वो नए स्थान पर जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया है. उसका अभी अपने नए शरीर से अटैचमेंट नहीं है, नए परिवार से, जगह से तो कोई अटैचमेंट नहीं है. तो माँ के गर्भ में आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड सोल कॉन्शियस होती है. उस सोल कॉन्शियस स्थिति में आत्मा अपने पीछे छोड़े हुए परिवार के सब थॉट्स और वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कहते हैं रोना तो नेचुरल है, उदास रहना नेचुरल है, उनको मिस करते हैं, हम कहते हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं. कई लोग पीछे ऐसे सोचना शुरू करते हैं, अब मुझे जीना ही नहीं है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. ये कांस्टेंट एक थिंकिंग चलती है उस फैमिली मेंबर्स के अंदर जो पीछे हैं. अब हमें सोचना है ये सारी थॉट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आत्मा कैच कर रही है. अपने आप को उस जगह पर रखते हैं.
2: मैं पता क्या इमेजिन कर रहा हूँ एज एन एक्टर, कि मेरे पिता ने या माता ने एक बहुत सुंदर सा एक महल जैसा ब्यूटीफुल घर नया बनाया और मैं देख देख के रो रहा हूँ कि क्यों इनको मिल गया, क्यों अच्छा घर मिल गया. मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट. अरे भाई, उनको नया शरीर, नया सुंदर महल मिला है, नया घर मिला है, तो उनको मुबारक देना चाहिए कि उनके बारे में, अब मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ के वहां क्यों गए,
3: क्यों गए.
2: You've done, that means have they done any mistake?
3: Yes. And most important is, वो जहाँ गए वो यहाँ वहाँ हर thought ये catch कर रहे हैं. अपने आप को देखें कि हम यहाँ हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारी जिम्मेवारियां हैं. इस क्षण शरीर छोड़ा, सब कुछ एक क्षण में पीछे रह जाता है, अधूरे काम रह जाते हैं, फैमिली मेंबर्स रह जाते हैं जो शायद हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कभी छोटे बच्चे रह जाते हैं, कभी ओल्ड पेरेंट्स रह जाते हैं, ये सब पीछे रह गए हैं. ये मैं आत्मा यहाँ से निकली, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, बोल नहीं सकती लेकिन कैच सब कुछ कर सकती हूँ. वहां पे मुझे कंटिन्यूअसली ये मैसेज मिल रहा है, क्यों गए, क्यों गए, वापिस आ जाओ, हमें कैसे छोड़ के चले गए, हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारे बारे में नहीं सोचा क्या. एक एक थॉट जो वो आत्मा वहाँ कैच करती है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी?
2: यू मेक दैट आत्मा फील गिल्टी, है ना,
3: गिल्टी एंड सो मच पेन
2: कि मैंने कौन सा बड़ा नुकसान, बहुत सी बड़ी गलती कर दी.
3: पेन कि आई हैव फेल्ड इन माय ड्यूटी फॉर माय फैमिली, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया. अब ये सारे मैसेजेस वहां जा रहे हैं, वो आत्मा वापस भी नहीं आ सकती, वापस भी नहीं आ सकती, लेकिन मैसेजेस उसको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं. तो आत्मा जब गर्भ में होती है तो काफी दर्द अनुभव करती है. आत्मा जब गर्भ में होती है अपने पिछले जीवन के किए हुए सारे कर्म उसके सामने उसको याद आते हैं। सोल कॉन्शियस स्टेज में सब कुछ दिखाई देता है, लाइक अ मूवी रील, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। बहुत सारे लोग जो अभी भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ क्षणों के लिए ही ऑपरेशन टेबल पे या एक एक्सीडेंट में कुछ क्षणों के लिए शरीर से निकल जाते हैं, उनको उन कुछ क्षणों में ही जीवन का सब कुछ दिखाई दे देता है। तो आत्मा जब गर्भ में होती है उसको अपने पिछले जीवन में की हुई सारी बातें दिखाई देती हैं। उस बात का भी दर्द होता है कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई, वो भी दर्द। और फैमिली भी यहाँ से क्या भेजती है, वो भी इतना
2: दर्द। हम हमारे बारे में नहीं सोचा।
3: तो हमें याद रखना है वो मर गए नहीं, वो वहां गए हैं, वो सब कुछ कैच कर रहे हैं। तो जब हमें ये याद रहेगा हम अपनी सोच पर अटेंशन रखेंगे। हाँ हम उनको याद करते हैं, हम उनको मिस करते हैं, लेकिन ऐसी कोई थॉट ना क्रिएट करें जो वहां पहुंचे और उनको दर्द मिले हैं। अगर हम कहते हैं हम उस आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं, क्यों आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं, क्योंकि मानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो थोड़ी अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई है। तो आत्मा जब गर्भ में होती है वो अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी बातें सोचते हैं कि इस बार

0: इस बार आई विल डू थिंग्स अनदर वे. लेकिन जब वापस शरीर में जाती है, जन्म लेती है, बाहर आती है, बड़े होती है, वापस सेम वे करना शुरू करती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की, संस्कार नहीं बदले. दैट इज वाई सो इम्पोर्टेंट कि हम क्या संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. आज हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर से, फैमिली एंड फ्रेंड से कोई आत्मा अपनी जर्नी पर आगे गई है, याद करें प्यार वाली याद, दर्द वाली याद नहीं, दुख वाली याद नहीं, एंड डेफिनेटली ऐसी थॉट्स नहीं कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं चली जाती, यू नो, ये वाली थॉट्स नहीं. कोई ऐसी थॉट नहीं जो उस आत्मा को सुनकर वहां तकलीफ हो.
1: मेरी मदर की डेथ हुई थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आराम से नर्स डे नाइट कर रखी और बहुत प्यार दिया उन्होंने, हम पूरा अपना अपने वही सुना पाठ पूजा अपना जो जो करते थे वो. आराम से बोले वो मुझे लेने आएगा और उन्होंने बोला भी आ गया एंड वो चले गए. जैसे टूटा फूटा बंगला है उसके बदले में कोई नया बना रहे हैं. आई सेड अच्छा हो माँ चलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे नए लोग मिलेंगे, नए वहां खुशियां मनाएंगे लोग.
0: जहां भी आत्मा गई है विजुअलाइज करें कि जहां आत्मा गई है उस घर में तो कितनी खुशी है.
1: नहीं, लेकिन मैंने भगवान का भी थैंक्स किया कि भाई इनको एक दुख और दर्द ज्यादा नहीं दी ना.
0: कुछ बार ऐसे होता है आजकल कोई यंग एज में भी शरीर छोड़ता है.
1: हाँ.
0: है ना, तो वो जो पीछे रह जाएगा परिवार उसको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, याद
1: हाँ,
0: बहुत आएगी,
1: मुश्किल है.
0: है ना, हर स्टेप पर आएगी, हर कदम पर आएगी याद. लेकिन सिर्फ इतना अटेंशन कि थॉट कैसी वाली क्रिएट कर रहे हैं याद में भी, याद में भी ये थॉट क्रिएट करें, वो हमारे साथ थे, हमने ऐसा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, जितना समय हमने उनके साथ बिताया वो बहुत प्यारा था, उनकी ये विशेषताएं थी, अब वो जहां आगे हैं वहां उस यात्रा को बहुत प्यार से निभाएं. ऐसी वाली दुआएं भेजना है. याद तो हर आपके घर से कोई यंग चला जाए, कोई बच्चा चला जाए, किसी का स्पाउस चला जाए, किसी का यंग एज में पेरेंट चला जाए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सीन इन आवर लाइफ दैट वी हैव टू क्रॉस.
1: मेरे साथ कितने हुए, फादर इज डेड, भाभी इज डेड, माय ब्रदर डाइड इन माय आर्म्स 40 इयर्स ओल्ड.
0: एक एक थॉट. लेकिन यहाँ हम थॉट की पावर की बात कर रहे हैं कि वो हमारा एक एक संकल्प उस आत्मा तक पहुंच रहा है. हम जब सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है हम सोच रहे हैं, हमने कभी ये अटेंशन नहीं रखा कि ये हमारी सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच रही है माँ के गर्भ में दूसरी जगह पर, और वो आत्मा को वहां तकलीफ होगी. वो आत्मा का नया शरीर बनने लगा है, आत्मा का नया शरीर बन रहा है वहां पे. जैसी आत्मा की स्थिति उसका प्रभाव उसके नए शरीर जो बन रहा है उस पर पड़ेगा. कैसी वाइब्रेशन भेजे, रोज उसके लिए शांति का दान दे, रोज दुआएं भेजे, रोज प्यार से याद करें, सारा दिन भी याद करें, लेकिन दर्द वाली थॉट नहीं क्रिएट करें. ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट कहें, दुआ कहें, ब्लेसिंग कहें, जो हम कर सकते हैं उन आत्माओं के लिए जो आगे अपनी जर्नी पर चल गए हैं. लेकिन वो तभी होगा जब हमें याद रहेगा कि आत्मा है, आगे गई है. लेकिन अगर हम कहेंगे मर गए, देन वी फील दे आर फिनिश्ड नाउ, वी कैन थिंक वट एवर वी वॉन्ट. दैट्स वाई एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नोइंग दैट दिस इज सोल, आई एम सोल, चेंजेस एवरीथिंग.
1: शरीर ले ना ले, आत्मा तो आत्मा है.
0: शरीर ले लिया ना, लेकिन
1: ना भी ले तब भी
0: आत्मा एक शरीर छोड़ती है, उसका नया चोला रेडी होता है. आत्मा शरीर ही तब छोड़ेगी, आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी तब तक. वो शरीर तब छोड़ेगी जब उसका नया कॉस्ट्यूम
1: रेडी हो जाए,
0: नया घर रेडी है, तब वो एक कॉस्ट्यूम से निकलेगी, दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी. ये भी बहुत परिवारों में डर रहता है, वो गए तो कहाँ गए, उन्होंने शरीर लिया क्या नया, वो खुश होंगे क्या. हर आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसका नया कॉस्ट्यूम रेडी है, जहाँ वो जाएगी परिवार खुशियां मना रहा है.
1: क्वेश्चन क्यों करें हम, ये होंगे क्या, हमको तो बोलना चाहिए कि भगवान उसे खुश रहे, जहाँ है तुम खुश रहो,
0: और उसको परमात्मा से

0: कनेक्ट करके पावरफुल वाइब्रेशन भेजें रोज, ताकि वो आत्मा, क्योंकि वो आत्मा दर्द में है, क्योंकि वो भी सबको छोड़कर आई है ना, वो भी सबको छोड़कर आई है, तो वो भी दर्द में है, तो विशेष उनके लिए योग करें, विशेष उनको वाइब्रेशंस भेजें और ये मैसेज भेजें, आप आगे अपना ध्यान रखें, हम यहाँ ठीक है। इट्स लाइक समवन गोइंग टू अनदर कंट्री और अनदर सिटी, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम यहाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखो काम पे वहां पे, आप अपना पढ़ाई करो, हम यहाँ ठीक है। सेम,
1: हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे यहाँ, आप अपना काम,
0: लुक एट दिस लाइन, हम अपना यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है तो हम कहते हैं हमारा क्या होगा अब। दोनों बातों में कितना फर्क,
1: ऑपोजिट,
0: ये ऑपोजिट एनर्जी उस आत्मा के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। प्योर एनर्जी भेजिए, आत्मा भी हील्ड, उसका नया शरीर भी अच्छा बनेगा, गर्भ में जो आत्मा की स्टे है, जो पीरियड है, बी वेरी पीसफुल। एवरी मदर नोज दिस एक्सपीरियंस कि कई बार कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, बिकॉज आत्मा अंदर कितने दर्द में है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फिजिकल, दे आर बिकॉज ऑफ व्हाट द सोल इज गोइंग थ्रू इन दैट फिजिकल कॉस्ट्यूम। उतना दर्द, उतनी तकलीफ, उतना रेस्टलेसनेस, आत्मा अंदर रेस्टलेसनेस होगी तो मदर कैसे कंफर्टेबल हो सकती है। तो अगर ये स्थिति है तो हमें कंटिन्यूसली वो वाइब्रेशन देनी है। अब जहां वो आत्मा गई है आगे, तो वहां वो जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उस आत्मा ने यहां से संस्कार कैरी किए, ये सीढ़ी है संस्कारों के साथ गई है। अब आत्मा डिटैच स्टेज में है गर्भ में, तो वो पास्ट की फैमिली के वाइब्रेशंस तो कैच कर ही रही है, साथ साथ वो कौन से वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं,
1: प्रेजेंट की,
0: प्रेजेंट के। वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा डिटैच्ड है, हाईएस्ट कैचिंग पावर है, हर चीज जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आत्मा कैच कर रही है। प्रेजेंट फैमिली जहां वो आत्मा आई है उनको कितना अटेंशन रखना है। जब हम कहते हैं कि ये बच्चे के ये संस्कार पेरेंट्स जैसे हैं, ये आदतें उसको पेरेंट्स से मिली, कब मिली, तो हम कहते थे जीन में, आत्मा ने आत्मा से कैच की, वाइब्रेशन कैच किया।
1: किसकी आत्मा ने किसकी आत्मा से,
0: जो बच्चा है, जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे देखकर सेम करने लग जाते हैं।
1: हाँ, जैसे मैं जूते उतारते, एग्जैक्टली वो स्टाइल भी वही करते हैं,
0: सेम कर रहे हैं। अब ये 2 साल के शरीर में है, लेकिन जब ये गर्भ में थे ये तब से कैच कर रहे हैं, ये तब से कैच कर रहे हैं, इसीलिए शब्द बना गर्भ संस्कार, कि गर्भ में बने हुए संस्कार। आज साइंस ने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, इट इज कॉल्ड बर्थिंग साइकोलॉजी, इट इज कॉल्ड फीटल साइकोलॉजी, कि जो फीटस है इसकी साइकोलॉजी किस आधार से बनती है। तो एक साइंटिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल कहा, एज इज द माइंड ऑफ द मदर, सेम इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड। उसने ये भी नहीं कहा द माइंड ऑफ द मदर विल इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द चाइल्ड, नहीं, एज इज द माइंड ऑफ द मदर सो इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड, मतलब डायरेक्ट प्रभाव है। जब हम कहते हैं एक आत्मा की वाइब्रेशन दूसरे तक जा रही है और जो गर्भ में आत्मा है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है, तो जब ऐसी स्थिति है तो पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए,
1: सोचना, खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, सब कुछ, कौन सी पिक्चर आप देख रहे हैं,
0: वो तो बाह्य चीजें, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आप मूवी देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, कहाँ आपके स्थानों पर जा रहे हैं ना, ऐसे समय पर कितना ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां वाइब्रेशन प्योर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा बैठी है जिसकी कैचिंग पावर इस टाइम हाईएस्ट है, तो आप उसको कैसी वाइब्रेशन में लेके जाना पसंद करेंगे, कौन सी एनर्जी उसको फीड करना चाहेंगे। कभी ऐसे समय पर सिनेमा थिएटर जाना,
1: खाना पीना, खाना पीना, तो पार्टियों में जाना,
0: अब सिर्फ खाना पीना, पढ़ना, देखना नहीं, लेकिन सोचना, सोचना। एक दिन एक हॉस्पिटल में मैं बैठी थी बाहर, तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो बिकॉज वी आर डूइंग दिस एज अ प्रोजेक्ट के बेबीज के ऊपर कितना असर होता है मदर की वाइब्रेशन का, मैं ऐसे बैठे बैठे उससे बात की और मैंने कहा ये 5-6 महीने ना ध्यान रखना, गुस्सा मत करना. तो शी जस्ट लुक्ड एट मी, शी सेड कितनी देर, आई सेड 5-6 महीने एटलीस्ट. शी स्माइल्ड, शी थॉट आई वाज लाइक डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग. शी सेड 5 मिनट कहते तो ठीक था, 5 घंटे भी बोलते तो भी, 5 महीने गुस्सा नहीं करना. आई सेड आप गुस्सा करेंगे ना, आपके अंदर जो बेबी है वो गुस्से की वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करेगा, उसका गुस्से का संस्कार बनेगा. पॉसिबल 5 महीना. सो आई देन क्लोज द टॉपिक बिकॉज रिसेप्टिव नहीं थे उस बात के लिए. थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो अपने 4 साल के बेटे को लेकर आई है. एंड वो कहते हैं, सिस्टर प्लीज प्लीज टेल माई सन समथिंग, ये बहुत गुस्सा करता है. एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर, कि अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से गुस्सा आया उसके अंदर. हम इतने अनअवेयर हैं. अब हम चाहते हैं कि वो बच्चे का संस्कार ठीक हो जाए. गर्भ में वो समय था जब वो बच्चे को वो संस्कार दिया जा सकता था. दे हैव द पावर टू प्लांट विच एवर संस्कार दे वॉन्ट इन देयर चाइल्ड.
1: जो औरतें ये खाती पीती हैं, वो तो 9-9 महीने नहीं लेते हैं. और कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि आप हिल नहीं सकते बेड से अगर आपको बच्चा चाहिए तो. उनको तो हिलना भी मना है.
0: ये सब चीजें ना हम फिर भी कर लेते हैं.
1: वही तो मैं कह रहा था,
0: केयर है ना, वी आर डेफिनेटली.
1: इतना सब कर रहे तो ये 5 महीने गुस्से के लिए तो.
0: थॉट लेवल पे वर्क करना है ना, थॉट लेवल पे वर्क करना है. अगर मदर या पेरेंट्स पे या फैमिली के वातावरण में किसी भी तरह की एंग्जाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसी स्थिति है, लेट अस रिमेम्बर वो आत्मा सारी वाइब्रेशन कैच कर रही है और ये वाइब्रेशन उस आत्मा के व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी.
1: और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लड़का आए कि लड़की आए, एक बोलेगा आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सन एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डॉटर.
0: आत्मा शरीर में बैठी है और सपोज शरीर बेटे का बन रहा है, लड़के का बन रहा है, पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, पहला बेटा है ना, अब बेटी होनी चाहिए, बेटी होगी तो हम उसका ये नाम रखेंगे, हम उसके लिए ये कमरे में लगाएंगे, यू नो स्वीट कॉन्वर्सेशंस. लेकिन जस्ट थिंक, अंदर बैठ के वो सुन रहा है
1: क्या अनवांटेड,
0: या
1: इनको तो बेटी चाहिए,
0: मैं तो लड़का हूँ, इनको तो बेटी चाहिए. हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशंस हैं.
1: छोटी सी बात, एक आदमी मेरे घर पे आया था, बहुत रिक्वेस्ट किया कि फलाने फलाने दिन विवेक ओबरॉय को चीफ गेस्ट हमको चाहिए, बहुत तकलीफ है, आप कैसे भी करिए. तो मैंने बोला वो नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, नहीं आ पाए. अच्छा उसके बदले में आप आ जाइए. मुझे इतना हर्ट हुआ, मैं क्या मैंने बोला फालतू हूँ. आप आए उसके लिए, मैं क्या उसका सब्स्टिट्यूट हूँ, उसके बदले में आ जाओ, मतलब ये चाहिए. तो
0: उतनी
1: छोटी सी बात में, बाप बेटे में मुझे तब फील हुआ
0: रिजेक्शन.
1: हाँ तो वहाँ क्या होता होगा.
0: 9 months दैट सोल इज कैचिंग दैट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस स्थिति में वो ये वाइब्रेशन कैच कर रही है आत्मा, जब वो डिटैच्ड है और वो हर थॉट कैच कर सकती है. ऐसी स्थिति में ऐसी वाइब्रेशंस कैच करके कई केसेस ऐसे मिलते हैं जो बच्चे बड़े होने के बाद भी रिजेक्शन का संस्कार कैरी करते हैं.
1: सही.
0: ना बच्चे को पता है कि ये संस्कार क्यों है, ना पेरेंट्स को पता है कि उसके अंदर ये संस्कार कब डला, लेकिन ये रिजेक्शन का संस्कार फिर क्या होता है, थोड़ा भी कहीं भी कभी भी कुछ भी बात होती है वो बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करते हैं. पेरेंट दूसरे बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा कर ले, ये बच्चा रिजेक्टेड फील करेगा, क्योंकि वो तब से रिजेक्टेड की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रूव क्रिएट करके फिर आया है. इसलिए अटेंशन, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वी नीड टू रिमेम्बर डिटैच स्टेट में कैचिंग पावर हाईएस्ट है. जिस परिवार से गई है उनको भी कोई दर्द वाली वाइब्रेशन नहीं भेजनी, और जिस परिवार में आई है उनको भी कोई ऐसी थॉट या वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करनी जिससे उस आत्मा को दर्द हो. एंड विच मीन्स खुद दर्द में नहीं जाना है.
1: मेरे एक्सपीरियंस में छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, मतलब जब खेलते हैं ना, और दो कैप्टन बनते हैं, तेरी टीम मेरी टीम, और इसके मन में रहता है मैं इसकी टीम, आई सेलेक्ट यू, आई सेलेक्ट, आई वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय दिस एंड आई वॉज सेलेक्टेड बाय दिस, वहां भी रिजेक्शन छोटी सी छोटी बात में,
0: क्योंकि वो ग्रूव लेकर आएंगे तो वो गाना तो प्ले होता जाएगा,
1: वहां से पता चल जाता है कि कैसे कहां से
0: वो संस्कार लेकर पैदा हुआ है वो बच्चा, इसीलिए वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में वो गाना प्ले होना शुरू हो जाता है. बट देन व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज संस्कार्स, इट इज कंपैशन फॉर द सोल.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. ओम शांति.
2: When we do not have knowledge and awareness of our sanskars, we believe our acquired habits are natural and will permanently be a part of who we are. Spirituality reveals our true nature to us and also gives us the power to change any acquired sanskar. When we are soul conscious, our mind is silent and pure, we are able to catch the vibrations of other people. When a person dies, the soul leaves the body and in this detached state is able to catch the thoughts and feelings of family and friends. We will miss our family and friends when they leave the body. But if we keep crying and creating thoughts like, why did you leave? How can we live without you? Please come back. All these thoughts will radiate pain to the soul and not allow them to carry on their journey peacefully. When the soul is in the womb of the mother, soul is detached and can catch the thoughts and feelings of parents and people around. Preference for a girl or boy can send vibrations of being unwanted or rejected to the soul, and they can carry that sanskar throughout their life.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। बीके तुषार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो न्यूरोथेरेपिस्ट है, नेचुरोपैथ है। और इनके साथ में बीके भावेश जी भी हमारे साथ है, जो खास नेचुरोपैथ ही हैं। और नरेश जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन और विशेष नेचुरोपैथी अभी उन्होंने सीखा है। तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि इतने रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है इन चीज़ों को सीखते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिल जाता है। तो हमारे तीनों मेहमानों से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी जहाँ पर हम लोग नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जो है मास्टरी करके, आज सरकार भी जो है जागरूक है, इंडियन गवर्नमेंट, और सर्टिफाई कोर्सेस जो है इसके लिए आपको अवेलेबल है दिल्ली से। और वहाँ से सर्टिफाई होने के बाद आप जो है अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं नेचुरोपैथी का। और इससे जो है बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक मेडिसिंस लेते हैं या हमेशा बीमार रहते हैं, और उनको थोड़ा सा एक घंटे का थेरेपी अगर डेली देते हैं तो उनके मेडिसिंस भी कम हो जाते हैं और इन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिल जाती हैं। तो आइए, ऐसा जो एक सेवा के साथ साथ जो है दुआएं कमाने का बहुत ही सुंदर कार्य हम लोग इस थेरेपी के माध्यम से, अल्टरनेटिव मेडिसिंस के माध्यम से हम लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे नेचुरोपैथी के सेंटर्स भी बड़े बड़े आजकल अच्छी तरह से मॉडर्न स्टाइल में खुले जाते हैं, और इसमें लोग जो है रिलैक्स होने के लिए जाते हैं और ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। तो वो भी एक अच्छा जो है फील है, एक अच्छा स्टेटस है। तो आप अपना करियर इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो आइए, इसी चीज़ को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो आप सभी की तरफ से बीके तुषार जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तुषार जी कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया हूँ मैं।
3: हाँ, और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमें।
4: जी मैं एक्चुअली कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ मैं, और इस न्यूरोथेरेपी में 9 से 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ जी, और इसमें रिजल्ट तो बहुत गजब के रिजल्ट है। ऐसे ऐसे भी पेशेंट, ऐसे ऐसे केसेस है जो नागपुर वेलूर में होपलेस हो जाते हैं, जिसको घर बिठा दिया गया है, जो आप कभी चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे केसेस ही हम लोग ज़्यादा हैंडल करते हैं। और वो आज प्रॉपरली चल रहा है, दौड़ रहा है।
3: अच्छा
4: जी, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, वो अपने अपने कार्य में एकदम बिजी है, अपनी गाड़ी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसको बताया गया कि जो आप कभी चल नहीं सकते हैं। हाँ जी, जबलपुर में ऐसे केसेस हम लोग काफ़ी किए हैं जो कमर से टोटली विकलांग हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया आप कभी चल नहीं सकते हो। तो ये न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम पौराणिक कह सकते हैं, इसको नाड़ी मर्दन प्रक्रिया भी कहते हैं।
3: अच्छा।
4: तो एक थेरेपी जो है विदाउट मेडिसिन हम 100% रिजल्ट देते हैं, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट में शायद भारत में 100% गारंटी ट्रीटमेंट नहीं होता है। और न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ 100% पेशेंट ठीक होता है विदाउट मेडिसिन।
3: जी जी जी। तुषार जी बहुत अच्छी बात आपने बताया, 100% आपको जो है न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट्स मिलता है। तो क्या ये सभी बीमारियों में काम करता है या पर्टिकुलर कुछ बीमारियों में?
4: नहीं, यह मिनिमम कम से कम 100 बीमारी में, डिजीज में ये काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है। मैं न्यूरो के साथ साथ मैं कायरोप्रैक्टिस भी करता हूँ
3: जी।
4: जी, यहाँ बोन्स एडजस्टमेंट होता है और नर्वस सिस्टम में भी ओके होता है। तो देखा जाए सभी प्रकार की बीमारी में हम लोग यहाँ काम करते हैं, सर्दी बुखार से लेके आपका नी पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, नर्वस सिस्टम कुछ भी हो, पैरालिसिस, सब में काम करता है ये चीज़ें।
3: सर्दी जुकाम में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है?
4: इसमें भी हम लोग का ये होता है, फार्मूला होता है कुछ कुछ।
3: अच्छा, अच्छा।
4: जी वो फार्मूला देते हैं, तो जिसको लीवर में डैमेज है, फीवर है, तो फीवर में कौन सा फार्मूला यूज करना है ना, तो 125 फार्मूला है न्यूरोथेरेपी में।
3: अच्छा
4: जी, तो फार्मूला हम लोग देते हैं, तो फार्मूला में काम करता है बॉडी में।
3: अच्छा,
4: क्योंकि पहले भी लोग, राजा लोगों के पास ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, उनके पास भी आयुर्वेदिक मेडिसिन नाड़ी ज्ञान होते थे, है ना। तो उस समय भी लोग 100-100 साल से ऊपर जीते थे। अभी तो सब कुछ आ गया, साइंस ने तरक्की कर ली, फिर भी इंसान का आयु का कोई गारंटी नहीं है, और ही जल्दी निकल जा रहा है वो, तो बीमारी बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। पर हम लोग का एक संकल्प है जो न्यूरोथेरेपी को घर घर पहुंचाना है। अरे न्यूरोथेरेपी ये कोई भी कभी भी कहीं कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति को सीखना जरूरी भी है चीज, और इससे हम कमाई भी कर सकते हैं। 6 महीने का इसका एक बेसिक सीनियर कोर्स है, जो करके आप अपना गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी क्लिनिक खोल सकते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा मार्ग है, क्योंकि आज एजुकेशन लेके सब घर बैठे हैं, बेकार घूम रहे, कुछ कर नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति को, उन युवा भाइयों के लिए हम कहेंगे, उन युवा बहनों के लिए कहेंगे, ये चीज़ जरूर सीखे, इसका फायदा ले, परिवार को भी स्वस्थ रखे, सारे भारत को भी स्वस्थ रखे, साथ में कमाई का साधन भी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तुषार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक नई क्रांति का जो काम है वो शायद इससे हो सकता
4: जी,
3: है। देश की सेवा है, मानव सेवा ही देश की सेवा है।
4: बिल्कुल।
3: तो अगर हमारे भारत के लोग समृद्ध होंगे, हेल्दी होंगे, तो निश्चित तौर पे एक हेल्दी इंडिया का हम
4: रिप्रेजेंटेशन स्वस्थ भारत बने।
3: बिल्कुल, और वो भी बिना कोई मेडिसिन का। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ भावेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है और हाल ही में उन्होंने इस प्रैक्टिस को पूरा किया है। तो मैं चाहूँगा भावेश जी, आप अपने बारे में बताइए, आप इस फील्ड में कैसे आए, क्या सोच के आए?
5: ओम शांति, मेरा नाम भावेश नागदौने है और मैं सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। भाई जी हमारा क्लिनिक है एवर हेल्दी वेलनेस न्यूरोथेरेपी एंड योगा सेंटर के नाम से। न्यूरोथेरेपी में आने का जो मकसद था, वो सच कहूँ तो इस थेरेपी को कभी मैंने सीखने की कभी कोशिश नहीं की। ऐसा फील हुआ कि ये गॉड गिफ्टेड, मतलब बाबा ने इसे गिफ्ट दिया है करके।
3: जी, जी, जी।
5: जब भी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए करते हैं तो उसमें हमें मेहनत लगती है।
3: बिल्कुल।
5: बट जब किसी चीज़ को हम अंदर से चाहते हैं तो उसमें हमें मेहनत नहीं लगती बिल्कुल भी। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ योग आयोग में जब हमारी दीदी जी, वहाँ ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी टिकरापारा सेवा केंद्र से, जब वो छत्तीसगढ़ योग आयोग की सदस्य रही थी, तो उन्होंने हम जैसे कई युवाओं को वहाँ छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षण में लेके गए थे। तो वहाँ आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी आए थे, जो अभी दिल्ली में आरोग्य पीठ के नाम से संस्था चला रहे हैं। वहाँ हमें न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला, और उसके बाद फिर सिर्फ हम ही नहीं, जैसे हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहना चाहिए ना, कि हम परिवार को भी संभाल सके, और इस अगर कोई ईश्वरीय पथ पे चलना चाहता है, ये इस ज्ञान को एक्सेप्ट करके रहना चाहता है, तो दोनों तरफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पिरिचुअल और न्यूरोथेरेपी, इस दोनों का बैलेंस मैंने अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी इस युवा वर्ग से संबंधित हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
5: मैं भी युवा हूँ और मेरे लाइफ में तो परिवर्तन हुआ है इससे।
3: तो इसमें आप कैसे, आपका आजीविका चल जाता है बढ़िया सर?
5: जी भाई जी, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में विदाउट मेडिसिन, जैसे हमारे तुषार भाई जी ने बताया था कि विदाउट मेडिसिन थेरेपी है ये, तो जो भी न्यूरोथेरेपी में फॉर्मले रहते हैं और जो भी लोग रहते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तकलीफ तो आजकल हर जगह है भाई जी, हर जगह तकलीफ है, तो पेशेंट्स की कमी नहीं है। बाबा भी यही कहते हैं, हर पूरी दुनिया पेशेंट बनी हुई है, तो आजीविका चल जाती है, बहुत अच्छा इनकम का सोर्स भी है ये, और बहुत अच्छे से ये होता है।
3: चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपने तुषार जी और भावेश जी का एक्सपीरियंस सुना, दोनों ही न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, और पूरे भारत में जैसे कि तुषार जी अलग अलग जगह पे जाकर भी अपनी थेरेपी को देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं, और ऐसे ही हमारे बीच में सीनियर सिटीज़न जिनका मैंने नाम लिया था, नरेश जी भी हमारे साथ हैं, वो भी अभी अभी रिसेंटली इस कोर्स को किए हैं, तो कैसे इससे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताया आप जी।
6: नमस्कार, नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम नरेश कुमार श्रीवास है, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ
3: जी,
6: और मुझे इस थेरेपी में इसको और आगे जाने की जो जिज्ञासा है वह आदरणीय डॉक्टर तुषार जी से ही प्राप्त हुई है, और मुझे बहुत तकलीफ थी, और तो एक हमारे साथी हैं वो इनके पास लेके गए, और उन्होंने इन्होंने मुझे 3 दिन में बिल्कुल दौड़ने लायक बना दिया तो मुझे इससे प्रेरणा मिली, और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भी ये कुछ सिखाइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपी का, उसमें गवर्नमेंट सर्टिफाई है, और वैसे तो ईश्वर की कृपा से मैं पेंशनर हूँ और सब कुछ है, पर मेरे को कोई आय का मना वैसा कुछ है नहीं कि मुझे किसी से हाँ, पर मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, और जो सेवा से मुझे जो भगवान की कृपा से जो दुआएं मिलेंगे वही मेरे लिए बहुत बड़ा है, वही मेरे लिए धन है, तो मैं इस उद्देश्य से इस न्यूरोथेरेपी का कोर्स किया है, और ऑनलाइन कोर्स किया है 6 महीने का, तो 2 महीना का वहाँ है तो दिल्ली में जाके किया, और अभी मैं इसको जो है जब से यहाँ आया हूँ तो आज की डेट में लगभग 30 लोगों को मैं ये थेरेपी दे चुका हूँ तो और जो भी क्रिटिकल केस आते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से ही सलाह लेता हूँ कि मुझे इसमें ये ऐसे ऐसे पेशेंट उनको मुझे क्या देना चाहिए, तो इस प्रकार से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और हर समय मुझे जो है ना वो मोटिवेट करते हुए सलाह देते कि आप इनको ये चीज़ दें, वो मैं दे देता हूँ, तो इस प्रकार से इस विधा को मैं भी अभी अपने जीवन में अपना करके, और इसमें से इसके माध्यम से भी वैसे तो मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो भी क्रियाएं हैं और जो भी कार्य प्रणालियाँ हैं उससे जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ की आध्यात्मिक सेवाएं भी करता हूं, पर साथ साथ ये न्यूरोथेरेपी की सेवा भी अभी इसी प्रारंभ कर दिया हूं।
3: तो कितना टाइम हो गया आपको?
6: मेरे को अभी वैसे मैं अभी 30 सितंबर को ये ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई है।
3: अच्छा अच्छा, रिसेंटली आपने पूरा करके?
6: जी हाँ, 1 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचा हूँ, 2 अक्टूबर से प्रैक्टिस चालू कर दिया।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप सीनियर रिटायर्ड होने के बावजूद भी आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो युवाओं को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बातें चल रही हैं, और तीनों एक्सपर्ट से हमने आपकी बातें कराई, तो अब कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कोर्सेस हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: in the company of God, the supreme amongst all souls.
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन की बातें चल रही हैं और डॉक्टर तुषार जी और भावेश जी और नैनेश जी से बातें हो रही हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन में तीनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही हम लोगों को जो है दवा मुक्त ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो तुषार जी, मैं चाहूँगा अगर युवाएं इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ से सीख सकते हैं, क्या ऑनलाइन होगा
2: जी
1: या फिजिकली होगा जैसे डॉक्टर्स करते हैं, वो सारी बातें आप डिटेल में बताइए।
2: हाँ, जी ये 6 मंथ का ये कोर्सेस है तो आपको ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा। 4 मंथ आपको ऑनलाइन थ्योरी आपको मोबाइल से करना है और 2 महीना प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हम लोग से, तो हम लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे वो दिल्ली में भी जाके 2 महीने का प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको इसमें एजुकेशन भी कोई खास नहीं है, 12वीं पास तक भी हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, करा देते हैं ना। और इससे एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। आज मैं अपने लिए बताऊँ तो इसमें कमाई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आज इंसान पैसा खर्चा करने को नहीं डर रहा है, वो रिजल्ट मांग रहा है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। तो यहाँ 100% रिजल्ट है तो लोग पैसा के लिए डरते हैं। तो आज के डेट में मैं बहुत बड़ा रकम कमाता हूँ, मैं कमाई बहुत है इसमें, क्योंकि आप इंसान को उनका स्वास्थ्य भी कर रहे हो, वो पैसा भी ज़्यादा उन्हें खर्चा नहीं हो रहा है इस ट्रीटमेंट में। तो आपको पैसा तो देंगे साथ साथ इतना बड़ा ब्लेसिंग देगा, दुआएं।
3: बिल्कुल, दुआएं मिल जाएगी।
2: सबसे बड़ी विधि इसमें दुआ कमाने का बहुत बड़ा ये
3: सोर्स
2: रास्ता है, ये सोर्स है जो हम दुआओं के साथ साथ हम पैसा कमा सकते हैं। आज वर्तमान में इंसान इतना करप्ट है भारत, जहाँ इंसान पैसा कमा रहे पर फ्रॉड से, वहाँ ब्लेसिंग नहीं मिलता है और बद्दुआ है। पर ये बाबा की इस कार्य में, बाबा को साथ लेके इस कार्य करने से हमारा तो काम डबल होता है। और इसमें स्पेशली जब हमारा सुप्रीम पावर हमारे साथ है तो ये काम बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों के पास तो सुप्रीम पावर की कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी वो लोग कर रहा है इस फील्ड में रह के भी, और हम बाबा के बच्चे इसमें जुड़ के बाबा से शक्ति लेके जब काम करते हैं तो 10 में 10% ठीक होता है। तो दुआ तो देते ही है, साथ साथ कमाई भी है। तो सभी युवा वर्ग के लिए हम बताएंगे, बिल्कुल हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना जरूरी है भारत को स्वस्थ रखने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूरोथेरेपी में जैसे कि हमारा जो है पॉइंट्स प्रेस करने वाली बात आती
2: जी, इसमें जब ट्रेनिंग कराते हैं तो इसमें फार्मूला सिखाए जाते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, कुछ बॉडी बैलेंसिंग फार्मूला है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। तो जब वो डिटेल्स, जब कोई कोर्स करना चाहे तो हम नंबर को ऐड कर दीजिएगा, हम उनको ट्रेनिंग के लिए क्या कैसे प्रोसेस सब बता देंगे। तो फार्मूला सिखाए जाते हैं इसमें।
1: तो आप अपना नंबर बता के रखिए सबको,
2: जी,
1: हमारे युवा साथी जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए।
2: जी जी, नंबर को आप ऐड करना तो करिए, नंबर है 6268135807। फिर से बताएं, 6268135807 ये मेरा नंबर है, इसमें कांटेक्ट करिए तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या कैसे प्रोसेस है सब मैं बता देंगे आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तुषार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो करियर में कुछ यूनिक करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दर्द से लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप जो है अपने करियर के साथ साथ जो है लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि ये आज के समय में बहुत नीड है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, लोग बीमार हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज हमारे बीच में है, हेल्थ इश्यूज को लेकर। तो ऐसे में अगर हमारा नेचुरोपैथी या नेचुरोपैथी में जैसे न्यूरोपैथी की बात अभी कर रहे हैं हम लोग, इन सारी चीज़ों का अगर उपयोग हो रहा है और उपयोग करके हम लोग अगर लोगों को हेल्दी वेल्दी रख सकते हैं तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं भावेश जी से भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आपने जो है अभी तक कुछ प्रैक्टिस में कितने लोगों को आपने जो है ठीक किया है, थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंसेस हो तो आप शेयर कीजिए।
4: जी भाई जी, मैं सोच ही रहा था कि मेरे पास टर्न कब आएगा भाई जी। भाई जी, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं जो मतलब बहुत मेरिकुलस जैसे जो होता है ना, वो भी हुआ है इसमें। बट सबसे बड़ी बात जो रहती है वो होता है विश्वास का। जब आपको चलाने वाला कौन है, आपको जब उस परम शक्ति के साथ जब आप अपने आप को कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक ईजी लगने लगता है। तो जब हम थेरेपी जब भी किसी पेशेंट को देते हैं, तो जब उस सुप्रीम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके देते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं, आते हैं। लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं करके, हम हमारे ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं, बट मैं कहूँगा ये ट्रीटमेंट से रिजल्ट आए ना आए, पर लोग ठीक हो रहे हैं तो कहीं वो उस परम शक्ति के पावर से ही है वो है। और भाई जी ये है कि कल बाबा मिलन का दिन था, मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव थेरेपीज, न्यूरो थेरेपी जैसे ये थेरेपी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है कि विदाउट मेडिसिन भी किसी चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। नो डाउट एलोपैथी, नो डाउट वरदान है एमरजेंसी में, पर क्या अगर हम अपने शरीर के लिए, मतलब जो चीज़ हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं, जो परमात्मा ने दिया है हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो क्या हम उसे नहीं कर सकते क्या?
1: बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर दवा खाते हैं, डायबिटीज वाले हैं, हार्ट वाले हैं, जो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, उनको मेडिसिन के बिना उनको तो कोई चारा नहीं है, तो क्या न्यूरोथेरेपी में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस?
4: जी भाई जी, जैसे तुषार भाई जी ने बताया, उसी प्रकार जो 125-130 फॉर्मूले बनाए गए हैं न्यूरोथेरेपी में, ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग कार्य करते हैं।
1: अच्छा,
4: जैसे कि जैसे आपने बोला ब्लड प्रेशर, तो बीपी के लिए भी, चूंकि न्यूरोथेरेपी जो होता है ये ब्लड प्रेशर पे ही कार्य करता है। जब हम किसी पेशेंट को हमारे न्यूरोथेरेपी में 6 सेकेंड के प्रेशर का बहुत महत्व है, और चूंकि हमारे हार्ट की भी एक जो वेव्स रहती है वो 6 सेकेंड में वो रिदम में चलती है कहते हैं, तो जब 6 सेकेंड का प्रॉपर प्रेशर दिया जाता है किसी पेशेंट को, तो ये शरीर में अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है। और जो फॉर्मूले सेट किए गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को, तो हम उस प्रकार से उस फॉर्मूले को स्टिमुलेट करते हैं, देते हैं उस पेशेंट को, तो उनके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई हम भेजते हैं थ्रू न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में हम किसी पेशेंट को नीचे लिटा देते हैं, स्टैंड्स रहते हैं, हम स्टैंड्स भी यूज़ करते हैं, और पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट कोण्स में रख के उतने निश्चित समय का प्रेशर देते हैं जिससे उनके उस ऑर्गन में प्रॉपर सप्लाई पहुँचे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और ये ट्रस्टेड और अप्लाई किए गए फॉर्मूले हैं जो हमारे देश के हज़ारों न्यूरोथेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं। भाई जी
1: क्या बात है। चलिए भावी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा, हमें खुशी हुई आपके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन न्यूरोथेरेपी के बारे में खास आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर लोग रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं तो शायद न्यूरोथेरेपी का अगर इस्तेमाल करेंगे 15-20 डेज या जो साइकिल है उनका फार्मूला का, उस तरह से अगर प्रयोगशील होकर अच्छी तरह से अगर विधिवत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ, तो मेरे ख्याल से मेडिसिन उनका ख़त्म ही हो जाता है,
2: टोटली ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर टोटली हमेशा के लिए मेडिसिन ऑफ हो जाता है। शुगर का शुगर के लिए 3 महीने अगर कोई ट्रीटमेंट ले तो शुगर बिल्कुल ठीक हो सकता है।
1: अच्छा,
2: जो कि एलोपैथ में सारी चीज़ का कोई मेडिसिन प्रॉपर परमानेंट नहीं है, लाइफ लॉन्ग खाने के लिए डॉक्टर पकड़ा देते हैं, जो जिंदगी भर के साथ ही है, आपके साथ कोई वार ना दे पर दवाई साथ देते रहेंगे, तो उस जिंदगी भर की दवाई को साथ दे देते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को 100% नॉर्मल कर सकते हैं, जिसको अनिद्रा, आज के वर्तमान समय में नींद ना आना बीमारी एक है,
1: ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे एंड्रोजिनस के जो मेडिसिन है नींद के बीमारियों के लिए बहुत लोग खाते हैं,
2: इसके लिए भी हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर नींद आने लगते हैं। और जो वर्तमान में एक समस्या मैंने देखा है घर घर में, नी पेन और बैक पेन L4-5 के प्रॉब्लम, अधिकतर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करते 4.5 लाख टेबल पे जमा करते, 4.5 दिन का भी गारंटी नहीं करते हैं, तो वो भी हम लोग 100% क्योर करते हैं। L4-5 का जो प्रॉब्लम है, जो नस दब जाती है, साइटी का पेन है, नी पेन है, तो मैं सारे दोस्तों को, मैं सभी भाई बहन को ये बताऊंगा, बिल्कुल ऑपरेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बताया था विदेश से लौट के, जो आपका इसमें ऑपरेशन मत में जाना, ऑपरेशन करने से कभी सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ, ना कभी हो सकते है, इसमें सिर्फ आपका लॉस है, डॉक्टर का फायदा है, ऑपरेशन आपसे पैसा लेगा और कोई फायदा नहीं देगा। तो इसलिए सभी एक बार ऑपरेशन करने से पहले जरूर न्यूरोथेरेपी अप्लाई करें, और मैं अपने दावे से कहता हूँ 100% ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल। चलिए डॉक्टर तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने भावनाओं को, विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक एक मैसेज हमारे सभी आज के मेहमानों से सुनेंगे और किस तरह से हम लोग जो है इस थेरेपी को कम्प्लीटली अच्छी तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं और इसका उपयोग खुद करके दूसरों को एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर हम लोग करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन और न्यूरोथेरेपी के बारे में खास बातें हो रही हैं। और न्यूरोथेरेपी ये पूरे जो है नर्वस सिस्टम के वो एक्टिवेट करने का काम करता है, और इसमें 30 सेकेंड और 6 सेकेंड जो फार्मूलाज बने हुए हैं, वैसे एक प्रेशर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो है पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से रिलीफ भी मिलता है और पेशेंट जो है बहुत ही अच्छा एक्टिव फील करने लगता है उनके ट्रीटमेंट के बाद। और जो भी हमारी जो रेगुलर बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है कितने एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर यूज़ करते हैं, है ना। और कभी वो ठीक नहीं होता तो 50 mg का खा रहे हैं तो फिर 100 mg का खा लो, और 100 से नहीं ठीक हो रहा तो डबल डोज कर देंगे तो 200 का खा लो। अरे भाई, इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं, खाली गोलियाँ ही खाना है, और फिर उसके ज़्यादा केमिकल्स अंदर चले जाते हैं तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट्स अलग होकर नए बीमारी पैदा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग जो है अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हमारे पास इसका है, लेकिन अगर हम थोड़ी के लिए इन चीज़ों को साइड में रख के अगर नेचुरोपैथी या न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से 2-3 सेटिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें खुद को रिजल्ट्स मिल जाता है, और उससे हम अपने हेल्थ को बचा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए, मैं नरेश जी से चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश जो है, अब तक उन्होंने जो 30 सितंबर को उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद रेगुलर लोगों को जो भी उनके पास मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा 30 पेशेंट्स को उन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है। तो उसमें से एक आध पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और आपको बहुत दुआएँ देने लगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा हमारे युवा साथियों को।
2: जी ज़रूर। हमारे एक परिचित के हैं, उनका नाम है अजय जी नाम है उनका,
1: जी जी
2: साहिनी जी हैं। तो उनको लगभग 10 साल से उनको घुटने में दर्द था और उनके अंगूठे में दर्द रहता था। तो मेरे पास आए तो हाँ कि सर मुझे कुछ तकलीफ है, मुझे ये जो आप ट्रीटमेंट सीख के आए तो वो कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो जो जो फार्मूले हैं इसके, उसकी मैंने स्टडी करके और डॉक्टर साहब से ही मैंने सलाह लिया, और उसके बाद जो इन्होंने बताया तो वो फार्मूले मैंने इनको उनको दिया, और उसमें करीबन मेरे को 25 या 30 मिनट लगे होंगे। उसके बाद उनको मैंने पूरा ट्रीटमेंट करके उनको बिठा दिया और उनको थोड़ा सा कहा कि आप वॉकिंग करें और देखें कि कुछ इसमें रिलीफ मिला कि नहीं मिला है। तो उस टाइम तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, हाँ रिलीफ मिला है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद दूसरे दिन मेरे को मिले, मेरे तो वो पैरों में गिर गए।
1: अरे बाप रे।
2: और कहा कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है मुझे 10 साल पहले से थी, और मैंने कई डॉक्टरों को इससे इलाज भी करवाया, जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने किया, पर आज तक मेरा इसका समाधान नहीं हुआ। पर आपने पता नहीं क्या किया, वो 15-20 मिनट के अंदर मेरी 10 साल की वो जो तकलीफ है वो दूर कर दी। तो ऐसे एक मेडिकल ये चीज है कि आप कुछ भी कर दें, मतलब जो फार्मूले के हिसाब से जो भी करना है, वो तो पेशेंट को मालूम नहीं चलते हम क्या कर रहे हैं, परंतु उसको हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और दिल से देते हैं, और वो उसको पूरा उसका लाभ उसको मिलता है और

0: वो बहुत अपने को निरोगी महसूस करता है।
1: चलिए नरेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए मैं डॉक्टर तुषार जी से भी जोड़ना चाहूँगा, आप भी अपना एक यूनिक, ऐसे तो आपने काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस की है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन एक हाथ पेशेंट का जो क्रिटिकल हुआ और फिर वो अच्छे हुए उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
2: जी जी बिल्कुल जी। तो हमारे पास भी आए थे 75 एज के एक दादाजी, जिनको गुरु पूर्णिमा के दिन अचानक उनको पैरालिसिस हो गया, और दोनों पैर से ही, पैरालिसिस तो नहीं है बट वो कमर से अचानक वो विकलंग हो गया है, दोनों पैर उनका बिल्कुल ही सुन पड़ गए थे, चलना मुश्किल था।
1: अच्छा।
2: तो वो कार कार में मेरे पास ले, मतलब पहले तो जबलपुर एडमिट किया, नहीं हुआ, वहाँ से मना कर दिया, फिर उनको नागपुर लेके गया गए, तो नागपुर में से भी डॉक्टर ने कह दिया नहीं आप कभी भी चल नहीं सकते दोबारा, कभी भी
1: अच्छा
2: आप अपने पैर पे दोबारा खड़े नहीं हो सकते हो क्योंकि नस भी दब चुकी है। काफ़ी कुछ टेस्ट के बाद बताया गया जो पेशेंट को आप घर ले जा सकते हो, घर में इनको रेस्ट कराओ, ये कभी नहीं चल पाएंगे। तो व्यक्ति मेरा नाम सुन के मेरे पास आए थे, उस समय कटनी में था, कटनी में प्रैक्टिस करता था, तो वो मेरे पास लेके आए, तो मैंने देखा, कंडीशन देखा तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने कहा कुछ टाइम लगेगा ऐसे पेशेंट को, मेरे को कम से कम 15 दिन तो चाहिए, मेरे को 15-20 दिन सुबह शाम, और मेरे पास कम से कम 80 किलोमीटर दूर से आते थे अपने कार से, तो रोज़ 2 टाइम तो आना मुश्किल था, बट सिंगल टाइम ही वो लोग आए मेरे पास, 1 महीना सिंगल टाइम, मतलब 30 सेटिंग लिया रोज। वो व्यक्ति आज के डेट में भाई जी क्या बता दें मैं, वो मन वो भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान नहीं समझते हैं, तो वो व्यक्ति आज खुद दौड़ने जाता है, रोज मेरे को एक पेशेंट रोज भेजता है, और वो अभी भी मंदिर जाने से पहले मेरा दर्शन करने आता है पहले।
1: अरे वाह,
2: ये भी ऐसा कंडीशन है, और रोज एक पेशेंट मेरे पास जरूर इंसान मेरे को भेजता है। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस हमारे साथ में है जो टोटल होपलेस है, हम लोग वही होपलेस केस ही मैं ज़्यादा हैंडल करता हूँ, तो मेरे सभी साथियों को बताएंगे जरूर एक बार अप्लाई करें अपने जीवन में। तो एक हंसी मजाक की बात है, कहते कहते एक हंसी मजाक की बात मैं जरूर करके जाऊंगा। एक बार किसी व्यक्ति को शरीर में कहीं भी टच करते थे, वो कहीं भी दबाता था, दर्द होता उनको, कान में दबाए दर्द है, नाक में दबाए दर्द है, पेट में दबाए दर्द है, घुटने में दबाए दर्द है, तो सारे डॉक्टर फेल, जब समझ में नहीं आता जो कहा इनको इतना कैसे पेन है। तो एक कोई होशियार व्यक्ति आए तो उन्हें कहा कहाँ कहाँ पेन है, तो उन्हें देखा अपनी उंगली से जहाँ दबा रहा है बोलता वहाँ दर्द है, जहाँ दबा रहा है वहाँ दर्द है। फिर वो व्यक्ति बोलता दिखाओ उंगली, दिखाओ, तो दर्द कहीं शरीर में नहीं था, उंगली उनका उंगली में दर्द था, दर्द था कहा उंगली में, और उंगली से जहाँ दबा रहा था वहाँ दर्द हो रहा था। तो यह जड़ है, एक्चुअली कहने का अर्थ है तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट जड़, तो उन्होंने उंगली का दर्द खत्म कर दिया, पूरे बॉडी का ठीक हो गया है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो न्यूरोथेरेपी एक जड़ ट्रीटमेंट है जो हम उसको जड़ से खत्म
1: कर सकते हैं। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और चलिए हमारे युवा साथियों को अब तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जो है सभी बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन का ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक थेरेपी है और बहुत पुरानी थेरेपी है, नाड़ी संशोधन जो है, नाड़ी वैद्य करके हम लोग सुना करते थे दादा दादियों से, और उनसे ट्रीटमेंट पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में सारी चीज़ें जो है चेंज होते जाती है, अपग्रेड होते जाते हैं हम लोग, तो समय के साथ साथ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें फिर से वापस आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है ज़रूरत की जननी है, ज़रूरत के अनुसार जो है आविष्कार उसका जननी बन जाता है। जब हमें ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है तो वहाँ आविष्कार फिर से हो जाते हैं। तो फिर चाहे वो पुरानी पद्धति को वापस हम लोग ईजाद करके वापस लोगों को ट्रीट करें, या जो चीज़ें एकदम से नई हमारे बीच में आ जाती हैं तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग ठीक हो जाए, हमारा जीवन सुलभ और सुंदर बन जाए, यही हम चाहते हैं। तो आशा करूँगा अल्टरनेटिव मेडिसिन में न्यूरोथेरेपी के बारे में हमने आज बात की, और ये करियर का भी अच्छा सोर्स है अगर आप प्रॉपरली एक डिस्पेंसरी की तरह जो है न्यूरो सेंटर, न्यूरोथेरेपी सेंटर बना लेते हैं, तो प्रॉपरली अगर लोगों को एक सुविधाजनक ट्रीटमेंट अगर बहुत ही सुंदर तरीके से आप देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कला है। तो पेशेंट को देखना, पेशेंट से बात करना और उनको ट्रीटमेंट देना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो ये आर्ट को आप समझें और फिर इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो आप इनकम के साथ साथ दुआएं जमा करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए आप जो आपका मन या दिल कहता है उसके बारे में सोचिए, आपको क्या करना है अपने करियर में ये अपने आप से पूछिए, किसी और को कॉपी मत कीजिए। और जब आपको लगेगा कि मुझे इसी में करना है तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और ये 6 महीने का कोर्स है, 4 महीना ऑनलाइन कर सकते हैं और 2 महीना प्रैक्टिस आप दिल्ली में जाके कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपना सेंटर खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आशा करूँगा आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दिया है, अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कॉल करके आप पूछिएगा। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर एक बार नरेश जी और तुषार जी और भावेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दुआएँ। और आप सभी को अपने नए करियर में अच्छा करने के लिए, आपका करियर ब्राइट हो, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी तरह करियर पर एक नए विषय को लेकर बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ, चोरी चोरी मेरा दिल निशाना बना यार।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं, और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजन श्रीकंडे जी है, जो बालाजी इंस्टीट्यूशन में एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, पुण्यातील सर्व पुणेकरांना यह वाहिनीवरती हार्दिक शुभेच्छा।
2: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात कार्यक्रम में, और मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ पहली बार हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपका पहचान हो जाए, आपका परिचय हो जाए, तो मैं चाहूँगा कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर आपका।
3: नमस्ते राजेश जी, मैं राजन कमलाकर श्रीखंडे, पुणे में मेरा 10 मई 1963 में बर्थ हुआ था।
2: जी जी।
3: और मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी कोल्हापुर में काम करते थे, और कोल्हापुर में वो स्कूल के टीचर थे, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाते थे वो।
2: अच्छा।
3: और उधर से जब मैं 2 साल का हो गया तो मेरे पिताजी को विलिंगडन कॉलेज सांगली में प्राध्यापक का जॉब मिल गया।
2: जी जी जी।
3: तो हम कोल्हापुर से सांगली गए और उधर ही मेरा बचपन गया। मैं स्कूल में था, 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, BSc स्टैटिस्टिक्स हो गया। बाद में 1 साल मैंने पुणे में MSc किया, लेकिन MSc में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं फिर वापस सांगली चला गया और उधर MBA किया। MBA में मैं तो बचपन में या कॉलेज तक, BSc तक, मैं इतना अच्छा पढ़ाई नहीं करता था। मैं ज्यादा क्रिकेट खेलता था, नाटक करता था, ड्रामा करता था,
2: अच्छा अच्छा
3: एक्टिंग करता था। तो सो मेरा ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। लेकिन जब मैं MBA करने के लिए गया तो मेरे को एक जिम्मेदारी बन गई कि आपने, हमारे पिताजी ने हमको इतना पढ़ाया, अच्छा BSc तक किया, लेकिन हम उनको MBA करके मैं उनको अच्छा जो फ्यूचर होता है वो अच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे 6-7 साल में। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि चलो अभी 100% हम लेक्चर्स अटेंड करेंगे। तो मैंने MBA का एक भी लेक्चर छोड़ा नहीं, 70% मेरे को मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया, मैं MBA टॉपर था हमारे शिवाजी यूनिवर्सिटी में।
2: अच्छा अच्छा।
3: बाद में मेरे पिताजी ने जॉब छोड़ दिया क्योंकि हम पुणे आ गए, और वो मेरे पिताजी को SNDT कॉलेज में प्राचार्य का रोल मिल गया, और हमने इधर आने के बाद मैं भी जॉब ढूंढने लगा। तो मुझे पुणे में आने के बाद कोई जॉब नहीं दे रहा था। उसका कारण ऐसा था कि वो जमाने में शिवाजी यूनिवर्सिटी में जो जिसने पढ़ाई किया है उसको इधर के लोग बोलते थे कि शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई।
2: अच्छा।
3: तो मेरे को लगा कि अरे मैं तो पैदा हो गया पुणे में, लेकिन मैं पढ़ाई तो मेरी सांगली कोल्हापुर में हो गई, तो मेरी की उसमें क्या फॉल्ट थी। तो मेरे पिताजी का जॉब था, मैं उधर था, लेकिन मैंने ऐसा चैलेंज लिया कि मैं जॉब ढूंढते रहा, और एक जगह मुझे जो जॉब मिला तो उनको मैंने बोला कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है, आप मेरे को 3-4 महीने का मेरा परफॉर्मेंस देखो। मैं अच्छा लगा तो रख दो, नहीं तो फेंक दो। तो ऐसे ही करते करते मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया बजाज का, मैं डीलर के साथ काम करता था। मैं हर महीने में मैं 300-400 गाड़ियां बेचता था।
2: अच्छा अच्छा।
3: और वो जमाने में बजाज का गाड़ी का क्रेज ज्यादा था। तो ऐसे करते करते मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने जॉब दे दिया, क्योंकि मैं बजाज का ही काम कर रहा था और मैं बजाज के एक मार्केट रिसर्च में मैंने इन्वॉल्वमेंट दिया था मेरा। उसके बाद मैंने बजाज का काम, एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया, प्रतिभा एडवर्टाइजिंग करके जो बड़ी एड एजेंसी थी किर्लोस्कर समूह की। तो उधर मैंने जॉब शुरू किया, और जो मेरे सामने काम आता था वो मैं खुशी से करता था।
2: क्या
3: यानी अभी कभी फोटोग्राफी करना है 2-व्हीलर का, तो वो 2-व्हीलर जब हम शोरूम से लेके आते हैं तो वो गंदा होता है गाड़ी कभी कभी। तो मैं वो मेरे हैंड करचिप से वो साफ करके फोटोग्राफर को बोलता कि चलो अभी आप फोटोग्राफी करो। मैंने ऐसा कभी मेरे मन में रखा नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो सब मेरा 100% दिया, और मैंने बजाज का MAT नाम का एक बाइक था उसका लॉन्च किया, पुणे में, भारत में किया, एग्जीबिशन में किया, दिल्ली में। बाद में मुझे उसमें वो गाड़ी में बैठ के मैंने फोटोग्राफी करके मैं मॉडल बन गया जिंदगी में। 24 साल के एज में मेरे को बजाज का मॉडल होने का सौभाग्य मिला। बजाज वॉज वन ऑफ द बेस्ट एड ब्रांड इन दोज डेज। हमारा बजाज बोलते थे, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। ये वो बजाज का मैं एक फैमिली मेंबर बन गया। मैं गाड़ी वही खरीद लिया क्योंकि मैं लोगों को बोलता आप एमएटी खरीद लो और मैं दूसरा गाड़ी कैसे चला सकता हूँ।
4: सही बात है।
3: तो उसके बाद मेरे को 1991 में बजाज का कवासाकी नाम का जो नया मोटरसाइकिल था 4S स्ट्रोक, उसको मुझे मॉडलिंग करने का मौका मिला। पहले उसके पहले मेरा पुणे यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजिंग में डॉक्टरेट हो गया। मैंने एमबीए के बाद मैंने पुणे विद्यापीठ में मेरा नाम पीएचडी के लिए एनरोल करने का सोच लिया था और 90 साल में मेरा पीएचडी हो गया। मेरा बाद में शादी हो गया। शादी के बाद मैं बिरला ग्रुप में काम करता था, बिरला सुपर सीमेंट, राजेश्वरी सीमेंट, और उसके बाद मेरे को बिरला AT&T कम्युनिकेशन लिमिटेड में एडवर्टाइजिंग का ही जॉब करने का मौका मिला। वो करते करते मैं इतना खुश था कि मैं सोसाइटी के लिए मैं टीचिंग करता था, MBA बच्चों को जाके पढ़ाता था। पैसा कमाने का मेरा कोई मकसद नहीं था क्योंकि कैसा है कि अपने को जो आता है वो लोगों को देने में जो खुशी है। अभी ये रेडियो हमारे चैनल का खुश रहो खुशियां बांटो, ये जो आपका जो टैगलाइन है वो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ और आज मेरे को ऐसी खुशी है कि आप मेरे को ऐसा मौका दे रहे हैं कि मैं इंटरव्यू आपके सामने बैठ के दे रहा हूँ। वह बड़ी मेरी लाइफ में अचीवमेंट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
2: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा और एक जैसे कि एक जर्नी आपने बताया बचपन से लेकर अब तक की एक जर्नी, और उसमें भी आपका जो है एक एडवर्टाइजिंग में जो आपने काम किया उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ है। और आप जो मार्केटिंग वगैरह की जो बातें स्किल्स की बात आती है, जब मार्केटिंग में हम लोग जाते हैं किसी को अप्रोच करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हमें जो है बहुत पेशेंट रखना पड़ता है, सामने वाले की बातें सुननी पड़ती है और फिर बाद में अपनी बात रखनी पड़ती है। तो वो एक पेशेंट वाला काम आपने किया है और उसी चीज़ को आप अपने बच्चों को जो भी MBA करते हैं उनको सिखाते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि पढ़ाई पूरा होने के बाद जब आपने कहा कि आप जॉब के लिए यहाँ पर पूना आ गए तो आपको कोई रख नहीं रहे थे, तो ऐसे समय में जो एक स्ट्रगल जो फीलिंग था, तो आपके जीवन में ऐसे कई स्ट्रगल्स के मोड भी आए होंगे, कहीं मुश्किल का दौर भी आया होगा, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो वाली बात आती है वो टाइम पीरियड कब था और किस लिए था?
3: वो टाइम पीरियड यानी MBA करने के बाद 1986 में जब पुणे में आया तो मेरा पहला ही जॉब था जिंदगी में। और मैं जब एप्लीकेशन देता था तो कोई मेरा एप्लीकेशन पॉजिटिवली देखते नहीं थे कि अच्छा, बोलते थे कि यार ये लड़का है वो सांगली से आया है, उसको कुछ अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं है। सच्ची बात बोले तो मुझे अंग्रेजी इतना फ्लुएंटली नहीं आता था जो पुणे के बच्चे बात करते थे। लेकिन मैंने सोचा कि अरे हमारी तो ये वीकनेस है, तो वो वीकनेस सुधारने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा।
2: सही बात।
3: तो मैंने सोच लिया कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स जैसे जो अखबार थे वो पढ़ेंगे, हर रोज रीड करेंगे तो उसमें से मेरा इंग्लिश बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। पिताजी से पेपर के लिए मांगने का 2 रुपया पर डे यानी 4-5 रुपया ऐसा मैं स्पेंड करूंगा तो 150 रुपीज हो जाता है। मेरे जेब में पैसा नहीं था तो मैं क्या करता था, रद्दी शॉप में जाके 5 रुपए KG का सब पेपर उठा के ले गया था, 15-20 दिन पहले वाला, और मैं इकोनॉमिक टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। उसके कारण मेरा अंग्रेजी थोड़ा सुधरने लगा। और जब इंटरव्यू में जाता था तो मेरा फिलिप कोटलर का बुक माय बाय हार्ट था। मैं जब MBA किया तो मैंने सोचा कि अपने को पढ़ाई करना है तो बाय हार्ट करना है। देन आई यूज टू रीड ऑल द डेफिनेशंस विदाउट रेफरिंग द बुक। कैसा है कि आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है कि क्या परेशानी, तो परेशानी तो हमेशा होती है, जिंदगी है तो परेशानी है, लेकिन वो परेशानियों को सामना कैसा करने का, दैट इज लेफ्ट टू यू। आपको पॉजिटिवली देखना है,
2: सही बात है,
3: खुशी बांटने का है, खुशी करने का है। और ये करते करते मैंने जब डॉक्टरेट किया तो था ही, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया। लेकिन सच्ची बात राजेश जी मैं आपको बोलता हूँ, जब 1999 में जब US चला गया तो उधर तो मेरे को हिंदी बोलने का मौका ही नहीं था, मराठी में तो बात करने का जरूरी नहीं क्योंकि मैं अंग्रेजी लोगों के साथ बात करता था। और उधर जाके मेरा जो एक्सेंट मैंने डेवलप किया उधर का, एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन अमेरिकन इंग्लिश। एंड लेट अस से दैट that you have to adjust and adapt with the changing scenario. That is the rule of the game for the success.
4: सही बात।
3: तो ये करते करते मेरा अंग्रेजी अच्छा हो गया और भारत में जब मैं फिर वापस आ गया 2002 में तो मेरे को पुणे में आने के बाद ऐसा एक बन गया था मेरे मन में कि अभी मैं तो इतना पैसा कमाऊंगा लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं यूएस रिटर्न था। तो मैंने सोचा कि अभी चलो पढ़ाई में जाएंगे, टीचिंग करेंगे। तो सिम्बोसिस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। सिम्बोसिस में मैं 10 साल टीचिंग कर रहा था 2012 तक। 2012 में मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम अभी कुछ सोसाइटी के लिए काम करते हैं। मैंने बीच में मेरा घर लिया, 3 घर हो गए, मर्सिडीज बेंज लिया, होंड लिया, यानी जिंदगी में जो कुछ करने का है वो तो सब मैं कर चुका हूँ। और अभी वेल सेटल्ड हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी बीवी अच्छी है, मेरा बेटा अभी डबल MBA हो गया, मेरी बेटी अभी MA कर रही है। और ये करते करते मेरा बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट के साथ मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे 7 महीने पहले एक मौका दिया कि आप हमारे इधर आके इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर पोजीशन के लिए काम करो। तो मैं इधर आ चुका हूँ, अभी आपके राहटनी एरिया में मैं नजदीक हूँ, ये जो वाहिनी है हमारे कॉलेज के नजदीक है। लेकिन मेरा अभी आने वाला जो दिन है, अभी मेरा 56 साल का उम्र चल रहा है, लेकिन मैं 60 साल तक मैं ये टीचिंग प्रोफेशन में सर्विसेज देने वाला हूँ, बच्चों को अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, हमारे देश के लोगों को अच्छा सर्विसेज देने वाला हूँ, हमारा देश सुपर पावर जितना जल्दी हो सके उतना करने का कोशिश मैं करने वाला हूँ।
4: क्या बात है, क्या बात। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा है, और आपकी बातों से लगा कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, जैसे इंग्लिश की बात आपके सामने आ गई थी और आपने उसको बखूबी अच्छी तरह से समझ लिया कि मेरा यह वीकनेस है और उसको फिर से ठीक करना भी है, और उसके लिए आपने मेहनत भी किया। जैसे आपने शुरू किया इंग्लिश, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, आप अपने पुराने रद्दी पेपर बेचकर उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके न्यूज़पेपर जो टाइम्स ऑफ इंडिया उसको खरीद के आप पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगी, और धीरे धीरे तो भगवान ने आपकी सुन ली और आप अमेरिका ही चले गए, जहाँ पर आपका एक्सेंट भी इंग्लिश का जो है अमेरिकन हो गया, और उसके बाद फिर वापस आप पूना रिटर्न आए तो सिम्बोसिस में आपने काम किया। तो चलिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा, एक राउंड अप द फिल्मी स्टोरी जैसा भी लग रहा है कुछ चीज़ें आपके जीवन में। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वो स्टोरी जो रहती है वो बड़ी खुशी की बात होती है। हाँ
3: राजेश जी, आपने तो बोल दिया कि मैं फिल्मों का बात किया, तो मैंने अभी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया है। पिछले साल में मुझे एक टीवी सीरियल में बुलाया गया, एक 5 मिनट का ही रोल था, उधर गया और उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, वो 3 बजे और 4, 4:30 बजे मेरा शूटिंग शुरू हो गया, और मराठी चैनल में ZTV मराठी में मेरा तुझा माझा ब्रेकअप करके एक मराठी सीरियल था, उधर मैंने पंडित ज्योतिषी का काम किया, और इतना अच्छा किया कि मेरे को भी मालूम नहीं था कि मैं एक्टर हूँ लेकिन वो मेरी एक डिजायर थी कि मैं कभी ना कभी टीवी पे काम करूँ। मैंने मॉडलिंग तो बहुत किया है टीवी पे, मैंने एक 1997 में मेरी बेटी को लेके पोलियो निर्मूलन का एक जाहिरात बनाया था।
4: अच्छा अच्छा।
3: उसमें हमने ही गाया था कि करू मुक्त ही बाळे पोलियो पासून या, 7 डिसेंबर 18 जानेवारी बाळा डोस पाजू ठेवा ध्यानी बनी।
4: क्या बात है।
3: और आज मैं खुश हूँ कि महाराष्ट्र में एक भी पोलियो विक्टिम हमको अभी देखने को मिलता नहीं है। तो ये मेरा लाइफ जो है वो मैं पूरा सोसाइटी के लिए देना चाहता हूँ। और मेरा जो टैलेंट जो कुछ है मेरे ख्याल से, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, उसका फायदा मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ।
4: जी जी जी। डॉक्टर राजन सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ जो चीज़ें आपने, जो जिस तरह के जैसे मोड़ आए, जैसे जीवन में जो चैलेंजेस आए, उनको उसी रूप में देखा और उसके लिए आपने जद्दोजहद मेहनत करके उसको फेस भी किया और उसको हैंडल भी किया अच्छी तरह से, फिर आगे भी बढ़े आप। तो आपकी कहानी को सुनकर यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, और मुश्किलों के साथ जीना भी आना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किलें नहीं तो फिर आगे बढ़ के भी क्या फ़ायदा है ना। जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो फिर आप कहेंगे मैं सक्सेस हूँ, तो इसे कौन मानेगा और कौन कहेगा कि आप सचमुच सफल व्यक्ति हैं। जब तक आपके जीवन में पत्थरों का ठोकर नहीं लगता, आप ठाकुर भी नहीं बन सकते। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जैसे कि फिल्मों से और रेडियो से और टेलीविज़न से उनका ज़्यादा नाता रहा है और एक मनोरंजन के साथ उनका जो है ताल्लुक रहा है, तो मैं चाहूँगा कि फिल्मी गीतों में, जैसे कि बहुत सारे गीत आप सुनते होंगे क्लासिकल वगैरह भी, तो मैं चाहूँगा कि 50s and 60s में जो पुराने गीत थे आपके ज़माने के, तो उस समय कौन सा एक गीत जो आपको बहुत टची लगता था, क्यों लगता था?
3: अभी 50-60 आप बोलेंगे तो थोड़ा मेरा वो याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मेरा उम्र जो है अभी 56 है, 63 से 80 तक ही मेरे को कुछ फिल्मी गाने मालूम होते हैं।
4: जी जी,
3: मंजिल नाम का एक मूवी था, उसमें अमिताभ जी और मौसमी चटर्जी का एक गाना था, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वो हमारे आंधी पिक्चर में जो संजीव कुमार जी थे, और सुचित्रा सेन, उन्होंने अच्छा एक्टिंग किया था। और सच्ची बात बोले तो मैं कॉलेज में था तब मेरे को लोग बोलते थे कि आप संजीव कुमार हो, क्योंकि मेरा थोड़ा फेस उनके साथ रिसेम्बल होता था। लेकिन मैं ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि किसी का मेरा रिसेम्बलेंस होगा, लेकिन जी, उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे। और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा

0: सावन, क्या बात है।
1: और एक यशोदा जी का एक चिच्चोर नाम का, मैं दसवीं में जब था 78 में, तो उनका चिच्चोर नाम का एक मूवी आया था।

0: वो जो उम्र था वो प्यार करने का था, लेकिन प्यार करने के लिए कभी मौका दसवीं में मिला नहीं, क्योंकि पढ़ाई करने का बहुत टॉर्चर था।
1: जी जी जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: प्यार हो गया, 1990 में शादी हो गई।
1: अच्छा अच्छा,
0: अभी खुश हूँ, मेरी फैमिली पुणे में अच्छी काम कर रही है।
1: जी जी,
0: सो दैट इज माई।
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी जो गीत आपने सुनाया वो सुनकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आइए, किशोरदा का जो गीत आपने याद कराया है उसी गीत को हम लोग सुनेंगे। अभी आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। और आप जानते हैं कि आज के इस विशेष एपिसोड के हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजन श्रीकंडे जी हैं, जिनसे बातें हो रही हैं। फिर से एक बार उनका स्वागत है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उनका जो है लाइफ स्टोरी में जो चेंजेस आया, जो यूटर्न्स आया, उसको आपने सुना। और अभी मैं चाहूँगा कि आपने काफ़ी पढ़ना और काफ़ी देशों में घूमना भी हुआ, भारत और विदेश का चक्कर आपने लगाया, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि एक इंडियन फिलोसफी में या इंडिया में रहने के बाद और अगर फॉरेन में रहते हैं तो उनके दोनों में लाइफस्टाइल की जो बात आती है, जीवन पद्धति की बात आती है, तो कौन सा आपको ज्यादा पसंद आता है और क्यों?
1: राजीव जी, सच्ची बात बोले तो मैं यूएस में जब चला गया 1999 में,
0: हाँ हाँ,
1: तो उधर जाने के बाद मेरे को एक कल्चरल शॉक बन गया कि उधर का जो लाइफस्टाइल था, लोगों का मिलना लोगों से, वो मेरे को कभी मैंने देखा नहीं था जिंदगी में। हमारा इंडियन कल्चर जो है, हिंदुस्तान का जो कल्चर बोलते हैं हम, अभी मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैं ज्यादा महाराष्ट्र की बात करूंगा, लेकिन हमारा देश इतना महान है, हिंदुस्तान जो है उधर सब जगह, यानी गुजरात में जाते हैं तो गुजरात का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र में मराठा कल्चर है, अभी महाराष्ट्र कल्चर में मराठा में भी सिर्फ ये हमारे इधर कास्ट भी बहुत है, कास्ट एंड रिलीजन, तो मैं ब्राह्मीण कल्चर से ज्यादा अटैच हूँ कि मैं ब्राह्मीण हूँ। लेकिन मैंने आज तक ऐसा देखा है कि ये सिर्फ भगवान ने हमको जो जन्म दिया है उसने हमको एक ब्राह्मीण कुटुंब में मेरे को जन्म दिया है, लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो सब हिंदुस्तानी लोगों से है, यानी कोई मेरे सामने मराठा है, कोई मुस्लिम है, कोई गुजराती है, कोई क्रिश्चियन है, तो मैंने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया कि अरे ये मेरा कास्ट का नहीं है, ये मेरा रिलीजन का नहीं है। आज ये पॉलिटिशियंस लोग बड़े बड़े बातें करते हैं कि ये सेक्युलर है, नॉन सेक्युलर, आई एम नॉट सेफ इन इंडिया, इज रिड्यूकुलस। हमारा देश इतना कल्चरली स्ट्रांग है, और जब मैं आपने जो पूछा है कि यूएस में और भारत में आपको क्या, हिंदुस्तान में क्या फर्क लगा, तो हमारा जो कल्चर है वो हमारे कल्चर के सामने कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। उधर का कैसा है कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, तो उधर का जो ओरिजिनल अमेरिकन है वो ढूंढने में बहुत दिन जाएगा, क्योंकि सब आके उधर ही जॉब करते हैं, उधर ही घर खरीदते हैं। Nobody is there originally from United America. States.
0: अच्छा,
1: whereas the person who is born in Maharashtra in a Maratha family or in a Brahmin family or in a Gujarat family, then he belongs to that soil. और उसका जो वो जो soil से जो नाता है, रिश्ता है, वो हमारा वो जो भारत का, अभी हम भारत सुपर पावर बनने के लिए जा रहे हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी इतना देश से जाके इतना अच्छा हमारा रिश्ता बना रहे, दुनिया में बना रहे, तो वो सिंपली खुशियां खुश रहो और खुशियां बांटो, जैसा ही है हमारा जो ये रेडियो वाहिनी का जो पंच लाइन है, टैग लाइन है
0: जी, जी,
1: कि खुशियां रहो, खुशियां बांटो, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा। भारतामध्ये राहून तुम्ही खरंच, म्हणजे तुमचं नाव इंडिया इज सुपर पॉवर, इंडिया इज गुड इन टर्म्स ऑफ एव्हरीथिंग, आयटी हब है, एज्युकेशन है, तो मैं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं यूएस में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, फिर वापस इंडिया में जाके जो कुछ मेरे नसीब में होगा वो मैं करूंगा। और जो आज नसीब ने मेरे को अच्छा सपोर्ट
0: सब कुछ दिया है
1: और मैं खुश हूँ, पल पल में मैं इतना खुश रहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माता पिता का कि उन्होंने मेरे को जन्म दिया, और वो भी भारत देश में पुणे सिटी में दे दिया। अभी मैं पुनेरी आवाज से बात कर रहा हूँ, सो इट इज माय लॉयल्टी टू पुनाइट्स।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा। और जैसे कि आपने बताया कि इंडियन एंड विदेश का जो कल्चर है उसमें क्या आपको पसंद आता है, तो आपको इंडिया कल्चर बहुत पसंद आया है, और इंडिया में जितने भी लोग हैं, अलग अलग धर्म के भले लोग हैं, लेकिन उनका जो नाता है वो भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यूएस में या यूनाइटेड में जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो ओरिजिनल अमेरिकन जैसे ढूंढना पड़ेगा आपको, ऐसा आपने कहा, क्योंकि सभी माइग्रेट हुए हैं, यानी इधर उधर से लोग आए हुए हैं और वहाँ बस कर अपना घर बनाया है। तो मेरी भी कभी कभी बातचीत होती है तो लोग अमेरिका से ज़रूर बात तो करते हैं, लेकिन बात उनकी है कि वो कहीं इंडिया से सेटल है तो कहीं दूसरे वहाँ की कंट्री से आकर वहाँ पर बसे हुए हैं। तो ये चीजें मैंने देखी है, मैंने फोन पे जब बात की या रेडियो पे जब हम लोग टॉक करते हैं तो किसी विषय को लेकर जब बात करते हैं तो इंटरनेट से भी फोन आता है, तो उस समय ये बात होती है। और जो लोग फोन करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये रेडियो स्टेशन को सुनते हैं। तो वो एक फ्लेवर है कहीं ना कहीं, मातृभूमि की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो उन्हें खींचती है। तो वो चीजें है कि आपको भी अपनी मिट्टी की जो याद है, मिट्टी की जो खुशबू है, वो यहाँ पर फिर से वापस बसने के लिए आपको प्रेरित करती रहती है और आप यहाँ पर है अभी और खुश है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अगर अमेरिकन में जो लोग रह रहे हैं वो ये नहीं कह सकते क्योंकि वो वहां के है ही नहीं, तो उनको मिट्टी कहाँ से खींचेगा, मिट्टी वाली खुशबू कहाँ से आएगी। तो बात तो है कि जहाँ हम लोग जन्म लेते हैं, जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, उस मातृभूमि का जो प्यार है, वो स्नेह है, उनके हम कर्जदार है, उसको कहीं मिठा नहीं सकते। अब बस वहां पर जी कर वो एक एहसास हम फील करते हैं जैसे माँ की गोदी में एक बच्चा फील करता है। तो चलिए, बहुत ही वंडरफुल बातें आपने बताई अपने जीवन की और मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, एक जो मैसेज है, एक जो कोट है जो आपको पसंद है, दिल की बातें, वो हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। मिले

क्या बात है, भीमसेन जोशी को आपने याद कराया आखिर में। तो चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप ट्यून करके रखिए रेडियो पुनेरी आवाज को, जी हाँ 107.8 एफएम को। और फिर से कहना चाहूँगा बड़े प्यार से, आप भी इस स्लोगन को दूसरे तक पहुँचाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: बोलो ना।
1: अपने घर को छोड़ के जाऊं, इतनी मैं नादान नहीं हूँ।

0: बोल किसके लूं अजी छोड़ किसके दूं अजी तुम्ही फैसला कर लो तुम्ही फैसला कर लो।
1: मेरे फूल है प्यारे प्यारे
0: वेरी गुड
1: मेरे फूल है चांद सितारे
0: ब्यूटीफुल
1: अरे ये है कश्मीर के
0: अच्छा जी
1: ये है लाल बाग के
0: वाह
1: बढ़िया ये फूलों वाली चुप चुप रे दूंगी गाली
0: अरे क्या करती हो
1: मारूंगी इकलौता अरे बच्चा है कि पापा
0: अरे क्यों लड़ती हो
1: तेरा भेजा फोड़ दूंगी
0: है
1: तेरी नाक तोड़ दूंगी
0: अरे पुलिस।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं।

0: प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं।
1: मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, झनन झनन झनन कान कान कान कान धाता। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, झनन झनन झनन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया।

रही

मुझे पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मोरी कहा कृष्ण ने सुपर

दोनों में कला की राग उठी धा धा तय कै धूंगा धा गे दे कै ता धा धिन ता।

और नील गगन पे तारे थे, नैन को दीप सवारे थे, और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया,

0: अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहां छुप गई तू? अरे जुलेखा,
1: या अल्लाह वो आ गया। देखो देखो, मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

माटी मिले। पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है? बाके हल्लो।

फुकनी के पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हल्लू। जब मैं पैदा हूँ पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो काटे हुए तभी ये के काटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूंगी। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला। फिर तो हातिम हातिम, कल्लू लल्लू, देवू नजीर फकीर, गब्बर सिंह।

भाई वाह वाह वाह वाह वाह। अरे तुम्हारा क्या गया, अभी समझना नहीं है कि मुझे चल गई है।

चाचा मुझे सनम, हंसो नहीं जो मैं कहूँ सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू, नहीं पहचाने तू मुझे, गम कितने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया।

ये हंसते हुए ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये रंग में और नूर में।